0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, मतलब बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुनिए लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है मानसिक बीमारियों का कारण और निवारण। आज जैसा कि हम देख रहे, संसार में बीमारियों की भरमार है। चिंताएं पहले भी थी, समस्याएं भी थी, जीवन काफी कठिन था। यातायात के साधन व दूसरे साधन भी इतने नहीं थे, परंतु आज इतने साधन होते हुए भी बीमारियां बढ़ती जा रही है। इन बीमारियों में मानसिक बीमारियां जो अन्य बीमारियों का भी कारण बनती है, जैसे रात को नींद न आना, किसी भी काम में मन न लगना, उदास रहना, परेशान रहना, ज्यादा सोचते रहना आदि शामिल है। इनको चिकित्सा विज्ञान ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। इन मानसिक बीमारियों से 50 साल की उम्र तक के युवा ज्यादा प्रभावित है। क्या है इसका कारण? वास्तव में सभी बीमारियों के मूल में मनुष्य की अज्ञानता है, जिस कारण वो अपने को आत्मा के बजाय शरीर समझ बैठा है। मनुष्य धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, ठाट बाट के पीछे ज्यादा व्यस्त है और आत्मिक उन्नति की ओर उसका ध्यान ही नहीं है। शरीर को चलाने वाली चेतन आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो शरीर जड़ बन जाता है, जिसे मृत्यु कहते हैं। आत्मा की तीन शक्तियां हैं। पहला है मन अर्थात संकल्प शक्ति, दूसरा है बुद्धि अर्थात विवेक या निर्णय लेने की शक्ति, और तीसरा है संस्कार, जो हम कर्म करते हैं, कर्म के प्रभाव से जो बनते हैं वो होता है संस्कार। तो इन तीनों के बारे में नहीं जाने जानते हुए हम आगे के कार्य को करते रहते हैं और हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं होता है। इस कारण हमारी मानसिक बीमारियां जो है बढ़ती चली जाती है और हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं और हम खुद को पहचान भी नहीं पाते हैं कि हम कौन है। तो खुद को जानना बहुत जरूरी है। तो हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है मानसिक बीमारियों का कारण और निवारण। मन और मस्तिष्क, इसमें क्या भेद है हम इसके बारे में भी नहीं जानते। चिकित्सा विज्ञान वाले अभी तक मन और मस्तिष्क में भेद नहीं कर पाए हैं। मन आत्मा की शक्ति है।

जबकि मस्तिष्क शरीर का अंग है जो आत्मा के लिए जैसे कंप्यूटर का काम करता है। आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर को चलाती है जिससे पूरा शरीर चलता है। जैसे गाड़ी का इंजन चलने से पूरी गाड़ी चलती है और चलाने वाला है ड्राइवर। बच्चे को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने की कोशिश होती है ताकि वह बड़ा होकर अच्छा इंसान बने। अगर वह गलत संग पकड़ लेता है तो खुद को भी बर्बाद करता है और परिवार व समाज के लिए भी कई तरह की समस्याएं खड़ी कर देता है। मन भी बच्चे की तरह है, उसके संग की संभाल की भी आवश्यकता है। ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग से आत्मा की बुद्धि ज्ञान से भरपूर व शक्तिशाली बन जाती है तो उसका पूरा नियंत्रण मन पर रहता है। मन वही संकल्प रचता है जो सही हो, कल्याणकारी हो। फलस्वरूप आत्मा की जो कर्म है, कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं जिससे आने वाले सतयुग और त्रेतायुग में संसार सुखी होता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है मानसिक बीमारियों का कारण और निवारण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मन का इलाज होना चाहिए। द्वापर के बाद देह अभिमान में आने के कारण और आत्मा की बुद्धि रूपी दीपक को ज्ञान घृत न मिलने के कारण उसकी विवेक की रोशनी मंद हो गई है और उसका मन पर नियंत्रण कम होता चला गया है। मन मनमानी कर जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाने लगा है। मन कर्मेंद्रियों का गुलाम बन कभी आँख से अच्छा अच्छा देखने को, कानों द्वारा अच्छा अच्छा सुनने को, जीभ के द्वारा अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने को भटकने लगा है और थकावट के कारण कमजोर होने लगा है। उसको ये पता नहीं रहा कि बाहरी वस्तुएं जो कि नश्वर है सुख नहीं दे सकती। जो शांति सुख वो बाहर ढूंढ रहा है वो उसके अंदर ही है, परंतु उसे अंदर झांककर देखने की फुर्सत नहीं है। इसी कारण उसने गलत जीवन शैली अपना ली है और अपने को, अपने शरीर को रोगों का घर बना लिया है। इसलिए इलाज होना चाहिए मन का, परंतु चिकित्सा विज्ञान वाले भी मन और मस्तिष्क में भेद न कर पाने के कारण मस्तिष्क का इलाज करके इलाज की जो इतिश्री कर लेते हैं। जैसे मानसिक रोगियों को बिजली जैसे झटके मस्तिष्क में लगाते हैं। अब सर्व आत्माओं के परम पिता निराकार परमात्मा शिव अपने साकार माध्यम ब्रह्मातन द्वारा अपना परिचय, हम आत्माओं के स्वरूप का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे आत्मा की अज्ञानता और सर्व प्रकार के संशय मिट जाते हैं। आत्मा अपने निजी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा द्वारा सिखाए गए राजयोग की विधि द्वारा अपने मन बुद्धि की तार सर्वशक्तिमान ज्ञान सागर, शांति के सागर, दुखहर्ता सुखकर्ता परमात्मा से जुड़कर शक्तिशाली बन समस्याओं और बीमारियों पर जीत पा लेती है। ईश्वरीय ज्ञान से सद्बुद्धि जागृत होती है, जिससे व्यर्थ और समर्थ को परख कर निर्णय

और राजयोग को सीखकर अपने को मानसिक व शारीरिक बीमारियों से मुक्त बनाए। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है, और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरे सफर को हम देखें तो रिश्तों को नए अंदाज में देखने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। जब हमने समझा कि हम मैं कौन हूं, मेरी अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा का साथ मिला, तो रिश्तों को भी एक नई जान, एक नया अंदाज, एक नई खुशबू मिली। घर तक जब सीमित थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अपनी पिछली कड़ी से हमने बात शुरू की है कि घर के बाहर कदम रखा जाए और जब हम अपने कर्म क्षेत्र या ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे विश्वास की एक डोरी उनमें भी डाल सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज एक बार फिर इस सफर को आगे बढ़ाते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं हर बार की।

0: हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: सिस्टर शिवानी, पिछली बार अगर हम देखें तो हम ऑफिस पहुंच गए थे और ऑफिस पहुंच के हमने ये जाना था कि जब हम ऑफिस में एंटर कर रहे हैं या जब ऑफिस जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दबाव है कि जाना पड़ेगा, एक कॉम्पिटिशन की भावना, एक बोझ लेकर हम जाते हैं और फिर वो पूरा दिन हमारे साथ चलता रहता है, जैसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की बात आपने की थी. एक बार आगे बढ़ें और उस पूरे सिलसिले को और जाने, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है, क्यों घर और ऑफिस के माहौल में या ऑफिस जाने में हमें इतनी प्रॉब्लम आती है.
1: कहा जाता कि होम इज वेयर द हार्ट इज, यू नो, एंड नॉर्मली वी लीव द हार्ट एट होम व्हेन वी गो टू वर्क. And nowadays in the offices, it is said, bring your heart to work. क्योंकि एक समय था जब कहा जाता है कि bring your hands to work, सिर्फ, you know, कि यहाँ पर है इंटेलिजेंस, हम सारे आइडियाज देंगे, टॉप मैनेजमेंट सारे आइडियाज देगी, जिसको हम पिरामिड स्ट्रक्चर कहते थे कि जो टॉप के लोग हैं आइडिया सिर्फ उन्हीं के होंगे और जो लोअर लेवल पर आएंगे उनको सिर्फ उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है. आपको अपना दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, आपको जो कहा जाए वैसे का वैसे उसको करना है. दिस वॉज द कॉन्सेप्ट वे बैक, जस्ट ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क. फिर जैसे जैसे परिवर्तन आता गया तो इट सेज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क बट ब्रिंग योर हेड टू वर्क ऑल्सो. अपना दिमाग भी साथ में लेकर आइए, आपका आइडिया भी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है. और तब हम अब जो समय पर चल रहे हैं कि हरेक के आइडिया को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि वो आइडिया यू नो लोअर लेवल से आया या टॉप मैनेजमेंट से आया. एवरीबडी इज इक्वली इम्पोर्टेंट, सो ब्रिंग योर हेड टू वर्क. बट देन व्हाट हैपेंड, वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग आवर हैंड्स एंड हेड टू वर्क. अर्लियर वी वर ब्रिंगिंग ओनली हैंड टू वर्क. इट वॉज वेरी सिंपल, एक व्यक्ति का दिमाग ऊपर, बाकी सब
0: कई सारे हाथ काम करने वाले,
1: तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें. एक ने बताया, सब ने उसको सिर्फ फॉलो
0: करने की जरूरत थी, शायद वही थी.
1: अब जब सो मेनी हेड स्टार्टेड कमिंग टू वर्क, यू नो, क्योंकि हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर पे आ गए कि सब लोग एक ही लेवल पर हैं एज फार एज गिविंग द आइडिया इज कंसर्न. तो जहां इतने सारे हेड्स केम टू वर्क, तो दैट मीन्स हेड अर्थात ईगो, इतने सारे ईगोज केम टू वर्क ऑल्सो. माई आइडिया इज बेटर देन योर आइडिया, या आपका आइडिया क्यों लिया गया, मेरा आइडिया क्यों नहीं लिया गया, मेरा आइडिया ज्यादा बेटर है. तो जहां सिर्फ हाथ आ रहे थे ना, ईगो प्रॉब्लम कम थी क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन नहीं था. लेकिन वेयर ऑल द हेड स्टार्टेड कमिंग टू वर्क, तो सारी जो आई क्यूज थी, ईगोज थी, वो सारी क्लैश होने लग गई. और जहां इतनी सारी ईगोज क्लैश होने लग गई, तब प्रॉब्लम्स आने लग गई. और फिर हम काम तो कर रहे हैं बट वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. एंड सो नाउ द करंट ट्रेंड इज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क, ब्रिंग योर हेड्स टू वर्क, बट ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क ऑल्सो. हेड्स, हैंड्स एंड हार्ट टू वर्क. क्योंकि हार्ट टू वर्क से क्या होगा, यू आर नॉट जस्ट ब्रिंगिंग योर आइडियाज, आपकी ईगो सिर्फ नहीं लेकिन बिलोंगिंगनेस. हार्ट जहां है अर्थात क्या, कि बिलोंगिंगनेस है.
0: दिस इज योर ऑफिस.
1: हम एक पॉसिबल है ये कि हम अगर चाहें तो अपने ऑफिस को अपना घर बना सकते हैं.
0: लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये भी कहा जाता है कि ऑफिस के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो जाना चाहिए, ऑफिस को इतना सब कुछ नहीं बना देना चाहिए.
1: जहां तक अटैचमेंट की बात आती तो वो तो हम वैसे भी अब डिटैचमेंट के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि हमें सब कुछ करना है लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए. ऑफिस के साथ भी आज हम कहते हैं कि अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन दर्द कितना है सारा दिन ऑफिस में. बिकॉज अटैचमेंट मे नॉट बी टू द ऑफिस, बट अटैचमेंट इज टू माय इमेज, अटैचमेंट इज टू माय आइडिया. आप मेरा आइडिया स्वीकार नहीं करो आज, मुझे कितना दर्द होने वाला है. क्यों? क्योंकि मेरा अटैचमेंट अपने आइडिया से है. आपसे भले ना हो, इस ऑफिस से भले ना हो, इस पोजीशन से ना, अपने आइडिया से तो है. मेरी एक इमेज है इस ऑफिस के अंदर. आप अगर आकर कुछ और कह गए, लेट्स से मेरी इमेज है दैट आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, अगर आपने आज आकर कह दिया कि आपने ये काम ठीक से नहीं किया, आई एम हर्ट, मुझे बहुत दर्द होने वाला है क्योंकि आई एम अटैच्ड टू दैट इमेज. तो अटैचमेंट तो हमारी बहुत सारी चीजों से है, लेकिन अटैचमेंट और बिलोंगिंगनेस दो अलग अलग बातें हो गई. अगेन, अटैचमेंट वो जहां दर्द है और बिलोंगिंगनेस वो जहां प्यार है लेकिन दर्द
0: नहीं है. और अभी भी अटैचमेंट, अगर जो हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं वो मुझसे ही रिलेटेड.
1: बिकॉज अटैचमेंट है क्या, फिजिकली तो अटैचमेंट ही है ना. यहाँ

0: किसी चीज को अपना समझकर, आइडेंटिटी को अपना समझकर पकड़कर खड़े हो जाते हैं कि दिस इज माय आइडिया, या मेरा आइडिया सबसे अच्छा, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो सबसे अच्छा, इन्होंने उसके अंदर गलती निकाली कैसे। सारा दिन तो सबसे ज्यादा हर्ट इसी बात पर है कि मेरे काम को आपने क्रिटिसाइज किया कैसे, अटैचमेंट्स। और ये सारी अटैचमेंट्स किस लिए, क्योंकि ईगो, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। सो माई आइडिया, माई पोजिशन, माई स्टेटस, सो मेनी थिंग्स, वो सारी अटैचमेंट्स यहाँ। लेकिन बिलोंगिंगनेस वो एक अलग चीज है। बिलोंगिंगनेस हुई कि जैसे ये मेरा परिवार है, वैसे ये भी मेरा परिवार है। है तो परिवार ही ना। और वास्तव में देखा जाए तो आज हम घर से ज्यादा समय ऑफिस में बिताते हैं। अब के समय पर जो हम चल रहे हैं, तो शायद हम घर तो रात्रि को सोने ही जाते हैं। यू नो, बाय द टाइम वी रीच होम इट इज 8:30 व्हाटएवर टू ईच वन, एंड वापस सुबह 8:30 बजे हम निकल जाते हैं। तो जो मेजर पोर्शन है वेकिंग अप टाइम, क्योंकि वो जितनी देर घर गए वो तो सोने का समय, वो सारा तो ऑफिस में है। तो शायद अ मोर इम्पोर्टेंट फैमिली इज हियर, क्योंकि उनके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं। तो वहाँ हाउ टू फील गुड, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अपने जीवन को इंजॉय करना।
1: वहाँ तो मैं हमेशा ऑन टोज हूँ। वहाँ इफ वी लुक एट, एक्चुअली तभी तो कहते हैं कि इतना स्ट्रेस है ऑफिस में, इतना स्ट्रेस है। अगर हम देखें, बिल्कुल देखा जाए, तो वहाँ हम कभी भी बिलोंग फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा डर रहता है कि वो कभी भी आपकी पीठ पे छुरा भोंक दे।
0: ये डर यहाँ है, ये डर हमें है। क्यों? क्योंकि हम इनसिक्योर है, हमारी सेल्फ एस्टीम लो है। अगेन, हर सिचुएशन में जो ऑफिस में आने वाली है, हर व्यक्ति जो ऑफिस में हमें मिलने वाला है, उसमें पर्सपेक्टिव को चेंज करके उधर से हटाकर अपने ऊपर लेते चाहिए। ऑफिस और घर में क्या फर्क है? लेट्स से फॉर एग्जांपल, घर में एक बच्चा या एक मेरा यंगर ब्रदर या छोटी बहन गलती कर देती है, हम सारे घर में बैठते हैं और हम कहते हैं घर की बात को घर में रखना, ये बात कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए, और वो बात सच में घर में रह जाती है। बड़ी से बड़ी गलती छुप जाएगी, क्योंकि परिवार वाले कहते हैं ये हमारी परिवार की इज्जत का सवाल है, इसको घर में रहना चाहिए। ऑफिस में भी कोई छोटा नया रिक्रूट आया, छोटा बच्चा है मेरे कंपैरिजन में, मे बी आई एम 30 एंड ही इज जस्ट 20 और व्हाटएवर, वो एक गलती करता, व्हाट विल आई डू?
1: सारी जगह फैलाया जाए।
0: नाउ दैट इज द डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये मेरा भाई था और ये नहीं है। तो देयर द एटीट्यूड विल बी, उसकी गलती को हाईलाइट कर दो, उसकी गलती को हरेक को सुना दो, सीनियर्स तक रिपोर्ट कर दो। ये सब किस लिए? बिकॉज ही इज नॉट माई फैमिली मेंबर, ही वॉज माई फैमिली मेंबर, डिफरेंस। यहाँ उल्टा मुझे चांस मिला है कि उसने गलती की, इट्स एक्चुअली एज इफ आई विल कीप वेटिंग कि वो जो मेरे कलीग्स हैं या जो भी जिनके साथ मुझे जो इनसिक्योरिटी फील होती है वो गलती करे और मैं सबको बता दूं कि देखा, एंड प्लस आई गेट अ चांस टू कीप ऑन ऑल्सो पुलिंग हिम डाउन, ये गलती की। तो वो एक अंडरकरंट कैसा बिल्डअप हो जाएगा, और ये जो मैं करूंगा तो उसके बाद मुझे कैसा फील होगा, और जिसके प्रति मैंने ये किया तो उससे मुझे कैसी वाइब्रेशन आएगी। तो हाउ कैन आई फील गुड इन द ऑफिस इफ आई टेक दैट सेम रिलेशनशिप देयर, अ यंगर ब्रदर और अ यंगर सिस्टर और इवन सेम एज, व्हाटएवर, गलती की, help the person out and just keep it between the two people, kya hoga us relationship mein? This is cooperation, wo tha competition. Ab ye jo agar humne kar liya ek baar ki kisi ne galti ki aur humne usko kisi ko nahi bataya, bilkul kisi ko nahi bataya, jahan tak zarurat nahi hai, report nahi ki uske, aur usko sikha kar, samjha kar, sort out karke bilkul usko bhi halka kar diya. What you have a family member for the rest of your life, not till you are only in that office, you have a friend for the rest of your life. But we don't want to build these relationships because we are in that belief system ki sabko piche girana hai aur khud aage bhagta jana hai. To agar office mein wo jo log hai unko bhi parivar ki tarah bhi nahi, parivar hi, this is my family, this is my office, this is my home, to wo aise hone lagega ki jab aap subah ghar se uthenge to aap ek ghar se uthenge
1: dusre parivar mein,
0: dusre ghar mein pahunch jayenge, and Sunday ko aap us parivar ko miss karenge kyunki aap unse nahi milte hain, and Monday morning
1: look forward to
0: meeting them again. It is possible, and for that I don't have to wait ki pura office kab aisa ban jayega. No, क्योंकि वो होने नहीं वाला। It's again like waiting for the world to change. It's not going to

0: happen. Just my way of looking at the people. And that person who can do this is a leader. Which I, junior most vyakti ho, us office ka. That person is a leader in the office who can do that. It's possible. And then I would love to go to work.
1: Actually, I can feel the, you know, vibrations. Agar ek parivar se utke hum dusre parivar ki taraf ja rahe hain, to pura ka pura attitude, pura ka pura hamara dekhne ka nazariya badal chuka hoga jab hum apne office mein enter karenge.
0: Aur jab aap pahunchenge na sara din mein, to aapko aisa nahi lagega ki aap kaam kar rahe hain. You know that feeling. Kyunki wo aapko yahi nahi lagega ki aap office mein hain. Koi bhi cheez agar aap enjoy karte hain, koi bhi group ke saath, let's say aap apne friends ke saath kuch kaam kar rahe hain, to halka kitna lagta hai. Kyunki aap
1: ghar pe bhi jo kaam kar rahe hote hain, responsibility samajh ke, to bilkul bhi problem
0: bilkul nahi lagta. To thakavat nahi hoti hai, energy sara din office mein energy drain out kyun ho jati hai? Ye choti choti baatein jo hum karte hain, isko niche kheenchna, isko niche girana, idhar se udhar tak gaye, vending coffee machine tak gaye, उसके वहां खड़े हुए कॉफी पी, जब तक वो इतना सा कॉफी का कप होता है, जब तक वो पिया चार लोगों के बारे में डिस्कस करके आ गए. दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट देन व्हाट विल हैपन, माय एनर्जी गेट्स पुल्ड डाउन. हाउ कैन आई फील गुड, तो कैसा अच्छा लगेगा. तो मैंने अपने लिए ही, किसी और ने नहीं. लोग नॉर्मली कहते हैं जी क्या करें, हमारे ऑफिस का वायुमंडल ऐसा है ना. इट्स एन एनर्जी फील्ड विच आई क्रिएट, ना माई चॉइस कि मैं किस तरह की एनर्जी फील्ड अपने लिए क्रिएट करना चाहती हूँ. तो टुमोरो व्हेन आई गो बैक टू वर्क, लेट मी गो बाय दिस थॉट, आई एम गोइंग टू माय फैमिली.
1: बट देन इफ आई गेट ऑल द नेगेटिव वाइब्रेशंस,
0: इट्स ओके. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट आई वांट टू गिव
1: एंड हाउ स्ट्रांग आई एम.
0: जब वो नेगेटिव अगर आ भी रही है अभी, तो मेरी फिर भी चॉइस है कि मुझे क्या देना है. सी नॉर्मली जब दो लोग एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो ईच वन इज कैरिंग एन एनर्जी फील्ड. एक ओरा तो है हर एक का. तो अभी वर्तमान समय क्या हो रहा है, दोनों का ओरा थोड़ा सा नेगेटिव है. तो बहुत जल्दी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो नेगेटिव ही एक दूसरे से कैच करते हैं. अब अगर हमने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके, इंट्रोस्पेक्ट करके, अपनी थॉट को चेंज करके, और थोड़ा मेडिटेशन भी प्रैक्टिस अगर करें, तो हमारा ओरा धीरे धीरे, एनर्जी फील्ड चेंज होता जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, एंड मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए. नाउ व्हेन आई कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस पर्सन, इनका नेगेटिव ही है, दे हैव नॉट चेंज्ड, मे बी द होल ऑफिस हैज नॉट चेंज्ड, लेकिन मेरा ऑरा पॉजिटिव है, एंड मेरे पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड है कि अब आपका ऑरा
1: मुझ तक नहीं है.
0: आई एम स्टेबल, आपको जो बोलना है आप बोलते जाइए. मेरे को एक विधि आ गई है जिससे मैं अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकती हूँ. अब आप मुझे ओवर पावर नहीं कर सकते. तो आप यहाँ नेगेटिव हैं, लेकिन आई मेंटेन माय स्टेबिलिटी. ये सेकंड स्टेज थी. फर्स्ट स्टेज थी, मैं आपके कांटेक्ट में आई, आपके नेगेटिविटी ने मेरे ऊपर ओवर पावर किया. सेकंड स्टेज, आप जहां हैं वहां हैं, आई रिमेन स्टेबल. नाउ आई कीप वर्किंग मोर ऑन माई सेल्फ, लीकेज नहीं होने दो सारा दिन. थर्ड स्टेज क्या पहुंचेगी,
1: मेरी आप तक पहुंचेगी. आई ओवर पावर यू.
0: एब्सोल्युटली, माई पॉजिटिविटी आपको ओवर पावर करेगी, और तब ये लोग कहेंगे कि इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है. दिस पर्सन इज नाउ अ लीडर, क्योंकि इनके साथ काम करके औरों को अच्छा लगता है. नाउ वाई विल दिस पर्सन नॉट मूव अप इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट लैडर, क्यों नहीं जाएंगे ऊपर, क्यों इनको प्रमोशन नहीं मिलेगी. इनफैक्ट जब इनको प्रमोशन मिलेगी, तो ये लोगों को जेलसी नहीं होगी, इनको खुशी होगी.
1: लेकिन अगेन जो ये था, मैं उसी पे आ गई, उनको जो भी वो प्रमोट कर रहे हैं, इंटरनली और आउटर, बोथ शुड बी सेम इन सिंक.
0: हाँ, वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ इनर,
1: यू नो. हर बार क्या होता है, ऊपर से तो बहुत अच्छे हो जाते हैं. ऑफिस में ये बहुत एक पूरा का पूरा एस्पेक्ट ये चलता है कि हम ऊपर से तो वी आर लाइक वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ ऐसा चलता
0: है. हम एक ऑफिस के ग्रुप में, एक कंपनी में ग्रुप के साथ वर्कशॉप कर रहे थे, तो हमने कहा कि सपोज वी हैव लिटिल लिटिल मशीन जिससे आप सबकी थॉट्स इस समय रीड हो जाए. तो एवरीबडी लुक्ड एट ईच अदर लाइक दैट, एंड देन दे सेड, फिर हम सब एक रूम में नहीं बैठ सकेंगे, यू नो. एंड बाहर से देखें तो एवरीबडी इज परफेक्टली फाइन, बट जो हम एक दूसरे के प्रति सोच सकते हैं, उसकी तो लेवल
1: वही आई थिंक दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट.
0: बट वो ही तो वायुमंडल है, ऑफिस कल्चर और क्या है। लेकिन हम वेट नहीं कर सकते कि सारे कब चेंज होंगे। इफ आई चेंज
1: एंड आई हैव टू चेंज एक्चुअली इंटरनली,
0: ओनली इंटरनली, क्योंकि अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव है तो यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट कि मुझे बोलना पॉजिटिव है, कि कहीं मेरे मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड निकल जाए। वो कैसे निकलेगा? यू नो, उसका बीज नहीं है अंदर। अभी एफर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि बीज नेगेटिव है यहाँ, तो एफर्ट करना पड़ता है कहीं गलती से बाहर ना निकल जाए। तो यहाँ सारा दिन अटेंशन रखना पड़ता है कि आई शुड टॉक प्रॉपरली, कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, आई शुड वर्क प्रॉपरली। लेकिन जब रॉ प्रोडक्ट, यू नो, रॉ मटेरियल ठीक होगा, तो आपको एंड प्रोडक्ट पर मेहनत के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा।
1: वंडरफुल, एक्चुअली दैट रियली मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। यू नो, ये माइंड सेट दिमाग में आते ही कि मैं एक परिवार से निकल के दूसरे परिवार में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक पूरा यू नो बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। अब हम उस परिवार में जा रहे हैं जहां मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि हमने अभी पिछले रिलेशनशिप में देखा है कि जब हम घर में थे तो उन रिश्तों में इतनी मुश्किलें थी, तो वो मुश्किलें आएंगी, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसका मतलब वो मेरा परिवार है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। यू नो, हम पहली चीज ऑफिस में क्या करते हैं, आई वॉन्ट टू लीव, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क हेयर, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। घर पे तो मैं नहीं कहती कभी भी कि मैं घर में नहीं रहना चाहती,
0: बिलोंगिंगनेस नहीं है ना। देखो, घर पे बड़े से बड़ा झगड़ा हो जाए, यू नो, बच्चे कितनी बार झगड़े में गुस्से में मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन छोड़कर कौन जाता है? कोई नहीं जाता। अगले दिन वापस वही उतना ही प्यार, हस्बैंड वाइफ भी, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। वाइफ तो कितने प्यार से अपना सूटकेस भी निकाल देती है, सारा पैक कर देती है, मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर के बाद वापस। वाई इट्स ओके, सी कॉन्फ्लिक्ट इन, यू नो, छोटी छोटी बातों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट्स गोइंग टू ऑलवेज बी देयर। लेकिन जहां वो बॉन्डिंग है तो वो झगड़ा अगले दिन तक भूल जाता है, लेकिन यहां बॉन्डिंग नहीं है ऑफिस में, तो वो छोटी सी बात भी वो इतनी यहाँ इम्पैक्ट कर देती है, वो हर्ट इतना डीप हो जाता है, और क्योंकि बिलोंगिंगनेस नहीं है तो छोड़ना बहुत इजी हो जाता है।
1: पहले चीज, पहला थॉट आता है लीव,
0: आई लीव, या क्योंकि बॉन्डिंग नहीं है ना। तो जहाँ बॉन्डिंग नहीं है तो उस रिश्ते को तोड़ना बहुत इजी है।
1: बहुत सुंदर, आई थिंक दिस रियली गिव्स अनदर विजन टू माई रिलेशनशिप इन द ऑफिस एंड माई रिलेशनशिप टू द ऑफिस, यू नो, माई बिलोंगिंग फीलिंग की आई बिलोंग टू दैट ऑफिस। अगर ये माइंड सेट लेकर चलते हैं, अब पहला तो हमने पहला पड़ाव पार किया है कि हमारा एटीट्यूड जब हम ऑफिस जा रहे हैं वो क्या होगा। अब हम उन प्रॉब्लम्स पे आते हैं, जैसे हमने रिश्तों के घर में बात की थी, वैसे यहाँ पर भी जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हम आते हैं तो डिफरेंट है थोड़ी प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का मुझे लगता है कि हम सोल्यूशन उसी में ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट इज कि मेरे प्रोजेक्ट को, या मैंने जो जितना जहां तक पहुंचा था, मेरी अचीवमेंट को एक्नॉलेज नहीं किया गया, दैट्स द बिगेस्ट हर्ट।
0: अगेन आई विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑन अ जर्नी। एक प्रोजेक्ट इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग। एक चीज की हुई कभी वेस्ट नहीं जाती है, और अप्रिसिएशन मुझे किससे चाहिए? मोटिवेशन, कई बार लोग बोलते हैं मोटिवेट ही नहीं कोई करता है, अप्रिशिएट नहीं करता है, तो हम मोटिवेट कैसे होंगे? तो वर्तमान समय एक चीज को हमें याद रखना पड़ेगा, वो हम बार बार डिस्कस करते आए हैं रिश्तों में, कि जो चीज औरों के पास नहीं है उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें। मे बी दे डोंट हैव दैट मोटिवेशन इन देम राइट नाउ, तो वो हमें कैसे मोटिवेट करेंगे? तो मोटिवेशन या अप्रिसिएशन ये पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर मेरा सीनियर खुद ही बहुत नेगेटिव है, खुद ही बहुत स्ट्रेस्ड है, तो वो कहाँ वो अप्रिशिएट करे? उस तो अपने ही प्रॉब्लम्स में इतना घिरा हुआ है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा काम अच्छा नहीं। लेकिन अगर मैंने उसको राइट पर्सपेक्टिव में नहीं लिया, अब ये रिलेशनशिप है, अ जूनियर एंड अ सीनियर लेट्स से, एंड घर में एक फादर एंड अ चाइल्ड, ओके। अगर एक बच्चा घर में समझ सकता है कि मैं भी, मेरे पापा किसी बात से परेशान है, तो शायद इसलिए उन्होंने मेरी चीज को अप्रिशिएट नहीं किया, और उसके मन में कंपैशन है, गुस्सा नहीं आएगा कि पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, क्यों वो परेशान है, कोई बात नहीं मैं कल डिस्कस कर लूंगा। व्हाई कैन अ जूनियर नॉट थिंक द सेम थिंग अबाउट हिज सीनियर, कि मे बी ही इज अपसेट अबाउट समथिंग, वो किसी और कॉन्फ्लिक्ट में है, क्या बात है जो उन्होंने रिकग्नाइज ही नहीं किया मैंने ये किया? क्या होगा उससे? इमीडिएटली आपके यहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी। अभी क्या था, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, जानते चीज नहीं किया, ये हाँ मुझे आगे नहीं, क्या गया,
1: खुद डर गए हैं, सबसे इनसिक्योर, खुद इनसिक्योर है क्योंकि मैं ज्यादा हूँ, तो हो सकता है आप ज्यादा,
0: दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि सच में ये रीजन हो, इफ यू फील लाइक दैट. लेकिन ऑफकोर्स ये जजमेंट हमें एक या दो बार में कभी भी किसी के लिए पास नहीं करने चाहिए. मेजोरिटी टाइम्स आज वर्तमान समय लोग बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में अंदर ही है. कई बार तो वो अपने घर की किसी प्रॉब्लम से डिस्टर्ब है, वो बैठे हुए ऑफिस में लेकिन उनकी वो घर की प्रॉब्लम, कई बार उनकी तबियत, कुछ भी, सो मेनी एस्पेक्ट.

0: सदर कि वो सब चीजें उनके माइंड पर हैं और उस समय उनका मूड ही नहीं होता अप्रिशिएट, क्योंकि आपको कोई चीज उस समय बहुत ज्यादा अच्छी लगती नहीं है, आपका अपना कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा है। तो पहले तो आप वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, फिर अगर आपके अंदर करेज है, कॉन्फिडेंस है, तो आप जाकर बात कर सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया इस तरह से, आपको कैसा लगा, डू यू थिंक इट वॉज ओके, आप मेरे बड़े हैं, यू कैन गिव मी ऑल वॉट यू फील कि इसमें क्या क्या रॉन्ग था, वेन विल आई डू दिस इफ आई वॉन्ट टू मेक द रिलेशनशिप वर्क, इफ आई वॉन्ट टू, नॉट आई हैव टू। लेकिन क्योंकि हम वो सब नहीं करना चाहते, हम बस चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके अगेंस्ट सोचना शुरू कर देते हैं कि इनको तो चाहिए ही नहीं था, ये तो करेंगे ही नहीं अप्रिशिएट। तो उससे क्या होगा, हमारा डायलॉग नहीं होता, हम और ही विथड्रॉ हो जाते हैं। अब अगर कई बार ऐसा हो गया है, मेनी मेनी मेनी मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, एंड आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया कि देयर इज सम स्ट्रेटजी या इनसिक्योरिटी, अब क्या कर सकते हैं, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू स्टिल हैव टू कीप डूइंग योर वर्क, व्हाट इज द चॉइस, क्योंकि आपकी विशेषता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि दूसरे का इनसिक्योर होना हमारे प्रति, ये हमारी गलती नहीं है, ये उनकी अपनी कमजोरी है। और अगर सामने वाला व्यक्ति कमजोर है तो फिर मुझे रहम करना पड़ेगा उस पर, आई विल हैव टू सिंपथाइज रादर देन गेटिंग एंग्री, क्योंकि उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो है और वो इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डर रहे हैं, तो फिर मुझे क्या होना चाहिए।
1: लेकिन मैं डिप्रेस्ड होता जा रहा हूँ ना, क्योंकि
0: अगर मैं डिप्रेस्ड हो गया तो मेरी अपनी विशेषता वो खत्म हो जाएगी। आई हैव टू रियली रियली टेक केयर, सी दिस इज व्हाट इट इज, व्हाट इज हैपनिंग, कि ये नेगेटिविटी मेरे ऊपर ओवर पावर हो रही है। ये तो सारा दिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, वो चाहते थे कि मेरा काम खराब हो जाए, इफ वी फील कि वो चाहते थे मेरा काम खराब हो जाए, एंड दे सक्सीडेड, क्योंकि मेरा मूड ऑफ होता गया, मैं डिप्रेस्ड होता गया, तो मेरा काम से माइंड हट गया और मेरा मन इन्हीं बातों में चल गया कि ये ऐसे क्यों वैसे क्यों। तो वो जो क्रिएटिविटी मेरे काम में थी, जिसकी वजह से वो इनसिक्योरिटी थी, अब वो क्रिएटिविटी खत्म हो गई एंड नाउ ही सिक्योर, अब वो सिक्योर हो गई कि हाँ इनकी जो विशेषता थी वो खत्म हो गई, तो आई लेट हिम विन ओवर, आई लेट हिम ओवर पावर मी, एंड देन आई से उनकी वजह से मैं नीचे गया या उनकी वजह से मैं ऊपर नहीं गया, किसी की वजह से नहीं, मैंने होने दिया ऐसा, आई गेव इन, आई यू नो आई गेव इन टू दैट पावर। दूसरे ने कोशिश की, मे बी इंटेंशनली अनइंटेंशनली, दूसरे ने कोशिश की मुझे क्रिएटिविटी से हटाने की या मेरी विशेषता को खत्म, मैंने वो होने दिया। अगर मैं चाहता प्रोटेक्शन, वो करते रहेंगे अपना इनसिक्योरिटी में, मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी मोटिवेशन की वेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आई हैव एक्सेप्टेड कि वो मोटिवेट करने वाले नहीं है, तो अब मुझे मोटिवेट कौन करेगा,
1: मैं खुद,
0: हर चीज इज गोइंग टू कम बैक टू माई सेल्फ, सेल्फ मोटिवेशन। वेन विल आई बी एबल टू डू दैट, जब मेरे को ये समझ में आ जाए आई एम नॉट वर्किंग फॉर हिम, आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा बनना, ये किसी और को अच्छी लगे या नहीं अच्छी लगे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, एम आई हैप्पी विद इट।
1: लेकिन इससे मेरे जो ग्रोथ के जो रास्ते थे वो बंद हो गए।
0: ग्रोथ के रास्ते कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप अपनी पावर को मेंटेन करेंगे, किसी को वो अथॉरिटी नहीं देंगे आपकी एनर्जी को डिप्लीट करने की, तो जहां पावर है, एनर्जी है, वहां ग्रोथ है। जहां पावर ही खत्म हो जाती है तब ग्रोथ फिनिश हो जाती है, आप रुक जाते हैं या फिर पीछे जाना शुरू कर देते हैं। आप एज लॉन्ग एज अपनी पावर को मेंटेन करते हैं, अपनी मोटिवेशन को मेंटेन, आप करते जाएंगे, इन द प्रोसेस आप नया सीखते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे लोग उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, वो एक व्यक्ति करे या नहीं करे, एंड फिर भी इफ आई वॉन्ट टू लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, विच विल नॉट हैपन, बट इफ आई लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, देन मे बी नॉट हियर, मे बी इन सम अदर जॉब, लेकिन माई होल प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग दैट, लर्निंग, वर्किंग हार्ड, गोइंग ऑन, वो अगली जगह पर यूज हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता। ट्रूथ डज नॉट हैव टू बी जस्टिफाइड, ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ, तो उसको गिव अप नहीं करें। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि जो सच की नाव है, परमात्मा हमेशा कहते हैं सच में चलने में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आता है, तो कहते सच की नाव हिलेगी।

0: डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं, लेकिन जब वो हिलती डुलती है तो थोड़ा सा डरना नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस रखना कि ये डूबेगी नहीं। सत्यता को प्रत्यक्ष करना नहीं पड़ता कि मुझे प्रत्यक्ष करना पड़ेगा मैं कितना अच्छा, सत्यता स्वयं प्रत्यक्ष हो जाती है। सो जस्ट लिटिल पेशेंस, गो ऑन ग्रोइंग इनसाइड एंड वर्किंग हार्ड।
1: वंडरफुल, आई थिंक इट गिव्स अ न्यू रियल न्यू डायमेंशन शिवानी। अभी तो वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, जो आज वर्क कल्चर की बात करते हैं, तो मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली इज नीडेड देयर। हम ये सोच रहे थे कि घर तक सही है, लेकिन काम में मेरा ये क्यों आए, लेकिन अगर काम भी अब घर या एक परिवार बन गया है तो वहां ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए मेडिटेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। किस तरह से किया जाना चाहिए, यहाँ किस तरह से ग्रुप एनर्जी जो है वो पूरे माहौल को बेहतर कर सकती है, इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे अपनी अगली कड़ी में। अब इजाजत लेते हैं, ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: एक परिवार से निकलकर अगर हम दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं, अगर ऑफिस का जो कल्चर है उसे भी हम अपने हिसाब से ये मान लें कि वो मेरा एक परिवार है, तो शायद कहीं ना कहीं मुश्किल इतनी नहीं लगेगी। जो सारे आपके सामने अड़चने आ रही हैं उन्हें भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप हथियार नहीं डाल देंगे और ये नहीं मान लेंगे कि जहां एक प्रॉब्लम आई आई विल चेंज, बिकॉज दैट्स वेयर योर डेस्टिनी इज। अगर आपने ऑफिस ज्वाइन किया है तो उसको पूरा वक्त देने की कोशिश कीजिए और पूरा एनर्जी देने की कोशिश कीजिए एक पूरी पॉजिटिविटी के साथ। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 09999344555, 09999344666, 09873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। वक्त बदला है और आज जब हम एक परिवार से निकलकर दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं तो वहां मेडिटेशन कितनी जरूरी हो जाती है और कितना स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट वहां पर भी होना जरूरी हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे और किस तरह की प्रॉब्लम्स ऑफिस में हम और आप फेस करते हैं, कैसे उनसे निकल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। अब दीजिए इजाजत, ओम शांति।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर,

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बरं घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक. पुणेरी आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियां बांटो.
4: नमस्कार, आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज में. एक महत्वपूर्ण बात इस पूरे सफर में जो हमें समझ में आई है वो ये कि सबसे पहला कदम अपनी इस तलाश में जो हमें उठाना है वो ये कि खुद को स्वीकारना है. दूसरे हमें स्वीकारें या ना स्वीकारें, सबसे पहली जरूरत है कि हम जैसे हैं, जहां पे भी हैं, जिस पल में हैं, खुद को स्वीकार लें. जहां हमने खुद को स्वीकार लिया वहीं हमारी ये जर्नी, हमारा ये सफर शुरू हो जाता है. फिर कई तरीके अपना के हम इस खूबसूरत सफर में उस मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं. अब आगे बात थोड़ी सी करते हैं और ये देखते हैं कि हम दूसरों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे या दूसरे अगर हमें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते तब किस तरह की मुश्किलें आती हैं. और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वेल नोन साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल. अ वेरी वार्म वेलकम सर.
5: नमस्कार.
4: नमस्कार. और हर बार की तरह हमारे साथ हैं

0: मैं कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, हमने बात तो की थी कि खुद को स्वीकारना कितना जरूरी है, और क्योंकि बिना किसी क्वेश्चन के जैसे हम हैं वैसे हम अपने आप को खुद ही स्वीकारें,
2: देन विल चेंज। लाइक आवर पॉइंट वाज कि हम अपने आप को स्वीकारेंगे तो फिर परिवर्तन पॉसिबल है।
0: हाँ, लेकिन पहला पड़ाव ये था कि हम खुद को बस जैसे हम हैं वो सही है। हाँ, उसके बाद फिर अपने ऊपर वो जो जर्नी थी वो शुरू हो जाएगी।
2: हाँ।
0: आगे अब पढ़ते हैं थोड़ा सा और दूसरों की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा समाज, हमारा जो पूरा परिवार है, हमारा एनवायरमेंट जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि दूसरों को हम स्वीकारें, क्योंकि ज्यादातर देखते ये है कि हम ये चाहते हैं कि वो अच्छा तो है लेकिन अगर वो ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा होता, अगर वो ये कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता। सो दूसरों को हम चेंज क्यों करना चाहते हैं?
2: चेंज अभी करना चाहते हो गलत है एक रीति से देखना चाहे तो। भले व्यक्ति को चेंज होने की आवश्यकता है वह दूसरा क्वेश्चन है, परंतु जो हम उनका पीछा करते हैं कि जब तक आप चेंज नहीं होंगे हम आपको प्यार नहीं देंगे, जब तक आप चेंज नहीं होंगे हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना, जब तक आप में यह नहीं आएगा आई विल नॉट स्माइल एट यू। नहीं, पेरेंट्स कहते हैं
1: इमोशनली दूसरों के साथ
2: इमोशनल ब्लैकमेलिंग एक प्रकार से।
0: नहीं, बट कहाँ तक सही है दूसरों को हमें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मे बी वी हैव बीन कंडीशन लाइक दिस कि दूसरों में हमेशा हमें गलतियां नजर आती हैं, आई जाती हैं। हम मुझे आप सब कुछ अच्छे लग रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरा मन ये कहे कि नहीं ये कुछ ये सही नहीं है, ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है।
2: बट वही होना चाहिए।
0: हाँ, वो कैसे?
2: क्यों? हाँ, वो दूसरी बात है, क्यों होना चाहिए? पहले बात तो यह है कि भी क्यों हो, क्योंकि आप अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत तो बड़ी बात है कि आपकी जो वेवलेंथ है, ट्यूनिंग, हमने पहले भी ट्यूनिंग की बात की है, वो आपका ट्यूनिंग बहुत ही अच्छा हो सकता है।
0: ऑरा की जो हमने बात की,
2: ऑरा की बात, या तो कहे कि भी विचारों की वेवलेंथ भी एक दूसरे के साथ मिलती हो, वो ट्यूनिंग आपका अच्छा हो सकता है। दूसरा कि जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे तब वो आपको सहयोग भी देगा। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे सामने वाला व्यक्ति सहयोग भी नहीं देगा। और अब रही बात चेंज की, तो वो चेंज भी तब ही पॉसिबल है
0: जब हम पहले एक्सेप्ट
2: करते हैं, और फिर वो आपकी बात को सुनेगा, उसको रियलाइजेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि चेंज इजी नहीं है। एक तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे चेंज की जरूरत है, दूसरी बात अभी एक्सेप्ट करने के बाद भी मेरे में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए
0: कि मैं वो चेंज।
2: हाँ, तो वह सब करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट।
0: यस सिस्टर शिवानी, मैं आपको कह तो देती हूँ कि आप जैसे हैं मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मतलब क्योंकि वो सही तरीका है, कर रही हूँ अपने आप को भी मैं बोल रही हूँ कि हाँ वो जैसे हैं मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ कहीं ना कहीं। हाउ टू एक्चुअली गेट इन टू दैट रियल सेंस कि मैं रियली उसे एक्सेप्ट कर लूँ, कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप जैसी हैं वैसी ठीक है। वो हो नहीं, मतलब मैं कितना भी कह लूं कि आप जैसे हैं ओके, मुझे आपने कहा कि मुझे करना चाहिए तो मैं ठीक है जैसे हैं ओके ओके, लेकिन इंटरनल जर्नी व्हेन विल आई रियलाइज दैट यस आई हैव एक्सेप्टेड इट द वे यू आर,
1: द क्वेश्चंस विल स्टॉप। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अगर ऐसा ना करते ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा होता, या ऐसा ना बोलते ऐसा बोलते तो ज्यादा अच्छा होता, तो वो क्वेश्चंस जब स्टॉप हो जाएंगे और वो जो जैसा कर रहे हैं वैसे ही आपको अच्छे लग रहे हैं, देन इट इज एक्सेप्ट।
0: देखिए मुझे इरिटेशन होती है ना उससे,
1: सो देन देयर इज नो एक्सेप्टेंस येट, ना एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उसका थोड़े अपने ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देके शुरू में एफर्ट करना पड़ता है।
0: पर मैं कहूँ कि मैं क्यों करूँ?
1: इट्स जस्ट सिंप्लिसिटी फॉर योर सेल्फ, नथिंग एल्स, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी इफ इट इज लाइक, अगर आप जैसे हैं वैसे मुझे पसंद नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि आपको मिलते ही, आपको देखते ही, आपसे बात करते ही मेरे मन में वो सारी चल रही है, यू नो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा करते, फिर मैं आपको फोर्सफुली चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई कैन नॉट चेंज यू, तो आई डू दिस जर्नी ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, ट्राइंग टू चेंज अदर पीपल। तो इफेक्ट इज कि आप जैसे हैं वैसे आप खुश हैं, लेकिन आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ पेन
0: अननेसेसरी,
1: सो इट्स जस्ट कॉम्प्लिकेशन इन माई ओन लाइफ, यू नो। तो इफ आई कुड ओनली से कि आप जैसे हैं मेरे को ठीक है बिल्कुल, इट्स जस्ट सिंपल फॉर मी। सी अवेकनिंग मीन्स एवरीथिंग सिंपल फॉर मी, नॉट उसका बेनिफिट दूसरे को ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एवरीथिंग सिंपल फॉर मी। बाकी आपने कुछ कह दिया और मैं चार दिन उस पर वो सोचती रहूं क्यों ऐसा क्यों, तो देन इट्स जस्ट कॉम्प्लिकेशन।

0: within for me. So acceptance hamare jeevan ko बहुत सरल बना दे,
1: चाहे वो खुद को कर रहे हो या दूसरे
0: किसी को या परिस्थिति को।
1: डॉक्टर साहब लेकिन इतना आसान नहीं होता है।
2: तनुप्रिया जी आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है कि ये मुश्किल जरूरी है परंतु वह आवश्यक है।
0: दिस इज एक्चुअली इट हैज टू बी डन,
2: एक्सेप्ट इज रियली नेसेसरी। और उसके लिए जो एक मुख्य पॉइंट कि क्यों एक्सेप्ट करे या तो कैसे करे, क्योंकि हम सभी डिफरेंट हैं, ये बात भी समझ में आ जाए कि भाई हमारे सर का एक बाल भी सेम नहीं है इस दुनिया में, वो यूनिक है। तो जैसे ही मैं जो हूं सामने वाले की पर्सनालिटी में बहुत फर्क होना है, तो इसके कारण वो डिफरेंस को भी हम एंजॉय करें, एक्सेप्ट करने के बदले भी। जैसे सीरियल्स में भी जब लोग अलग अलग रोल करते हैं उसमें स्पाइस है, ट्रेजेडी है, नहीं मारा मारी है, तब तो एंजॉयमेंट होती है, तब उसको लोग देखते हैं, नहीं तो नहीं देखते। तो ऐसे ही जीवन में भी ये होना जरूरी है,
1: सब तरह के लोग होने जरूरी है, कहते हैं। हाँ। लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जैसा बिहेव कर रहा है उसकी बजाय अगर वो इस तरह से बिहेव करे या इस तरह का हो जाए तो उन्हीं के लिए बेहतर हो जाएगा, क्या तब भी मुझे उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए?
2: नहीं, वो ठीक है, वहां उसको चेंज करना चाहते हैं तो पहले एक्सेप्ट करो।
1: हाँ,
2: फर्स्ट यू एक्सेप्ट, गिव देम अ कम्फर्टेबल फीलिंग। जैसे हमारे बच्चे ही है, उनको हम एक कम्फर्टेबल फीलिंग करें कि वी विल गिव यू अनकंडीशनल लव, नो वी विल एक्सेप्ट यू एज यू आर। और फिर उनको अगर एक बार जब वो स्टेट ऑफ माइंड में हो, क्योंकि चेंज कब आता है, बार बार टोकने से चेंज नहीं आता है, उल्टा उससे तो रेजिस्टेंस डेवलप होता है।
1: लेकिन क्या सिस्टर शिवानी मुझे ये पता चल पाएगा कि मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया है उसके बाद मैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं बिना उन्हें एक्सेप्ट किए ही चेंज कर रही हूँ? क्योंकि दिस इज अगेन अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन।
0: एक्चुअली जो भाई साहब ने कहा ना कि चेंज को लाने के लिए एक शक्ति की जरूरत है, पावर के बिना चेंज नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कम्स यू नीड पावर। आप सिर्फ सोचें कि मैं हो जाऊं चेंज, वेरी डिफिकल्ट, हमारे खुद के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, तो वैसे ही दूसरे के लिए भी डिफिकल्ट है। आज देखो एक एक आदत छोड़ना या चेंज करना कितना चैलेंजिंग हो जाता है, तो वो पावर कौन सी होगी? कौन सी पावर वो है जो आपको इंस्पायर कर देगी चेंज होने के लिए? दैट विल बी द पावर ऑफ लव। यू नो वो एक पावर जब मिल जाती है ना हमें किसी से, यू नीड एनर्जी टू चेंज, तो दैट शुड बी पॉजिटिव एनर्जी। अभी हम जो एनर्जी भेजते हैं वो क्रिटिसिज्म वाली एनर्जी होती है। यू नो एनर्जी तो हम भेज रहे हैं, अपनी तरफ से ठीक ही बोल रहे हैं, तुम तो हो ही ऐसे, वी थिंक कि ये मोटिवेट कर देगा दूसरे को, तुम्हारा भाई देखो कितना अच्छा कर रहा है, कंपैरिजन। ये सारी जो नेगेटिव वेज हम यूज कर लेते हैं जिससे दूसरा इंस्पायर हो जाएगा चेंज होने के लिए, दैट्स वेरी टेम्पररी। अगर हम किसी को सही मायने में करना भी चाहते हैं इंस्पायर, तो वी नीड टू सेंड पॉजिटिव एनर्जी, नॉट नेगेटिव एनर्जी। तो क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, ये सब नेगेटिव एनर्जी है जिससे वो और भी, मतलब जिसको हम कहते हैं जिद्दी होते जाते हैं, स्टबर्न होते जाते हैं अगर उन्हें अपनी बात राइट लग रही है। तो पहले वी हैव टू सेंड लॉट ऑफ लव,
1: बट देन व्हेन
0: लव कम्स विद एक्सेप्टेंस, सी दैट्स वेयर द कनेक्टिविटी इज गोइंग। आई विल बी एबल टू लव यू ओनली इफ आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, you know, and that's like what a mother does for a child. एक माँ के लिए कहते हैं ना कि उसका बच्चा चोर भी होगा तो भी वो कहेगी नहीं मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, you know, that's the kind of love she has for the
1: child. हम दुनिया के लिए उस लेवल तक पहुँच सकते हैं, हम अपने दोस्तों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए अगर हम बात करें।
0: बिल्कुल, तो जब हम वो एक्सेप्टेंस कर लेंगे ना कि वो जैसे है, अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप चेंज होते हैं तो मेरा व्यवहार चेंज हो जाता है, थोड़ा सा आपने मेरे कहे अनुसार बात नहीं की तो मैं अपना मुंह बना लूं, या मैं अपना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस। थोड़ा सा आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। यू नो इट नॉर्मली हैपन्स बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, क्योंकि एक लंबी जर्नी है, और जब शायद आप मिले थे जब आप 20-22 की एज में थे तब थिंकिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट था। आप 30-35-40 की एज में जाते हैं, हो सकता है दोनों में से एक का इवॉल्वमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, एंड देन वी से बट यू नो जिससे मैंने प्यार किया था वो ये नहीं था। यू नो पीपल talk like that person has changed, so that means ke ab jaisa wala then I don't like, so then that is not acceptance. So then the person says aap waise wale ban jao jisse maine shaadi ki thi, so these are, then that was not really,
1: wo kahan chala gaya jisse maine pyar kiya tha,
0: you know, these words. Ya jaise parents bachcho ko kehne lag jate hain kai bar, kyunki jab tak wo chote the their life was around the parents, lekin bade hone ke baad you know the son is with the wife, so the mother will say wo mera beta।

0: wala kahan gaya, you know, we're looking for that same, we don't want people to change. It's a very paradoxical thing. Hum change bhi karna chahte hain unko har time, lekin apne anusar. Agar wo change ho gayi kisi aur apne liking anusar, then we don't like the change.
1: And we don't even understand that anything which is constant in life is change. It has to change.
0: So hum unko agar hum kehte hain I like you, I really love you because this relationship is like that, then aap जैसे भी होंगे, आज आप ऐसे हैं, कल आप किसी और तरह होंगे, आई स्टिल रियली लाइक यू, तो देन दैट पॉजिटिव एनर्जी वो ट्रांसमिट होती है. और ये बोलने की बातें नहीं होती है, यू डोंट हैव टू कीप सेइंग दिस टू समबडी, उसको ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिलेगी. और वो पॉजिटिव एनर्जी जब आपसे मिलेगी, और फिर अगर आप you know, उसको कहते हैं कि ये चीज करके देख लो, you know, हम जो फाउंडर हैं ब्रह्मा कुमारीज के, दैट्स हाउ इट हैपेंड. कि जब ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई और जैसे एक एक भाई बहने आते गए, हर एक अलग अलग परिवार से, अलग अलग संस्कार, अलग अलग बैकग्राउंड, कमजोरियां और विशेषताएं, सब कुछ, लेकिन जो फाउंडर है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उन्होंने क्या किया, ही जस्ट लव्ड एवरीबडी. एंड वेन एवर ही यूज्ड टू मीट अ चाइल्ड, वो पहले उनकी विशेषताओं को पहले उस बच्चे को सुनाते थे, यू नो, नॉट फ्लैटरी, लेकिन जो सही मायने में उसकी विशेषता है, आपके अंदर ये है, ये है, ये है. और वो आत्मा बिल्कुल एक यू नो एम्पावर हो जाती थी, बिकॉज इट वॉज ऑल्सो विद वाइब्रेशन, इट वॉज नॉट विद वर्ड्स. एंड फिर वो सब कुछ कहकर ब्रह्मा बाबा कहते थे, बच्चे अगर इस सब के साथ तुम ये एक बात भी कर दो ना, और साथ में, तो देखो कहां से कहां पहुंच जाओगे. एंड दैट पर्सन जस्ट वांटेड टू डू इट,
1: क्योंकि कहा जाए कन्विक्शन के साथ.
0: एंड फॉर द बेटरमेंट, यू नो, चेंज में भी दो चीजें हैं, एक है आई वांट यू टू चेंज बिकॉज इट्स गुड फॉर यू, एंड एक है आई वांट यू टू चेंज बिकॉज आई लाइक इट दैट वे. दो चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है.
1: बिल्कुल.
0: आई वांट यू टू चेंज बिकॉज मेरी लाइफ ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी इफ यू चेंज लाइक दैट. तो ये सारी जो कंडीशनल्स आ जाती हैं बीच में, तो दूसरा व्यक्ति फिर चेंज.
1: अगेन वी नीड टू चेक आवरसेल्फ्स.
2: इसमें एक बात एक जरूरी ये है कि भल हम बार बार ना कहें, वो शिवानी बहन ने बहुत अच्छा कहा कि भी रोज रोज कहने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट, परंतु आवश्यकता है कि हम उनको अप्रिशिएट तो करते ही.
0: हाँ, जो उनकी पॉजिटिविटी,
2: हाँ, डेली भी आप कुछ कुछ बातें अप्रिशिएट करो, छोटी सी भी आपने अच्छा ड्रेस पहना अप्रिशिएट करो. ये नहीं कि वे तो हमेशा ऐसे ही चलता रहता है,
1: क्योंकि वो भूल जाते हैं.
0: मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान ये रखना कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए.
2: कुछ चीजें याद भी रखो, जैसे बर्थडे है उसको याद रखो. कई बार तो याद दिलाया होता है तो भी उस दिन भूल जाते हैं.
1: बिल्कुल. ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये हमें एक्चुअली हम सोचते हैं कि हमने उन्हें पता ही है, लेकिन कहते रहना बार बार कन्विक्शन के साथ बहुत जरूरी होता है. डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एक्सेप्टेंस जो है वो होनी ही नहीं चाहिए, इट इज नेसेसरी. आपने कहा कि आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा शायद. क्यों आवश्यक है इतना ज्यादा?
2: इसलिए एक्सेप्टेंस आवश्यक है कि भी तब ही हम साथ में मिलके, क्योंकि एक टीम है. आज टीम स्पिरिट की बहुत बड़ी बात है, न केवल कंपनीज में परंतु फैमिली भी एक टीम है. तो फैमिली जो एक टीम है, वो भी अच्छे से आपको अगर अपने परिवार को चलाना है तो वह टीम स्पिरिट होनी चाहिए. वह तब ही होगी कि जब एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे. एक बहुत अच्छा उसका अर्थ है कि भी फैमिली का अर्थ क्या है ना, फैमिली का स्पेलिंग अगर आप देखो तो फैमिली का अर्थ है ना, फादर एंड मदर आई लव यू. तो बस यह बात है, तब आएगी कि जब एक्सेप्टेंस है. अगर बच्चों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो कभी भी ऐसा नहीं कर.
1: आई लव यू, ये आई थिंक सबसे ज्यादा कहा जाने वाले तीन शब्द हैं,
0: लेकिन नॉट अंडरस्टूड.
1: बिल्कुल. मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड्स जो है वो, बिल्कुल सही तरह से अगर देखें हम तो एक्सेप्टेंस. अच्छा, दूसरों को एक्सेप्ट ना करने में, कि दूसरों को ये कहें कि हमारी तरह से चेंज क्यों नहीं होते, कहीं ना कहीं हमारी ईगो भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है, काफी उसमें सामने आती है. हाउ डू वी रियली डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर ईगो एंड सेल्फ एस्टीम, यू नो, क्योंकि कितनी बार हम ये बात करते आ रहे हैं कि ईगो और सेल्फ एस्टीम, मतलब मैंने तो ये इसमें मेरी ईगो नहीं थी, ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, सेल्फ एस्टीम थी, इस कारण मैंने ऐसे किया, इस कारण मैं ये चाहता था या मैं चाहती थी, लेकिन समवेयर वो ईगो का एक एस्पेक्ट होती है.
2: बहुत सारे डिफरेंस है वास्तव में, नो, इट इज पोल्स अपोजिट. लगता है सिमिलर, लेकिन उसमें आसमान जमीन का फर्क है. जैसे कि ईगो जो है वो हमें ऑलवेज एक्सटर्नल ले जाएगा, नहीं, बाह्य बातों में ले जाएगा. सेल्फ एस्टीम आपको इंटरनलाइज करेगी वास्तव में, है ना. ईगो को

0: हर बार प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं राइट हूं, मैं राइट हूं ना। सेल्फ एस्टीम को यह प्रूव करने की जरूरत नहीं, इसलिए ईगो वाला औरों को कहेगा कि देखो मैंने अच्छा किया, कुछ न कुछ ऐसी युक्तियां ढूंढेगा कि लोगों को यह कन्विंस हो कि भाई ये जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। परंतु सोमान वाला व्यक्ति जो है वो इंटरनल उसका डायलॉग होगा, वो अपने आप को कन्विंस करेगा कि मैं अच्छा हूं। जैसे सूर्य को ये कहना नहीं पड़ता है कि सूर्य तुम बहुत अच्छे हो, वो अच्छा है ही है। तो ऐसे ही सेल्फ एस्टीम वाला जो है उसका वो इंटरनल डायलॉग है और वो ईगो से बाहर आना ही पड़ेगा। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर आध्यात्मिक दुनिया में हर व्यक्ति थोड़ा तो पुरुषार्थ करता ही है, आप आध्यात्मिक जगत में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं जब तक ईगो को ब्रेक नहीं करें।
1: वो जो आप कह रहे हैं कि हाँ, वो जो शेल है वो ब्रेक होना ही
0: पड़ेगा। हाँ, पंछी को अगर मुक्त होना है तो अंडे को तोड़ना ही पड़ेगा, जब तक नहीं टूटेगा वह मुक्त दुनिया में नहीं आएगा।
1: तो वो जो ईगो का शेल हमने है, जो वो शेल है उसको ब्रेक करना होगा। इतना आसान है, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। मैं तो मानती हूँ कि मेरी ईगो ही नहीं है, तो मेरी सेल्फ एस्टीम है। अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है कि कहते हैं कि जो ईगो है वो बहुत जो ज्यादा बोल रहे होते हैं, ज्यादा लाउड होते हैं वो लोग होते हैं, और जो बड़े शांत होकर बैठे हैं, जो अपने गरिमा में बैठे हैं, उनमें ईगो नहीं होती है। बट
2: समवेयर डीप
1: दे ऑल्सो आर प्रिटी ईगोइस्टिक।
0: इट कैन बी अ स्मॉल साइन कि जो बार बार बाहर बोलता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी।
1: ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि ये
0: साइलेंट वाला व्यक्ति वो सेल्फ एस्टीम वाला हो सकता है, साइलेंट वाला ईगोइस्टिक होगा,
2: कि वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग भी बहुत साइलेंट रहते हैं। मतलब वो एक ग्रुप में बैठे हैं तो वो बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल ही नहीं है इंटरेक्ट करने में।
0: लेकिन वो डिफ्रेंशिएशन ये है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सेल्फ एस्टीम का, कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला अकेला रहेगा बट वो अनकम्फर्टेबल फील करेगा, उसके चेहरे से भी पता चलेगा कि वो खुश नहीं है।
1: लेकिन सुपीरियरिटी वाला भी कई बार होता है कि ओहो अच्छा चलिए आप बातचीत कीजिए, मैं तो सुन रहा हूँ कि क्या बात कर रहे हैं आप। अगेन दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग एन ईगोइस्ट एक्चुअली।
0: यहाँ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज ईगोइस्ट।
1: हाउ डू आई एक्चुअली रियलाइज यू नो कि मैं जो मैं बिहेव कर रही हूँ और या जो भी मैं एक चीज कर रही हूँ वो ईगो है या सेल्फ एस्टीम। हाउ डू एक्चुअली आई कम टू नो अबाउट इट, बिकॉज पता ही नहीं चल पाता कई बार तो कि कई बिहेवियर्स ऐसे हैं जिसमें मानती हूँ कि वो सेल्फ एस्टीम है। मैंने तो इसलिए कहा था, इसलिए किया क्योंकि वो मेरी मुझे लगा कि सेल्फ एस्टीम का एक रूप है, लेकिन वो अल्टीमेटली अगर हम उसमें जाएं तो वो ईगो निकलती है।
2: कोई भी नेगेटिव बिहेवियर जैसे रिफ्यूजिंग, क्रिटिसाइजिंग, जस्टिफाइंग, बॉसिंग, कम्पीटिंग, ये जितने भी नेगेटिव बिहेवियर्स हैं जिनको हम सेल्फ रिस्पेक्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट एक पॉजिटिव फीलिंग है। ईगो एक नेगेटिव फीलिंग है, यू नो इट जनरेट्स अ डिस्टर्बेंस। नेगेटिव और पॉजिटिव से वही है, पॉजिटिव स्टेबल है, नेगेटिव एनर्जी डिस्टर्बेंस है। तो जहां भी एक एनर्जी डिस्टर्बेंस है तो वो जितने भी बिहेवियर्स हैं जो मेरे में या जिनके प्रति वो टारगेट किए गए हैं, यू नो समटाइम्स आई कैन से यस आई एम स्टेबल बट आई एम शाउटिंग एट समबडी, बट दूसरे पर क्या असर पड़ रहा है? तो आप पे वही असर पड़ेगा जिस क्वालिटी ऑफ एनर्जी। इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आई एम सेंडिंग यू पॉजिटिव एनर्जी बट यू आर फीलिंग नेगेटिव। ये कैसे होगा? आप वो ही फील करेंगे जो मैं आपको भेज रही हूँ। तो अगर आप यू नो इफ आई से कि नहीं मैं बिल्कुल ईगो में नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं है, ये तो बिल्कुल राइट था, तो दूसरे को वही फीलिंग आनी चाहिए।
1: अगर वो नहीं आ रही है,
2: अगर दूसरा हर्ट हो रहा है, दूसरा अपसेट हो रहा है या कुछ, देन आई हैव सेंट दैट एनर्जी। यू नो इट्स ओके, इट्स नॉट दैट, हो सकता है दूसरे का भी परसेप्शन, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि इफ आई सेंड पॉजिटिव एनर्जी यू विल टेक इट नेगेटिवली, एंड ऐसा हो नहीं सकता कि आई सेंड यू नेगेटिव एनर्जी एंड ऑफकोर्स नाउ दैट डिपेंड्स इफ यू टेक द पावर टू कन्वर्ट दैट एनर्जी देन इट्स एलिवेटेड। आई एम टॉकिंग ऑफ टू नॉर्मल पीपल, इफ आई सेंड यू पॉजिटिव यू विल गेट पॉजिटिव, इफ आई सेंड यू नेगेटिव यू'll get negative. तो वो ऑटोमेटिकली पता चलता है।
0: डिमांडिंग, इसके द्वारा पता चल सकता है कि those who are very much demanding तो ईगो है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला वो डिमांडिंग नहीं हो।
1: अच्छा, यहाँ एक स्टूडेंट टीचर और पिता और बच्चे की, माँ बाप और बच्चे की बात भी आती है कि जब स्टूडेंट जो एक टीचर है डिमांड की बात करे, वो उम्मीद करता है कि स्टूडेंट मुझसे ढंग से ही बात, मुझे वो रिस्पेक्ट देगा वो, क्योंकि मैं स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ माय स्टेटस। क्या ये उसकी ईगो है या उन्हें वो यू नो लाइक ही शुड बी लाइक दिस, कि वो अपने आप उन्हें यू नो एक्सपेक्ट ना करनी पड़े,

0: स्टूडेंट शुड बी रिस्पेक्टिव.
1: दैट इज द राइट. आपने सही उत्तर भी दिया.
0: नहीं पर यहाँ कंफ्यूजन रहता है. वो टीचर कंटिन्यूस ये सोचता है कि उसको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. पेरेंट्स भी कहते हैं कि उसको मेरी बात माननी चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए.
1: नो दैट इज ईगो. इन फैक्ट नो, यू बिहेव इन सच अ वे, आप अपनी वैल्यूज को इतनी अच्छी बनाओ और जो आपका व्यवहार है ऐसा अच्छा हो कि ऑटोमेटिक वो रिस्पेक्ट करे आपको. डिमांड नहीं करनी पड़ेगी, एक्सपेक्ट नहीं करना पड़ेगा.
0: रिस्पेक्ट रोल के लिए नहीं होने चाहिए. कि मैं क्या हूँ. रिस्पेक्ट इज फॉर द सोल, दैट्स व्हाट वी से. रिस्पेक्ट रोल के लिए नहीं, इट्स फॉर द सोल. दैट मीन्स इट्स फॉर द पर्सन दैट यू आर. इट्स नॉट नेसेसरी जस्ट फॉर, क्योंकि अगर वो जो हम बाह्य रोल के लिए देते हैं उसको हम रिगार्ड कहते हैं. दैट्स व्हाई देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट. रिगार्ड है कि कोई बड़ा अंदर आता है तो हम कुर्सी से उठते हैं, उनको जगह देते हैं, ये रिगार्ड है. एंड इट्स ऑलवेज आउटर, आउटर वर्ल्ड में. लेकिन जो रिस्पेक्ट है वो अंदर से, यू नो इट, वो अंदर से निकलेगी आपके.
2: तो वो अंदर से वो बच्चे के लिए भी हो सकता है.
0: हाँ, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि रिस्पेक्ट एक बच्चा पेरेंट को करेगा. रिस्पेक्ट एक पेरेंट को भी बच्चे के लिए करनी है. रिस्पेक्ट एक टीचर को भी स्टूडेंट के लिए करनी है. क्योंकि रिस्पेक्ट इज एनर्जी विच इज फ्लोइंग फ्रॉम अ सोल टू अ सोल, इररिस्पेक्टिव ऑफ रोल, एज, एनी बैरियर. क्योंकि बच्चा सिर्फ शारीरिक रूप से वो बच्चा है, लेकिन आत्मा तो वही है, एनर्जी वही है. एंड आई रिस्पेक्ट दैट एनर्जी. तो वो रिस्पेक्ट फिर आंतरिक एक दूसरे के लिए, दैट्स पॉजिटिव. अगेन इट्स एक्सेप्टेंस, इट्स अगेन इट्स इंटरकनेक्टेड. इफ आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू.
1: एक भाई था जो सारी हमारी जो संस्था है उसमें काफी ही हैड प्रीडोमिनेंट रोल. तो एक बार उन्होंने बहुत गुस्सा किया, कई बातें दादी को सुनाई. तो भी उन्होंने शांति से सुना, तब रिएक्ट नहीं हुए पीसफुली. और फिर थोड़ी देर हुई तो तुरंत कहा कि भी वो भाई को खाने पे बुलाओ, मेरे साथ बैठ करके हम भोजन करेंगे. तो देखिए यह बात है. वो भाई खुद सुनाते हैं कि भी यह इवेंट हुई, जीवन भर में दादी को रिस्पेक्ट करता हूँ. क्योंकि वह महानता की निशानी है कि तो उनको सुनाया था. अगर वो नहीं भी बुलाते तो शायद मेरे मन में कोई नेगेटिव बात आने वाली नहीं थी. लेकिन यहाँ उनका स्वमान है, ईगो नहीं है, कि जिसके कारण उनको रिस्पेक्ट दिया.
0: और अगेन उनकी उनकी एक्सेप्टेंस थी ना. उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इट्स लाइक ओके,
1: फाइन. या तो सभी उनके पॉजिटिव थॉट चले होंगे साथ उस समय, जो भी 15-20 मिनट का समय होगा. कि भाई कोई कारण से इन्होंने कहा, मुझे भी अपने को शायद कुछ जीवन में चेंज करने का, ऐसा पॉजिटिव सोचा होगा, तब उनको एक्सेप्ट.
0: और वही आपने कहा ना कि अगर आप नेगेटिव देते हैं तो जब तक सामने वाला एलिवेटेड नहीं होगा तब तक उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं. सो दैट इज फॉर दीज सोल्स हु रीच दैट लेवल, कि जो एनर्जी आप भेज रहे हैं वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पाएंगे. बहुत बहुत अच्छा लगा आज हमने जो बातचीत की, कि सचमुच हम कहते तो बहुत आसानी से है कि मैं दुनिया से प्यार करना चाहती हूँ, मैं दुनिया को प्यार देती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि सबको प्यार किया जाए. लेकिन हम सच सही मायने में नहीं जान पाते क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. तो जितना जरूरी खुद को एक्सेप्ट करना है उतना ही जरूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना भी है. तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया. खुद से प्यार हम में से हर कोई करता है. हम ये भी चाहते हैं कि हम लोगों को प्यार करें और लोग भी हमें प्यार करें. तो इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो यही कि स्वीकारें, खुद को स्वीकारें, लोगों को स्वीकारें, जैसे हैं उन्हें स्वीकार लें और फिर प्यार स्वतः ही हो जाएगा. ऐसी कई और बातें हैं जो आपके दिल में भी उठ रही होंगी. तो अगर आपके पास कोई सवाल है, आपका स्वागत है. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. इसके साथ ही अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारी.
3: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है. मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है. सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं मीता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: जब भी हम हमारे जीवन की ओर देखते हैं, कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं जिनके बगैर जीवन आगे बढ़ता ही नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये बातें हमने सुनी जरूर हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो शायद सबसे ज्यादा जरूरी रोटी ही होती है। भोजन वो हमारे जीवन का केवल एक अभिन्न अंग ही नहीं, जीवन को चलाने वाला एक बहुत ही अभूतपूर्व और बेशकीमती साधन है। सारा जीवन चक्र, सारा कार्य व्यवहार, हमारा पूरा समाज ही भोजन के इर्द गिर्द घूमता है, और ये भोजन को उगाने वाले हमारे किसान, इसलिए उन्हें अन्नदाता कहा जाता है, उन्हें देवता का स्थान दिया गया है। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आरजे शांतनु आज आपके बीच में एक ऐसे ही अन्नदाता की कहानी लेकर आया, जिन्हें भारत सरकार ने हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। इन्हें नवाजा गया है नव अनाज के नायक के टाइटल के साथ। आज हमारे बीच में है नेकराम शर्मा जी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच में आज नेकराम शर्मा जी जुड़े हुए हैं। नेकराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है।
4: जी धन्यवाद, धन्यवाद जी।
3: नेकराम जी, आज आपने समय निकाला है, मुझे पता है कि आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं और जगह जगह आपको जाना पड़ता है, कई ऐसे जगहों पे भी आप जा रहे होते हैं जहाँ पर की कनेक्टिविटी नहीं होती है, फिर भी आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
4: धन्यवाद जी।
3: नेकराम जी, आपके

0: नाम में ही नेक शब्द जुड़ा हुआ है और आपने नेकी का काम करना बहुत पहले से शुरू किया। थोड़ा आप अपने जर्नी के बारे में बताएं, आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, क्या आपको प्रमोट करता है, कौन सी वो बातें थी जिनकी वजह से आज आप जो काम कर रहे हैं उस पर आप टिके हुए हैं?
1: देखिए, मेरा तो ये सफर काफी लंबा, और मैं बेसिकली तो किसान का बेटा हूँ और किसानी हमारे लिए कोई नया चीज नहीं है, वो बचपन से ही सीखते जाते हैं माँ बाप दादा दादी के साथ साथ। और मैं जब अपना पढ़ाई लिखाई फारी करने के बाद, मुझे शौक था अपना खेती बाड़ी से सबसे ज्यादा। मेरे माँ बाप चाहते थे मैं नौकरी करूँ, मगर मैंने नौकरी के लिए कुछ प्रयास भी किए परंतु वो कहीं ना कहीं मैं उसमें सफल मैं नहीं रहा, जबकि बहुत मैंने जगह पे टॉप किया इंटरव्यू में, कई जगह भर्तियों में, मगर फिर भी मेरे हाथ नौकरी नहीं लगी। और उसी वक्त मुझे मन में लगा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मुझे अपना काम करना है। तो इसके चलते मैंने अपना खेतीबाड़ी शुरू किया, और जिसमें कि मेरे माता पिता भी मुझे खुश नहीं थे कि मैं अपना खेतीबाड़ी करूं। और मैंने बहुत सारा सीजनली सब्जियां, अपना लोकल चीजें, वो सब तैयार करना शुरू किया। उसी बीच में मुझे एक घटना ऐसे हुई कि हमारे वहां क्योंकि सभी लोग किसान हैं और वो पशुपालन मुख्य व्यवसाय है, मगर पशु के लिए जो चारा है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मेरा जहां पर गांव है, गांव के दोनों तरफ जो है ना ऊपर को पहाड़ियां थी, और जिसमें जब बरसात में फ्लड आते, बारिश आती तो पूरा फ्लड, उसमें पत्थर कंकर मिट्टी सब नीचे खेतों तक पहुंचते हैं, और घरों में भी कई बार बड़ा डर रहता था, बड़े नाले आते बहुत। तो मैंने सोचा ये तो बहुत गड़बड़ है और हमें ये जंगलों को इसको कुछ तरह से संरक्षण देना चाहिए। लोग कई बार ये आग्रह वन विभाग से भी करते रहे हैं, वन विभाग क्या करता है कि कोई चेकडैम लगाता है, तो मुझे लगा ये तो बहुत गलत है, अनसाइंटिफिक है कि चेकडैम बांधा नाले में, उसमें जो पक्के पत्थर है उनको तोड़ा और जाके कच्चा सा एक डैम बना दिया हल्का, और जब फ्लड आता है तो वो डैम समेत सब नीचे जाता है। मैंने कहा वो तो तरीका नहीं है, इसको टोटल कंजर्वेशन होना चाहिए। तो मैंने अपने गांव में ये मीटिंग करना शुरू किया। ये लगभग बात थी 1990 के आसपास में, दिसंबर जनवरी का महीना रहा। इस बीच में तो हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत होती है, और मैंने तब तत्काल क्या किया, लोगों के साथ मीटिंग करके खासकर महिलाओं को उसमें जोड़ा कि वो घास के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता था, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हाँ, महिलाओं को साथ मीटिंग किया और उनको काफी अच्छा भी लगा, मगर सवाल यही था कि उस वक्त विभाग, वन विभाग और लोगों के बीच में काफी सारा एक था, एक मैं खाई कहूँ कि वो विभाग जो है जनता को उसमें जो सहभागिता होना चाहिए, जो जोड़ना चाहिए, उनको उसके संसाधनों के प्रति जागरूक करना चाहिए, वो सब बात नहीं होती थी। सिर्फ बजट आता और उस बजट को खर्च करने के लिए गांव के लोगों को लेबर के रूप में लगाया जाता, और बस इतना सा ही रिश्ता था। और उसके बाद वो गांव के लोग भी परवाह नहीं करते, तारें टूट गई, पशु चले गए, सब वो सब चलता जाता, तो बजट खत्म हो जाता। तो हम लोगों ने लोगों को बोला कोई तार बार नहीं लगानी, हम लोग सोशल फेंसिंग करेंगे और इसमें हम लोग कुछ वन महोत्सव करेंगे और वन देवता को हम लोग पूजा करेंगे, फ्लड ना आए ऐसे। फिर लोग जुड़े और वो जंगल में हमने गतिविधि करने शुरू किया। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत विरोध किया कि ये कैसे हो सकता है ऐसा, वो तो वन विभाग करेगा, ये जंगल तो वन विभाग के हैं। हमने कहा वन विभाग नौकरी करता है, वो दो साल होगा, एक साल होगा गार्ड वहां पर, उसके बाद वो दूसरी जगह जाएगा। लोग गांव के लोग परमानेंट है, तो हमें अपना समस्या को जो है ना खुद उसको निपटारा करना है, वन विभाग हमारी मदद करे जो भी वो कर सकता है। तो हमने दूसरी तीसरी मीटिंग में वन विभाग के गार्ड को भी बुलाया, परंतु वो भी हमारे से बहुत खुश नहीं थे। तो कहते तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये जंगल में ऐसे नहीं कर सकते, वो तो सरकार का है और हम लोग उस पर करेंगे। हमने कहा हम उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और तुम भी उसको बचाने का प्रयास ही करते हैं, जब हम और आप मिल करके ये सब करेंगे तो सफलता मिलेगी ना। तो ऐसे करके अभी उनको, क्योंकि उनके बड़े ऑफिसर जब तक ना बोले तो छोटे वाला मदद नहीं करता, तो मैंने जाकर के वहां के जो DFO थे उनसे बात करी। उनको भी लगा कि लोग कैसे कर सकते हैं, लोग तो जंगल में चोरी करते हैं, वो तो नुकसान करते हैं। हमने कहा नहीं, लोग नुकसान

0: इसलिए करते हैं कि उसमें उनका भागीदारी नहीं है। जिस दिन वो खुद पेड़ लगाएंगे बिना पैसे के लगाएंगे उसमें, और आप पेड़ मुहैया कराओ, हमें झाड़ी नहीं चाहिए, वो जंगल हमारा है और उसमें हमारी जरूरत के पौधे लगाइए, घास के पौधे लगाइए, उसमें बहुत सारा जो वाइल्ड लाइफ के लिए हम लोग उसमें लगाएंगे, कुछ पौधे लगाएंगे, ऐसा करके करेंगे। तो उनको कुछ समझ आया तब जाके थोड़ा विभाग भी जुट गया। और
1: विक्रम जी, ये जो आपने कहानी बताई ना, यहाँ पर मुझे आपको रोक करके ये जानने का और ज्यादा मन कर रहा है कि जो आपने ये बात कही कि भाई जब तक लोगों को अपनी भागीदारीता नहीं दिखती किसी प्रयास में, जब तक लोगों को उसमें उनका फायदा नहीं दिखता किसी प्रयास में, तब तक उनको उस चीज के साथ जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये तो वन विभाग वालों को तो चलो फिर भी समझाना आसान है, क्योंकि ऐसा माना जाता है वो उसी विषय से जुड़े हुए हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो समझते होंगे। लेकिन गांव वालों को ऐसा नहीं लगता कि ये किन क्या बातें कर रहे हो भाई, हम चाहते हैं पैसा कमाना, धन कमाना, आप कहाँ हमसे मुफ्त में पौधे लगवा रहे हो। तो वो जो मानसिकता है गांव वालों का, उसको तोड़ने में आपको क्या मेहनत लगा?
0: देखिए, जो गांव के लोग हैं, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर का मेरे पास अनुभव है, लोग वनों को देवता मानते थे, लोग जगह जगह पौधे लगाते हैं, बैठक स्थल है वहाँ पौधे लगाते हैं, पानी देते हैं, बचाते हैं, मगर जंगल में वो इसलिए नहीं लगाते कि जंगल में जो वन विभाग का जो आदमी होता है फॉरेस्ट गार्ड, वो पूरा पुलिस की तरह डंडा लेकर के खड़ा होता है। और वहाँ क्या होता है कि जो हमारी जरूरतें हैं जंगल से, उसके लिए वो क्या होता था कि वो रोकते थे हमारी जरूरतें, जंगल हमारा है। जब तक वो सारी चीज, वो विभाग से पहले लोगों में बहुत सारी यहाँ की कथाएं हैं कि लोग वृक्ष, फलदार वृक्ष नहीं काटते थे, लोग जहाँ दो तीन पेड़ हैं उसमें से पेड़ नहीं काटते थे, जंगल में अकेला पेड़ नहीं होना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे गीत हैं लोगों के प्रचलित हैं यहाँ। और जंगल पेड़ पौधे का लोग बहुत पूजा करते थे, मगर विभाग के आने के बाद वो विभाग के साथ जब वो उसमें पार्टिसिपेशन नहीं रहा, सहभागिता नहीं कि हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे लिए मददगार हैं, तो ये सब ना हो करके तो जो जंगल वाला जो पार्ट है उसमें वो नुकसान कर सकते थे, मगर वहीं दूसरी तरफ अपनी जमीन में, अपनी घासनियों में बड़े अच्छे ढंग से पौधों का लॉपिंग करना, पौधों को बचाना, उनकी रक्षा करना। तो ये धीरे धीरे हिमाचल सरकार को भी समझ आया और कुछ समय के बाद यहाँ शुरुआत हुई हमारे वन लगाओ रोजी कमाओ योजना, कि भाई जंगल तुम पौधे लगाओ पैसा भी बनेगा तुम्हारे को। तो उसमें बहुत सारी सफलता मिली। 1990 के आसपास में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक कार्यक्रम आया और उसमें लोगों को रोजगार भी, और लोगों को बोला कि इससे जो भी उत्पाद होगा वो सब तुम्हारा है। तो हम लोगों ने भी जंगल में बहुत सारा आंवला, दाड़ू, हरड़, भोयड़ा, इनके नाना प्रकार के पौधे, घास के पौधे वो लगाए। ये सब जब लोगों ने देखा कि ये हमारा इनकम का सोर्स है, तब लोग जंगल में जो जाते, एक दिन वन महोत्सव मनाते, सीड सोइंग करते, इतने समय लगना, ज्यादा समय नहीं, उनको पता हो गया कि वो हमारा इनकम का एक सोर्स बन रहा है। उसमें जो ये दाड़ू है, दाड़िन अनारदाना, वो कई जगह पे हमारे लोग हजारों रुपया कमाते हैं वो दाड़ू अनारदाना बना करके, आंवला बेच करके। तो ये सब जंगल में है, तो वो उसको वो अपनी संपत्ति जब मानेंगे तो उसमें वो मदद करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, आज ये स्थिति है, अगर जंगल में कोई आग लगाता है, वैसे तो डर के मारे कोई लगा नहीं सकता, जंगल में कोई जो है ना ग्रीन फैलिंग नहीं कर सकता, वो गार्ड के डर से नहीं, लोगों का डर है कि कोई मुझे देख लेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो डर लोगों का होना चाहिए, विभाग का डर नहीं होना चाहिए। तो ये जो चेक है गांव के अंदर आ गया, अब अगर जंगल में आग भी लगती हो तो लोग तुरंत जाकर के उसको बुझा भी देते हैं। परंतु वही थोड़ा सा एक सवाल होता है जो विभाग है उस पर, कि जो समय रहते विभाग को जो कार्रवाई करनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम, वो सब नहीं हो पाता है, वहाँ बहुत कमी है विभाग की। और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जंगलों में आग लगती है, और जब आग लगती है तब जाकर के विभाग क्या करके बोलेगा कि अब आग बुझाने, मगर वो सब काम तो उससे पहले होना चाहिए। पंचायतों को जिम्मेवारी दें, उनको चिट्ठी जाए, कुछ अवेयरनेस का कार्यक्रम हो, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, मगर वो कहीं दिखता

0: रिलेशनशिप तैयार हुआ। क्या आपको लगता है सेम चीजें दूसरे जगह की पहाड़ियों पर भी किया जा सकता है, क्योंकि मैं खुद माउंट आबू से जुड़ा हूँ, रेडियो मधुबन माउंट आबू में है, यहाँ पर भी हमारे आसपास में कुछ ऐसा ही वातावरण है कि पेड़ जो है पहाड़ियों पे कोई लगाता नहीं है।
1: हमारा जो बातचीत करने का ढंग है वो एक बार हमें ये समझना पड़ेगा कि गांव के लोगों का जरूरतें क्या है, उनको जंगल से क्या कोई उनको आवश्यकता है, उनकी क्या निर्भरता उस जंगल पे है। तीसरी बात यह है कि वो सब लोगों को कुछ मालूम भी है कुछ नहीं भी है। एक गांव की एकता जो इस बात के लिए सोचे कि ये सारा जो क्लोरोफिल है हरियाली ये जंगल से आती है, ये ऑक्सीजन है ये जंगल से आता है, ये अच्छा सा वातावरण ये जंगल से होता है, तो सेहत के लिए वो अच्छा है। तो हम लोगों ने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, मुझे 1995 के बाद बहुत जगह विभाग के बड़े अधिकारियों ने बुलाया और बड़े बड़े कार्यक्रम हुए जिसमें हमने ये सारी बात लोगों के जहन में बिठाई और बहुत छोटे छोटे संगठन बनाए, वन समितियां बनाई और उनको उसकी जिम्मेवारी दी, उनको कुछ बजट दिया कि ये पैसा है तुम इससे जो भी करना है करो और ये जंगल को बचाओ। बहुत सारे महिला मंडल को हम लोगों ने विभाग को मोटिवेट किया और हमने कहा कि ये महिला ग्रुप है उसका ये जंगल है 10 हेक्टेयर 15 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर है और इनको तुम कुछ मदद करो, 10,000 20,000 40,000 एक चेक दे दो, मगर ये इतना जंगल बच जाएगा, उसको प्लांटेशन करने का जरूरत नहीं है, वो नेचुरली उसमें बहुत सारे वहाँ की जो स्पीसीज है जो वहाँ पे होता है वो स्वतः ही उग आता है और उसमें कभी सूखा भी नहीं पड़ता और ये सब जगह संभव है। सवाल ये है कि हम किस तरह से गांव वालों की उनकी जो उनको कैसे समझते हैं पहले और उसके बाद वो खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि हाँ हमें ये करना है और वो एक अभियान के रूप में शुरू होता है कार्यक्रम और उसमें विभाग आता है। हमारे यहाँ सब लोग धार्मिक सद्भावना के लोग हैं, हमारे जंगल हैं उसको देवता मानते हैं लोग और उसको भगवान मानते हैं लोग, प्रकृति भगवान है, ऐसे करके कोई भी आदमी हरा पेड़ को काटने के आगे नहीं आता, मगर जब कोई दुष्ट आदमी ऐसी हरकत करता हो उसको अगर सजा नहीं मिले, विभाग सजा नहीं देता है तो धीरे धीरे वो जो गलत प्रवृत्ति है वो फिर फैलती जाती है, उसको रोकना होता है, जिसके लिए जरूरी है एक गांव के लोगों का अच्छा सा संगठन, उसमें महिलाएं, हिमाचल प्रदेश में तो महिलाएं बहुत आगे आई हैं और आप कभी भी आकर के यहाँ आप आए, आपका कोई ग्रुप आए यहाँ देख सकते हैं, हमारे यहाँ तुरंत 100-200 महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं और बहुत सारी बातें होती है और बरसात में और सर्दी के दिनों में वन महोत्सव की प्रक्रिया ऐसे शुरू होती है, वो जंगल में जाकर के हलवा बनाते हैं देवता के नाम से, वो चढ़ाते हैं भगवान के नाम से, प्रकृति के नाम से वहाँ सबको प्रसाद बांटते हैं और जंगल को बचाने की कसम खाते हैं। और इस बार तो हम लोग, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, वैसे तो मैं पिछले 8-10 सालों से कोशिश कर रहा हूँ अपने लेवल पे जहाँ भी कहीं हमारा वन महोत्सव होता है हम लोग जंगल में जाकर के जो हमारे मिलेट्स हैं, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, उसको महिलाओं के हाथों ही उसको ब्रॉडकास्टिंग करते हैं ताकि वो उसमें उगेगा, वो चिड़िया का भोजन होगा और उसके लाभ ये हैं कि चिड़िया किसान के सेब में नहीं आएगी, टमाटर के खेत में नहीं आएगी और उसमें जंगल का ये लाभ है कि सॉइल कंजर्वेशन होगा और पशु के लिए चारा भी होगा, तो ये सब संभव है, ये हो सकता है। जी
0: आपने बहुत सुंदर तरीके से बता दिया कि कैसे वन महोत्सव के द्वारा आपने सबके जीवन में परिवर्तन लाया, ना केवल इंसानों के लेकिन पशु पक्षियों के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन आपने एक सवाल भी रखा कि क्या मैं समय निकाल करके ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, कौन सी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं। अगर ये हम पता लगा ले तो उस जगह की समस्या का समाधान करना सरल हो जाता है। तो साथियों, जो भी आज आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन यशस्वी भारत कार्यक्रम, नेकराम जी का ये मैसेज आप जरूर ध्यान रखिए कि आपके आसपास में जो भी गरीब लोग रहते हैं, जो भी लोग पहाड़ों में रह रहे हैं या आदिवासी चंचल एरिया में रहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, पहले उसको समझने का प्रयास

0: करें, तभी मैं या आप उनको सही मदद पहुंचा पाएंगे या उन तक सही मदद पहुंचा पाएंगे। मेघराम जी, ये अभी आपने मिलेट्स की बात कही तो अब उसी विषय पे आते हैं। इस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है मिलेट्स के लिए। मिलेट्स को हिंदी में जैसे जो हमारे मोटे अन्न होते हैं उनको हम मोटे अन्न कह देते हैं, बट एक्चुअली उसका बहुत सुंदर नाम रखा है भारत सरकार ने, श्री अन्न कहा जाता है, रेश अन्न कहा जाता है। तो ये श्री अन्न के बारे में थोड़ा सा आप बताएं।
1: देखिए, ये हमारे यहाँ जो ये सब जो पौष्टिक अनाज है, हम तो इसको बोलते हैं पौष्टिक अनाज, मूल अनाज, हमारे परंपरागत अनाज, ये मेरे जो समझ है, मैं तो पिछले 30 वर्षों से इन सब कामों में जुटा था। पहले गांव का जंगल बचाया, उसके बाद पूरा पंचायत का जंगल बचाया, फिर उसके बाद पूरा अपना जो हमारा ब्लॉक हेडक्वार्टर है वहां पर हमने लगभग 70-80 महिलाओं के ग्रुप बनाए, उनके साथ भी ये सब जंगल वाला काम किया। उसके बाद शुरुआत हो गई थी 1991-92 में कि जो हमारे ये परंपरागत अनाज है, जो कभी 50 साल भी रखो तो उसमें कीड़ा नहीं लगता, वो कितना बलवान वो अनाज है, और वो जो है उसको कभी कोई खराबी नहीं आती, कोई कीड़ा नहीं खाता। और मैं ये समझा हूँ कि ये जो हमारे पौष्टिक अनाज है, ये सिर्फ हमारा भूख नहीं मटाता, ये हमारे शरीर को वो पोषक तत्व देता है जिससे कि हमारे सारे रोग मिट जाते हैं, कोई रोग ही नहीं आता, और ये औषधि का काम करते हैं हमारे शरीर में। और हमारा भूख तो मिटाते ही मिटाते हैं, मगर हमें ये जरूर जानना चाहिए कि ये हमारे बीमारियों को भी मिटाते हैं और किसी भी रोग को आने नहीं देते, रोग हो भी जाए तो भी उसको खत्म कर देते हैं। ये जो श्री अन्न है, मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ इस बात के लिए, और क्योंकि इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हो रहा है, मुझे तो अति प्रसन्नता है इस बात की। और इसी साल ही मुझे ये सब सम्मान भी मिला, पद्मश्री से मुझे सम्मानित किया गया, और क्योंकि मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि दूसरे स्टेटों में भी जा जा करके कई जगह कई संस्थाओं को मैं इसके बारे में ट्रेनिंग देता था कि ये खाएं और ये उगाएं, इसके बहुत बड़े लाभ हैं। एक तो ये रेनफेड एरिया में होगा, इसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए, पानी आ भी जाए तो भी नुकसान नहीं है। दूसरा, ये मिक्स क्रॉप के रूप में होते हैं, इसमें 9 तरह के अनाज का जो मैंने बात कही उसमें बहुत सारे इसमें अनाज होते हैं, कुछ इसमें दालें होती हैं जो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, कुछ इसमें तिलहनी चीजें लगती हैं, तो वो भी हमारा अपने रसोई की जरूरत को पूरा करता है। तो इस तरह से 9 अनाज खेती हमारा खरीफ में और 9 अनाज खेती हमारा रबी में, इस तरह से साल में 18 तरह के जो अनाज है वो हमारे रसोई में आता है और हमारे शरीर के सारा कोई भी डेफिशिएंसी है वो नहीं होती फिर, क्योंकि वो जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए वो इन 18 तरह के अनाजों में होता है। तो ये 2 सीजन हमारे यहाँ होते हैं, रबी और खरीफ। और इसमें बहुत बड़ी बात ये है कि एक तो ये मिश्रित रूप में खेतों में उगते हैं, एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं करते और बल्कि कुछ जमीन में छोड़ जाते हैं। और तीसरा लाभ एक ये है, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड और ये जो रसायन है उसमें डालने की आवश्यकता नहीं रहती, ये कम उपजाऊ मिट्टी में भी पैदावार देते हैं और इससे जो हमारा पर्यावरण है उसको भी बहुत लाभ होता है। और सबसे बड़ा लाभ जो मैं समझ पाया हूँ आखिरी में, वो ये है कि वो हमारे शरीर के लिए पूरी तरह से औषधि है। और ये जो आज हम हॉस्पिटल में भीड़ देख रहे हैं, अगर मेरे देश में सभी लोग ये श्री अन्न का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है ये हॉस्पिटल का भीड़ कुछ ही समय में ये बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम बीमारियां आएंगी, लोग स्वस्थ रहेंगे और लोग ये खाने से खाना भी कम पड़ेगा, क्योंकि सुबह अगर हम लोग 2 रोटी खा लेंगे तो लंच तक भूख नहीं रहेगी, हमको शाम को ही भूख आएगी, शरीर को पूरा पौष्टिकता प्रदान होगी और हमारा और भी खर्चा बचेगा, हमारा समय बचेगा, हम लोग मजबूत होंगे, ऐसा मेरा मानना है श्री अन्न के बारे में।
0: लेखराम जी।

0: आपने कितनी सारी बेनिफिट्स हमें बताए, कितनी सारी पौष्टिकता की बात कहें या स्वास्थ्य की बात कहें या पर्यावरण को जो मदद मिलती है इन श्री अन्न को उगाने और खाने से, इन सब के बारे में आपने बताया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपको पर्सनल क्या बेनिफिट हुआ, आपको व्यक्तिगत रूप में क्या आप मिलेट्स का ही उपभोग करते हैं, क्या आप वही भोजन करते हैं, आपकी दिनचर्या का कैसा है मिलेट्स के साथ कनेक्शन?
1: देखिए मैं आपको बताऊं बात कि मेरे घर में पिछले 15 साल से चीनी का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, मेरे घर में पिछले 15 साल से चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं होता है। चाय बनाते हैं हम लोग, मिलेट टी बनाते हैं। आपको कभी मौका मिले, हमारा हिमाचल में तो ये चाय प्रसिद्ध हो गई, हमने काफी पहले से इसको शुरू किया था और कोविड के दौरान तो हमने बहुत सारे लोगों को इसको पिलाया, डॉक्टरों को पिलाया, हॉस्पिटल में जा करके हमने थर्मस में इसको डाल करके लोगों को बोला, डॉक्टरों को बोला ये पियो, ये बहुत सारा कैल्शियम इसके अंदर है, 344 मिलीग्राम कैल्शियम है प्रति 100 ग्राम, आप ये 2 कप पी लीजिए, आपको ब्रेकफास्ट करने का जरूरत नहीं है, ये आपके शरीर को पूरा एनर्जी देगा और आपका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा और ये आपके शरीर को जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसका बढ़ाएगा। मेरे घर में सुबह चाय बनती है तो ये सब जो हमारा अद्भुत अनाज है, हमारा जो फिंगर मिलेट बोलते हैं इसको, रागी बोलते हैं शायद आपके राजस्थान में, हमारे यहाँ मंडुआ बोलते हैं, कोदरा बोलते हैं, तो उसी का हम लोग बनाते हैं, ये सब चाय बनती है और बहुत घरों में आज सैकड़ों घरों में यही चाय बनना शुरू हो गई और इससे ये सारे लाभ हैं कि हम लोग जो दूसरा चाय जिससे बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकती है, गैस्ट्रिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें अच्छा नहीं लगता, ये सब अनाज है, श्री अन्न है, ये खाने से हमें लाभ होगा। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हम लोग कूट करके डाल देते हैं और बाद में बिना छाने उसको पी लेते हैं। और मेरी उम्र 60 साल है, मैं आज भी लगभग 14 से 16 घंटे काम करता हूँ, लगातार सफर में रहता हूँ और 2-4 घंटा 5 घंटा मेरा कहीं ना कहीं कोई लोगों के साथ वार्तालाप होता है तो मैं थकता नहीं हूँ। और मेरे घर में कोई बीमार नहीं होता, हम लोग कोई दवा का इस्तेमाल नहीं करते और मेरे खेतों में कोई केमिकल नहीं आता बाहर से, कोई भी जो मेरा जो इनपुट कॉस्ट है वो 0 है और जो भी है वो सब आउटपुट है। मेरे पास देसी अपना गाय है, उसी का गोबर और गोंतर से हम लोग सारा कुछ कीट नियंत्रक बनाते हैं, कीट नाशक नहीं, हमें किसी भी कीट को मारने का अधिकार नहीं है, सिर्फ अपने खेत में वो ना आए वहां से भगाने के लिए हमारे पास बहुत सारी औषधियां हैं जिनको हम लोग जो काऊ यूरिन है उसमें उबाल करके उसका स्प्रे करते हैं। मेरा अपना आम का बगीचा है, लीची है, अनार है, सब्जियां लगाते हैं उसमें सब ये हम लोग स्प्रे करते हैं और पौधों को बहुत ताकत मिलती है और ये बेनिफिट है सभी जो मुझे इससे मिले हैं। जी
0: आपने जितने सुंदर तरीके से चित्रण किया आपके बगीचे का, आपके अनाज का, मुझे तो मन कर रहा है कि मैं अभी पहुंच जाऊं और मुझे लगता है हमारे श्रोता साथियों को भी ऐसा मन करेगा कि कभी न कभी हिमाचल जाए और नेकराम जी के बगीचों का जरूर दौरा करे।
1: मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी
0: नेकराम जी, ये जो एक आपने भी बात कही कि इसमें लोगों का स्वास्थ्य भी बना रहता है आदि आदि, और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना भी करूंगा कि आपके परिवार में इसी प्रकार से निरोग बना रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे आपके परिवार में, लेकिन ये चीज हर घर तक कैसे पहुंचे, हर घर तक, हर युवा पीढ़ी तक, बच्चों तक कैसे पहुंचे जिनको आज पिज्जा बर्गर हॉट डॉग और ऐसे फास्ट फूड खाने की आदत पड़ गई हो, उनको श्री अन्न तक लाने के लिए क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए हमें?
1: देखिए एक तो ये चीज जो है ये सरकार का करने का काम है, ये हमारा बच्चों का पढ़ाई के सिलेबस में आना चाहिए पहली बात, हमारा स्कूलों में कॉलेजों के अंदर ये जो है उसमें प्रैक्टिकली रूप में इसका शिक्षा दी जानी चाहिए, उनमें क्यारियों में स्विंग होना चाहिए। मैं पिछले 15 सालों से इन सब कामों में लगा हूँ, मेरा कॉलेज में मैं जा करके वॉलंटियरली प्रिंसिपल से बात करके टीचर्स को, लेक्चरर को, बच्चों को ये सब बातें करता कि कैंसर क्यों हो रहा है, हमारा डायबिटीज का लेवल यहाँ भी बहुत बढ़ रहा है हिमाचल में, डायबिटीज क्यों हो रहा है, तो मैं बारीकी से जो पूरी तरह से ये साइंटिफिक है वो मैं

0: माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत सारा इस पर बात करते रहते हैं और उससे काफी बदलाव आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बदलाव नहीं आएगा, वो आएगा, बस थोड़ा सा एक और धक्का देने की आवश्यकता है।
1: जी, ये जो आपने कहा कि जरूर बदलाव आएगा, ये उम्मीद मैं भी रखता हूँ और मैं समझता हूँ जो हमारे श्रोता साथी हैं वो भी रखते होंगे। लेकिन श्रोता साथियों, आपसे यही उम्मीद रहेगी कि थोड़ा जानकारी हासिल करें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा पूछें और ये मिलेट्स का हमारे जीवन के साथ क्या ताल्लुक है इसको समझें। हो सकता है केवल आपके चुनाव मात्र से, आपके प्लेट की सजावट मात्र से आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे समाज में ला सकते हैं। निखिल जी, मुझे आपसे ये जानना था, ये जो आपको टाइटल मिला है नव अनाज के नायक, इसमें ये नव अनाज कौन कौन से हैं, क्या आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, इसमें देखो ये जो है पांच तो हमारे जो पॉजिटिव मिलेट हैं, है ना, जिसमें आपका ओडो मिलेट है और दूसरा रागी है, तीसरा आपका कंगनी है, चौथा आपका इसमें बार्नयार्ड मिलेट है, पांचवा आपका प्रोसो मिलेट है और इसके अलावा दूसरे मिलेट में आपका जवार है, अब बाजरा है, उसके साथ साथ इसमें जो एमरेंथस है जिसको रामदाना कहते हैं वो हो गया, और उसके साथ में एक दाल, कोयसा दाल जो उसमें सहफसल के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और कुछ एक इसमें तिलहन भी बीच में हम लगाए। तो इस तरह से ये 8, 9, 10 इस तरह के अनाज हैं, उसमें से कोई एक आध मिस हो सकता है, परंतु 9 अनाजा हमारे यहाँ पर क्या होता था कि 9 तरह के अनाज के ग्रंथियां भी बनाते थे और जब बच्चों का जन्मदिन होता था तो उस दिन भी उसका इस्तेमाल हुआ करता था, और ये हमारे हमारे कल्चर है, हमारे कल्चर के अंदर भी ये चीजें रही हैं।
1: इन 9 अनाजों में से आप जो इनको आप यूज भी करते हैं अपने डेली लाइफ में, आपका सबसे प्रिय अनाज कौन सा है? व्हाट इज योर फेवरेट?
0: सबसे प्रिय मेरा है बार्नयार्ड मिलेट, जिसको शिव चावल कहते हैं, मेरा सबसे फेवरेट है एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे मेरा फॉक्सटेल है।
1: ओके,
0: लेकिन पूरी तरह से एंटीटॉक्सिन है।
1: ओके, फॉक्सटेल जो है एंटीटॉक्सिन है,
0: जो शिव चावल है ये पूरी तरह से बहुत ही सुपाच्य है और ये थोड़ा सा खाने से आदमी रच जाता है और ये देर तक भूख नहीं लगती, इसका बहुत बड़ा ये लाभ है। और जो ये फॉक्सटेल मिलेट है, जिस वक्त चिकन पॉक्स जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं था तो गांव में हमारे जो वैद्य लोग हैं इसी का ही मीठा भात गुड़ डाल करके खिलाते थे और तब बोलते थे कि अच्छा अब ये सारा बीमारी बाहर हो गई। तो हम लोग भी बचपन में जब बीमार होते थे तो बोलते थे शरीर में छोटे छोटे दाने बाहर आ गए, तो बोला बस अब ये नहीं मरेगा, अब ये बच जाएगा, तो बिस्तर पे अभी छिड़कते थे उसको। तो हमारे यहाँ इसको बहुत ज्यादा और स्टोर करके रखते थे पहले, और आज भी कई घरों में 50 साल पुराना फॉक्सटेल मिलेट है और फिंगर मिलेट है और एमरेंथस है, ये अभी भी बचे हुए हैं घरों में।
1: ये जानकर के ताज्जुब होता है कि 50 साल से भी रखा हुआ जो अनाज है उसको यूज किया जा सकता है। भारत देश की महिमा का क्या वर्णन करे समझ ही नहीं आता। ये वही देश है जहाँ पर ये श्री अन्न बाहुलता में एक समय पे उगाया जाता था, धीरे धीरे वैश्वीकरण और पश्चिम की देखा देखी हमने हमारे श्री अन्न को एकदम अनदेखा कर दिया और आज हम वापस से उस राह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। निखिलम जी, आप बहुत जगहों पे जाते हैं, आपने कहा आप कई राज्यों का भ्रमण भी करते हैं, लोगों से मिलते भी रहते हैं, आप अलग अलग भारत देश के प्रांतों में जाते हैं, लेकिन क्या कोई एक ऐसी बात है अलग अलग प्रांतों में जो भारत को भारत बनाती है, जो आपको लगता है कि ये बात जो है ना वो सारे देश में एक ही जैसी है, वो कौन सी एक बात होगी?
0: आप बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं भी इस बात को समझता हूँ। मैंने बहुत जगह जा जाकर के एक चीज देखी कि हमारे यहाँ जो अपना जो हमारा संस्कृति रही है वो जो किसी तरह का बच्चों का बच्चे पैदा होना उसके बाद उनका कुछ करना क्या करना, गीत हैं अलग अलग तरह के और अलग अलग तरह का हमारा जो खाने का जो हमारा कल्चर रहा है और जो हमारा एग्रीकल्चर का जो सिस्टम रहा है वो आप चाहे आप कहीं भी चले, आप दक्षिण में चले जाओ तो दक्षिण में भी आपको रागी का जो है डोसा मिलेगा,

0: ज्यादा मानते थे, अब वो लोग भी बोलने लगे कि नहीं नहीं ये बहुत बढ़िया है, हम भी उगाएंगे, क्योंकि अब वो एक मोर लग गई तो इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ।
1: आपकी तपस्या ने न केवल लोगों के विचारधारा में बदलाव लाया लेकिन पूरे विश्व के स्तर पे भी आज इस श्री अन्न का नाम हो रहा है, उसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है, इसके लिए आपकी तपस्या बहुत मायने रखती है। लास्ट में मैं नेत्राम जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका अगर कोई एक ऐसा मैसेज है, कोई एक ऐसा संदेश है जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे, क्या होगा वो एक संदेश?
0: जी मेरा संदेश यही है कि अभी हम लोग जहाँ पर पहुँचे हैं है ना, वो जो है हम लोग सही नहीं है, खतरा है। हमने पानी गंदा कर दिया, हमने हवा गंदी कर दी, मौसम में बदलाव ला दिया, हमने नेचर को हमने डैमेज कर दिया पूरी तरह से, और खाने की तो बात छोड़ो, हमारी थाली में जो भोजन आ रहा है वो अच्छा नहीं है, मगर हमें इसकी जानकारी नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। मेरा एक ही सुझाव है जो मेरे भाई लोग हैं और जो खास करके जो हमारा आने वाली पीढ़ी है कि बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, हम लोग नेचर से जुड़े, हम लोग ये जो श्री अन्न है हमारे पौष्टिक अनाज है, हम इनको समझें, ये हमारे अनाज ही नहीं है, ये हमारी संस्कृति भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा खान पान अच्छा होगा तो हम शारीरिक तौर से स्वस्थ होंगे, मानसिक तौर से भी स्वस्थ होंगे। अगर हमारा खान पान सही नहीं होगा तो हम शारीरिक तौर से भी बीमार और मानसिक तौर से भी हम लोग बीमार होंगे, और हम देश की तरक्की में कोई योगदान नहीं दे सकते। इसलिए हमें वापिस आना पड़ेगा अपने जो परंपरागत हमारे जितने भी चीजें थी, जो हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके खोज खोज करके ये सारी बातें कही थी, वो आज भी सत्य है। इसलिए हमें उन सब रास्तों पे चलना चाहिए, अपना जो हमारा प्रकृति है हमें उसको संवारना चाहिए, और सबसे जरूरी है हमारा स्वास्थ्य, हम उसका ध्यान रखें। हमारा बड़ा महल ना हो, हम झोपड़ी में ही रहें, मगर हमारे पेट में जो अन्न जाए वो पूरी तरह से सजीव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और इस तरह सब लोग आगे मुड़े, और यही बहुत बड़ा हमारा शायद धर्म भी होना चाहिए कि हम सबको ये शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें, और अच्छा जो अनाज है उसका बीज हम लोग बांटें, अच्छा पर्यावरण होगा तो हम लोग सब अच्छे होंगे। ये मेरा संदेश।
1: नेत्राम जी आपने अपने संदेश में पूरे समाज को कवर कर लिया, हर एक के लिए कुछ न कुछ इसमें था। किसानों के लिए था कि आप श्री अन्न उगाएं, तो दूसरे नागरिकों के लिए था कि श्री अन्न को अपनाएं। जैसे मैंने अपने पर्सनल लाइफ में ये एक छोटा सा रेजोल्यूशन लिया है कि हफ्ते में कम से कम दो दिन मैं केवल श्री अन्न का उपभोग करूंगा, तो उससे मैंने देखा है कि मेरे पर्सनल लाइफ में भी चेंज आया है, और ऐसा लगता है कि मैं देश की प्रगति में थोड़ा सा हाथ बटा रहा हूँ। छोटा साथियों, बहुत बड़ा कुछ अगर नहीं कर सकते तो केवल अपने प्लेट में जो भोजन आ रहा है उसके चुनाव का बदलाव कीजिए, केवल श्री अन्न को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा हिस्सा दीजिए। 7 दिन 3 बार आप भोजन करते हैं, उसमें से कोई एक दिन डेडिकेट कर दीजिए श्री अन्न के लिए, तब मैं समझूंगा कि आपने इस एपिसोड से बहुत बड़ा फायदा लिया है, और देश के सेवा में भी ये आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। बाकी नेत्राम जी, जाते जाते आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे, जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको एक शब्द में या एक वाक्य में उसका जवाब देना होगा। तो आप तैयार हैं?
0: ठीक है,
1: बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं। श्री अन्न क्या है?
0: वो एक हमारा संस्कृति है।
1: वाह, श्री अन्न हमारी संस्कृति है, बहुत बढ़िया। सेवा क्या है?
0: सेवा हमारा धर्म है।
1: हिमाचल प्रदेश क्या है?
0: हिमाचल प्रदेश हमारा एक भौगोलिक इकाई के हिसाब से वो एक राज्य है, और जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश।
1: और भारत क्या है आपके लिए?
0: बहुत सारा हमारा जो राज्य है उनको मिलाकर के हमारा एक भारत है, और उसमें हम सब लोगों की शक्ल दिखती है।
1: तो आईना है आपके लिए भारत, जिसमें हर एक की शक्ल दिखती है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत सुंदर। शांति क्या है आपके लिए?
0: शांति एक वो चीज है जो जिसको पास आ जाए, मिल जाए, वो सबसे बड़ा धनवान है, उसको मानता है।

0: ये आपके लिए वैभव है, धन है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा चीज है,
0: कीमती है, बेश कीमती है,
1: कीमती है बिल्कुल।
0: प्रकृति क्या है?
1: प्रकृति एक परमात्मा का एक रचा हुआ ऐसा एक भौतिक एक ऐसी इकाई है जिसमें भगवान ऊर्जा देते हैं, उसमें हरियाली आती है, वहीं से हमारे लिए फ्यूल आता है और हमारी गाड़ी चलती है, वो प्रकृति।
0: तो इसका मतलब प्रकृति आपके लिए परमात्मा का दिया वो तोहफा है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आखिरी सवाल आपसे, नेक राम कौन है?
1: ये तो मेरा एक नाम है जिससे मुझे जाना जाता है, परंतु ये सब ईश्वर का ही एक, मैं छोटा सा कण हूँ, एक अंश हूँ, और मुझे वहीं जाके वापिस मिलना है। नाम तो सिर्फ मेरा इस मृत्यु लोक में एक मेरे पहचान के लिए नाम है मेरा, ऐसा मेरा मानना है।
0: नेकराम जी, आपने बहुत आध्यात्मिक रीति से अपने बारे में बताया कि आप एक अविनाशी सत्ता है जिसपे नाम तो केवल टेम्पररी लगाया गया है, इसे नाम पद पदवी इनके ऊपर आपका इतना ध्यान नहीं जितना आपका ध्यान आपकी सेवा पर है, आपके कर्तव्य पर है। ये मैसेज आपने जो हमारे सभी श्रोताओं को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेकराम जी। मैं समझता हूँ कि हमारे सभी श्रोता साथी आज बहुत खुद को धनवान समझ रहे होंगे कि नेकराम जी ने अपने कीमती समय में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला।
1: आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि ये सब जो मुझे समझ है, ये सब आप जैसे बड़ों का कहीं न कहीं आशीर्वाद है, और मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ, और ये सब ईश्वर की कृपा है। आप सब जो बड़े लोगों का एक सहयोग है, कहीं न कहीं आशीर्वाद है, तो ही मैं हूँ, अदरवाइज मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। श्रोता साथियों, अब तक आप सुन रहे थे एक बहुत सुंदर बातचीत नेकराम शर्मा जी, जो कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं, और उन्हें कहा जाता है नव अनाज के नायक। नव अनाज के नायक ने आज हम सभी को नायक बनने का एक मौका दिया है, छोटे छोटे बदलाव करके हमारे जीवन में, हमारे प्लेट में कौन सा भोजन आ रहा है उसका चुनाव करके हम भी देश के आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा भूमिका निभा सकते हैं। मिलेट्स को अपना करके, श्री अन्न को अपना करके हमारे जीवन को सुधार सकते हैं, सेहत को सुधार सकते हैं। नेकराम जी की ये उम्मीद, ये आशा और उनका ये परिश्रम, मैं समझता हूँ आपके दिल तक पहुँच रहा है। यशस्वी भारत कार्यक्रम का ये परिश्रम भी आपके दिल तक पहुँच रहा है, और अगर आपने अपने प्लेट में एक भी बदलाव किया आने वाले कुछ हफ्तों में, तो मैं समझूंगा आज का ये एपिसोड हमारा सफल रहेगा। यशस्वी भारत कार्यक्रम के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा साथियों, एक और एपिसोड में हम आपके बीच में आएंगे एक और हस्ती के साथ। रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, श्री अन्न के मजे लेते रहिएगा। मैं इजाजत देता हूँ आरजे शांतनु आपसे, दोबारा फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।

0: तुझसे चाहता हूँ कब से दिल में ये मेरे फंस गए।
1: एक कुड़ी फंस गई।
2: अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
0: अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है।

0: नहीं सांसों में मेरे रस गई। एक कुड़ी फंस गई।
1: ओफो, ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है, और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चीन का हांगझोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी पहुंच। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन,

0: एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: नमस्कार रेडियो श्रोतागण, प्रस्तुत है आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर एक खास घोषणा। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा और बनाइए अपने जीवन को खास। ज्ञान चिंतन केवल रेडियो पुनेरी आवाज पर, जहाँ हर आवाज है पुनेरी की पहचान। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का टॉपिक है शुभ भावना और शुभकामना। हमारे जीवन में विचारों और भावनाओं का बहुत महत्व होता है। हमारी सोच और भावनाएं न केवल हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण और संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डालती है। जब हम किसी के प्रति शुभ भावना रखते हैं और उसे शुभ भावनाएं देते हैं, तो यह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो जीवन को खुशहाल और आनंदमयी बनाता है। शुभ भावना का अर्थ होता है दूसरों के प्रति अच्छा सोचना और उनके प्रति मंगल कामना करना। जब हम किसी के प्रति स्नेह, आदर, करुणा और सहयोग की भावना रखते हैं, तो यह शुभ भावना कहलाती है। यह भावना हमें न केवल मानसिक रूप से शुद्ध और शांत बनाती है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मधुर बनाती है। शुभ भावनाएं हमें नकारात्मकता से दूर रखती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। शुभ भावना का विस्तार केवल हमारे परिवार और मित्रों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे समाज और विश्व के प्रति हो सकती है। यदि हम हर व्यक्ति के प्रति शुभ भावनाएं रखें, तो समाज में प्रेम, भाईचारा और शांति का वातावरण बनेगा। शुभ भावना का अर्थ होता है किसी के सुख, समृद्धि, सफलता और अच्छे भविष्य की कामना करना। जब हम अपने प्रियजनों, मित्रों या किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छे भविष्य की प्रार्थना करते हैं, तो इसे शुभकामना कहते हैं। भारतीय संस्कृति में शुभकामनाओं का बहुत महत्व है। त्योहारों, व्यवहार, जन्मदिवस और अन्य विशेष अवसरों पर हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, जिससे प्रेम और स्नेह का संचार होता है। शुभकामनाएं केवल औपचारिकता नहीं होती, बल्कि यह हृदय से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब हम सच्चे मन से किसी के लिए शुभकामना करते हैं, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति तक पहुंचती है। शुभ भावना और शुभकामना को जीवन में अपनाने के अनेक तरीके हैं। सभी के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखें, दूसरों की सफलता और खुशी में सच्चे मन से प्रसन्न हों, किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा और द्वेष की भावना न रखें, नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करें जिससे मन शुद्ध और सकारात्मक बने। छोटे छोटे अवसरों पर अपने प्रियजनों और मित्रों को शुभकामनाएं दें, अपने आसपास के लोगों की भलाई और कल्याण की कामना करें। शुभ भावना और शुभकामना जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाती है। यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों में भी प्रकट होनी चाहिए। यदि हम सच्चे मन से सभी के लिए शुभकामनाएं रखें और शुभ भावनाएं रखें, तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा, बल्कि संपूर्ण समाज भी प्रेम, शांति और सद्भाव से भर जाएगा। ये था मेरा आज का चिंतन। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें।
2: हम आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। साथियों बने रहें और अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। रेडियो पुनेरी आवाज पर खुश रहो, खुशियां बांटो।
4: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
5: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है, उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरे जो 6 घंटे के 8

0: की नींद थी, मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं, 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वाले तू गुस्सा मत कर, हमें भी जगह दे दे, खुदा से ज्यादा डर। खिसक जरा प्यारे, सरक जरा प्यारे, खिसक जरा प्यारे, सरक जरा प्यारे, तेरा

खुशी से कट जाए हमारा भी सफर, हम पर भी जरा कर दो इनायत की नजर। खुशी से कट जाए हमारा भी सफर, खिसक जरा प्यारे सरक जरा प्यारे, खिसक जरा प्यारे सरक जरा प्यारे, जो किसी का न

0: Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani hamare saath hai. Welcome, sister.
1: Om Shanti.
0: Welcome to Being Shakti.
1: Thank you so much.
0: Sister, last episode mein aapse baat ho rahi thi ki about Shakti and weakness. To main soch raha tha ki ye apne aap ko weak bolna thoda confusion ye ho raha hai ki you feel then you start feeling more weaker. Aur apne aap ko kamzor lagte ki kya main itna weak hoon ki koi kuch bol de to mujhe kuch ho jayega. To main samajh raha tha natural hai. Kisne bola aur main chid gaya. So what?
1: Isne bola to main chid gaya. So what nahi. So a lot of things.
0: No, chhota bachcha bhi chidta na jo khilana mangta nahi do to chid jata hai. Ye karo to from childhood aise by nature hai na. Usko to kisi ne nahi sikhaya.
1: By nature wo atma ne pichle costume se carry forward kiya na. Isiliye bacche bhi to alag alag tarah ke hote hain. Kuch bachchon ke liye kehte hai bachcha bahut shant hai. Kuch bachchon ke liye kehte hai bachcha bahut jaldi jaldi rota hai. Kuch bachchon ke liye kehte hai bachcha zyada gussa karta hai. Kisi bachche ke liye kehte hai bachcha bahut hasmukh hai. Bachche bhi ek jaise thodi hote hain. Agar by birth hota hai, which we are saying ke by birth कैसे आया तो बाय बर्थ सारे आइडेंटिकल थोड़ी होते हैं. बाय बर्थ सारे अलग अलग होते हैं. क्यों हर बच्चा अलग अलग होता है? क्योंकि हर बच्चा क्लीन स्लेट नहीं स्टार्ट हो रहा. हमने सोचा बच्चा मीन्स स्टार्टिंग. इट्स नॉट अ स्टार्टिंग, इट्स ओनली अ न्यू बिगिनिंग आफ्टर अ कैरी फॉरवर्ड.
0: जैसे हम कैमरा में कट करते हैं शॉर्ट, बीच में अगर कोई डिस्टर्ब हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं.
1: जैसे हम 31 मार्च को कहते हैं ये साल पूरा हुआ, नया खाता शुरू हुआ, न्यू बिजनेस ईयर. लेकिन न्यू बिजनेस ईयर डजंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो. न्यू बिजनेस ईयर स्टार्ट फ्रॉम द कैरी फॉरवर्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर.
0: अगर न्यू बिजनेस जीरो से शुरू हो तो मेरी पिछले 20 साल की कमाई और मेहनत का क्या होगा?
1: वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरी पिछले 20 साल की कमाई और मेहनत का क्या होगा? अब कमाई हमारी दो तरह की हो सकती है. या तो हमारा बहुत प्रॉफिट था पिछले 20 सालों में, या लॉस था. इट डजंट मैटर. स्टार्ट तो उधर से ही होना पड़ेगा. इट कैन नॉट बी कि हर 31 मार्च को हम 0-0 पे आ जाएं और स्टार्ट करें. सो इट कैन नॉट बी कि हर बच्चा 0-0 से स्टार्ट करे अपनी बैलेंस शीट को, एकदम फ्रेश स्टार्ट करे. हर बच्चा अपने पिछले 20 साल नहीं लेकिन अपने पिछले सारे जन्मों का कैरी फॉरवर्ड संस्कार लेकर इस जन्म को स्टार्ट करता है. और इसीलिए बच्चे के अंदर भी हमें ये सारे संस्कार दिखाई देंगे, क्योंकि 2 साल पहले वो बच्चा एक 80 साल के शरीर में था तो वो संस्कार तो दिखाई देंगे. अब आपने कहा समवन सेड समथिंग, आई गॉट डिस्टर्ब्ड, सो व्हाट? बट देन वी जस्ट सॉ लास्ट टाइम सो मेनी थिंग्स. आई गॉट डिस्टर्ब्ड, खुशी गई, शांति गई, मन उथल पुथल में आया, एक घंटा उसका प्रभाव रहा, रिश्ता अफेक्ट हुआ, शब्द भी कुछ मुख से गलत निकल गए, राइट? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने देखा कि शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ा.
0: और रात को खाना खाते समय फिर शक्ल देख ली तो खाना रोक दिया.
1: खाना भी रोक दिया और रात को नींद भी नहीं अच्छी आई. तो सो व्हाट जो आपने कहा ना, फिल इन द ब्लैंक. सो मेनी थिंग्स. सो वी कैन नॉट से सो व्हाट. वी विल इन फैक्ट हैव टू से सो मच. इतना कुछ हो गया उस एक घंटे में डिस्टर्ब होने की वजह से. एंड नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक घंटे में जब हम थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं तो वो कोई उस दिन की लास्ट सिचुएशन भी तो नहीं थी. उस एक घंटे में डिस्टर्ब होने से हमारी मन की शक्ति क्या हुई?
0: डिप्लीट होती गई.
1: थोड़ी सी डिप्लीट होती गई. आधे एक घंटे

0: के अंदर कोई और बात आएगी, कोई और बात भी तो आएगी, अब कोई और कुछ कहेगा, कुछ और हमारे अनुसार नहीं होगा, तो क्योंकि वो मन पहले से ही फ्लक्चुएटिंग स्थिति में,
1: तो जल्दी आग में घी का एक चम्मच और डाल दिया,
0: और डाला तो आग तो बहुत ज्यादा अब उड़ गई,
1: बढ़ेगी।
0: तो अब सो वॉट का इम्पैक्ट और देखें। अब ये सिर्फ पूरे दिन की एक सिचुएशन नहीं आती ना, अगर एक सिचुएशन आए पूरे दिन के अंदर हम डिस्टर्ब हो, फिर एक घंटे में दो घंटे में हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन, सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन, पीपल आफ्टर पीपल आफ्टर पीपल, हर एक हमारे अनुसार नहीं होगा। दिस इज डीप डीप डीप रियलाइजेशन एंड डीप डीप डीप प्रोग्रामिंग। लोग सिचुएशन, लोगों के सेंटेंसेस, लोगों के बिहेवियर मेरे अनुसार नहीं होंगे, अगर हर बात को,
1: बट एक चीज मेरे अनुसार एक ही चीज कभी और वो मेरे अनुसार हो सकती है, और कभी किसी टाइम पे ये मेरे अनुसार वही चीज नहीं हो, और वही सेम चीज कोई मेरा अपना बोले और कोई दूसरा बोले, या एक्स वाई जेड में मेरी चॉइस का पर्सन बोले मुझे अच्छा लगता है, वही चीज कोई दूसरा बोले बुरा लगता है, फिर वो चीज के अनुसार की तो बात हुई नहीं ना,
0: राइट?
1: फिर मेरी चॉइस आ गई है,
0: चॉइस आ गई ना, तो चॉइस तो है।
1: मैं कई बार मेरे घर पे भी बोलते हैं, सांप डांटेंगे तो ठीक है, आप मुझे मत डांटो। अब एक मेरे एक स्टाफ की बात कर,
0: राइट?
1: मैं डांटू ही इज एक्सेप्टेबल है, वो बोले तुम नहीं।
0: तो उस आत्मा ने अपनी प्रोग्रामिंग कर ली है, ठीक है ना, उस आत्मा ने प्रोग्रामिंग कर ली है कि ये डांटेंगे तो इट्स फाइन विद मी, ये डांटेंगे तो आई विल गेट डिस्टर्ब्ड। हो गई प्रोग्रामिंग, कितनी क्लियर है, इसी से क्लियर हो जाता है कि सब कुछ मेरी चॉइस है और मेरे कंट्रोल में है। ये डांटेंगे इट्स ओके विद मी, ये डांटेंगे तो आई विल गेट डिस्टर्ब।
1: चीज वही, डांटना वही, शब्द वही,
0: प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग है।
1: चीज हैज नथिंग टू डू,
0: इट हैज नेवर एनीथिंग टू डू।
1: यू मीन टू से, हाँ मैं खुद ही बोल आंसर दे दिया इसका,
0: इट हैज नथिंग टू डू। लेकिन जितनी बार हम डिस्टर्ब हुए, हमने उस चीज को अपने ऊपर हावी होने दिया। लेट से मैं कहूँ आप डांटेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कुछ बोलेंगे तो मुझे बुरा लगता है, तो मैंने अपने अंदर प्रोग्रामिंग क्या कर ली कि आप कुछ बोलेंगे माई माइंड विल एक्सेप्ट एंड आई एम फाइन विद इट, लेकिन ये बोलेंगे तो आई एम टेलिंग माई सेल्फ यू आर अलाउड टू गेट डिस्टर्ब्ड। लेकिन नाउ आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, ये बोलेंगे फिर कोई और बोलेगा, फिर कुछ और बोलेगा, कोई और कुछ करेगा, हर बार डिस्टर्ब होते होते होते मेरी अपनी शक्ति, इट्स लाइक सेइंग गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती, तो ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही, उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
1: सिस्टर आपने जो कहा था अभी, ये हमारी वीकनेस है, हमारी शक्ति की कमी है कि दूसरे की बात को का मुझ पर इतना असर होता है, तो यहाँ पर भी ये भी तो थॉट एक डिप्रेसिंग ही है ना, कि मैं इतना कमजोर हूँ, मैं कब ठीक हो जाऊंगा, अभी कल उसने ये बोला फिर मैंने ऐसा कर दिया, परसों उसने बोला फिर मैंने ऐसा कर दिया, मैं कब सुधरूंगा, आई एम दूसरे आदमी देखो शक्तिवान है, मैं शक्ति नहीं हूँ, तो ये भी तो एंगल उधर ही लेके जा रहा है ना।
0: इस थॉट को चेंज करते हैं कि आज कोई कुछ बोलेगा मैं हूं नहीं, आज मुझे क्या करना है, आज कोई कुछ बोलेगा आई विल फेस इट इन अनदर वे।
1: अगर मेरा नेचर ऐसा बन चुका है तो कहाँ फेस करूं?
0: नेचर बना कैसे?
1: हो गई बात, चलो नेचर जैसे आदत हो गई,
0: आदत बनी कैसे?

0: आदत सिगरेट की हुई कैसे?
1: पीते पीते पीते
0: पीते पीते पीते पीते सिंपल। फिर छूटती है किसी की या नहीं छूटती?
1: फिर मेहनत
0: मेहनत नेवर माइंड। लेकिन आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
1: कई लोगों को आदत हो जाती है सिस्टर, वो चाय लाए स्टाफ पूछते कहाँ रखो, बोले मेरे सर पे रख दे। तो मैंने अगर पूछो भी तो टेबल दिख रही है ना उसको।
0: हाँ।
1: तो क्या करूं? तो बोलते बोलते बोलते फिर एक ताने मारने की और ये एक हैबिट हो ही जाती है। लेकिन
0: बट इट डजंट
1: अवेयर, इट इज नॉट इजी। जो आप बोल रहे हैं कि आप अभी आप बोल रहे थे कि जन्मों जन्मों से बच्चा लेके आ रहा है।
0: हाँ।
1: एक चीज।
0: हाँ।
1: तो
0: अच्छा सिंपल ये वाली लेते हैं कि कोई चाय लेकर आया और आपने कहा, उसने
1: पूछा हिसाब कहाँ रखूं।
0: हाँ।
1: तो बोले सामने टेबल चाय रखना भाई।
0: हाँ। तो वो नहीं बोला ना, क्या बोला उसकी जगह?
1: मेरे सर पे रख।
0: मेरे सर पे रख। लेट्स से ये करते करते ये आदत बन चुकी है। ठीक है। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर लाइन, लेकिन कभी भी कोई भी ऐसी कोई बात पूछेगा या करेगा जो आपको लगता है कि इतनी ऑब्वियस आंसर है फिर ये पूछता है, तो आप उसको सीधा आंसर नहीं देते। ठीक है। आपने ये 13 आंसर दिया ना, अब अगर आज आप अपने आप को कहते हैं कि दिस इज नॉट अ रॉयल वे ऑफ आंसरिंग,
1: आई लाइक दैट,
0: नॉट अ रॉयल वे ऑफ आंसरिंग,
1: ये अच्छा है,
0: है ना? सी खुद ही हमें रियलाइज,
1: हमको अच्छा लगा,
0: है ना? आपको
1: रॉयल वे, आई वुड लव टू बी।
0: तो अब आप ये बताइए कि रॉयल वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन क्या है? किसी ने आके पूछा ये चाय कहाँ रखूं,
1: आप यहाँ रख दीजिए,
0: सिंपल है। डू यू फील दैट्स मोर कम्फर्टेबल?
1: आई जस्ट acted out and I felt nice.
0: You felt nice, but you feel this is a better response?
1: 100%.
0: Convinced?
1: 100%.
0: लेकिन उसकी बात फिर भी उतनी ही कहें बचकानी थी या सिली थी कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर भी what is the way, the best way to respond?
1: Maybe point of view, अगर आपसे बात करते करते एक thought आया कि उसके तरफ से वो भी right है।
0: हाँ।
1: कहाँ रखो, यहाँ वहाँ हाथ में दो।
0: अब ये तो ये भी नहीं पता कि अगर वो बिना पूछे वहाँ रख देता
1: पूछ तो लेता,
0: दूसरे का नजरिया तो अभी सोचा ही नहीं,
1: बच्चे खेल रहे गर्म हाथ डाल देंगे ये करेंगे, इतना भी नहीं सोचा है, वो भी नहीं किया,
0: पूछना चाहिए था रखने से पहले।
1: हाँ।
0: वो तो एक अलग एस्पेक्ट है, वो तो दूसरे का नजर
1: रोज चलता है मेरे घर में, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते तो चाय कोई टेबल पर रख दे, मतलब देखो क्या कर दिया तुमने यार, बच्चा हाथ डाल देगा गरम गरम उबलती चाय, यहाँ रखने की जगह है।
0: अब इसको देखते हैं, एक बार सामने वाले ने बिना पूछे रख दिया, ठीक है, तो आपने उसको डांटा और कहा पूछ के रखना चाहिए था। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम कोई नहीं भी होगा रूम में, बच्चे भी नहीं होंगे, तो उसने तो क्या करना है?
1: पूछना है,
0: उसने तो पूछना है, तो इज ही राइट?
1: अपने तरफ से तो राइट है, बोला
0: वेदर ही इज राइट और ही इज नॉट राइट। अब हमने उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, अब हम क्या चेक कर रहे हैं, विच इज माय मोस्ट कंफर्टेबल वे टू रिस्पॉन्ड, मेरा सही जवाब इस समय क्या होना चाहिए। तो आपने अभी कहा कि यहाँ रख दो, अब आदत पड़ गई है कहने की सिर पे रख दो, इधर नीचे रख दो, ये टेढ़े आंसर देने की आदत पड़ गई है। आज हमने डिसाइड किया अब वो आएगा पूछेगा, I will respond in a royal way. हो जाएगा आज?
1: आज जब तक अवेयर रहूंगा
0: हो जाएगा, नहीं होगा?
1: जस्ट
0: इतना सिंपल, अभी इसमें तो इसमें तो कोई संस्कार की बात नहीं, नेचर की बात नहीं,
1: as long as I'm aware, होगा।
0: आज डिसाइड किया है कि आज वो आएगा ही, इट्स अ रिपीटेड सिचुएशन। कुछ सिचुएशन जीवन में बड़ी रेपिटेटिव होती है, रोज आती है, ऑलमोस्ट रोज आती है, एंड हम ऑलमोस्ट हर रोज उसी आउट ऑफ कंट्रोल वे से बिहेव करते हैं। जब हमने एक ऐसा जवाब दिया जो हमारे लिए सही नहीं था, तो विच मीन्स मेरे मन और मुख ने वो नहीं किया जो मुझे सही लगता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उस बात पे तो गुस्सा आ जाता है कि लोगों ने वो नहीं किया जो सही है, लेकिन व्हाट अबाउट जब मेरी ही ये इंद्रियां, मेरी इंद्रियां है ना ये सारी, माय

0: ऑर्गन्स, व्हाट अबाउट जब ये वो चीजें नहीं कर रही जो मुझे सही लगती है. तो बीइंग शक्ति मतलब आई एम गोइंग टू टेक बैक कंट्रोल ओवर ऑल दिस जो आज अपने आप चलती है. अपने आप
1: ये थॉट आई बात सुन के कि ये चीज भी तो वीकनेस हुई जो बार बार मैंने जैसे सिगरेट की आदत पड़ी, ये भी बार बार बोलते ताना मारने की, छिड़के बात करने की एक हैबिट हो जाती है.
0: अगर हमें लगता है कि ये सही नहीं है, कंफर्टेबल नहीं
1: तो लग रहा है ना, रॉयल तो नहीं लग रहा,
0: रॉयल नहीं है ना, रॉयल नहीं है, हेल्दी नहीं है, इट्स नॉट हेल्दी ऑल्सो,
1: इट्स ऑल्सो हर्टिंग द अदर चैप ना,
0: इट्स हर्टिंग द अदर पर्सन. वो तो है ही, लेकिन हर्टिंग उससे ज्यादा,
1: मैं कभी सोचा भी नहीं था
0: उससे ज्यादा हर्ट किसका हो रहा है.
1: अभी डिस्कशन में सिर्फ मैं अपना ही सोच रहा हूँ, वॉट अबाउट दैट पर्सन.
0: उस आत्मा को तो तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि बार बार हो रहा ना, थोड़े टाइम के बाद उस आत्मा को कोई असर नहीं होगा इस बात का.
1: हंसेगा वो बाहर जाके.
0: सी इफ आई सी यू नॉट बिहेविंग इन अ रॉयल वे, आफ्टर सम टाइम आई विल नॉट गेट अफेक्टेड, बट यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट इफेक्ट.
1: आई सी आई ट्राइड दिस थिंग, इवन आर्टिफिशियली अच्छा लगता है रॉयल
0: आर्टिफिशियल
1: बिगिनिंग में,
0: यस,
1: छोटा छोटा ऐसे हाँ यहाँ रख दो, हालांकि कंट्रोल करके, लेकिन फिर उसकी आदत पड़ सकती है बात. रॉयल में रहने की हमेशा जैसे इसकी पड़ी उसकी भी पड़ जाएगी.
0: जैसे ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है, अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है. अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना. अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा. होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है.
1: सही,
0: राइट. अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है. ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है. अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं. अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं. इट्स एज सिंपल एज दैट.
1: दिस इज शक्ति वी हैव,
0: दिस इज द पावर वी हैव. अगर हम नहीं चूज करें, हम उसी पैटर्न से जन्म जन्म वर्क कर सकते हैं, लेकिन आज चूज करें तो आज से ही उस ग्रूव में न जाने के बजाय हम कॉन्शियसली शुरू में थोड़ी सी मेहनत कि आज उस तरह से नहीं, एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे. अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये होगी, थोड़े दिन करने से एक नया पैटर्न बन जाएगा, एक नया ग्रूव बन जाएगा, और थोड़े दिन के बाद हमें कोई अटेंशन नहीं रखनी पड़ेगी, हमें कोई ध्यान नहीं रखना पड़ेगा. अब कोई भी बात आए, अब कोई भी परिस्थिति आए,
1: राजा के बेटे को अटेंशन रखना थोड़ा ही पड़ता है कि आई एम रॉयल,
0: दैट्स इट.
1: आप खुद बन जाओगे, तो
0: खुद बन जाओगे. लेकिन राजा का बेटा अगर भूल जाए कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए. आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया. मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो अवेयरनेस ही नहीं है, लेकिन कर्म इंद्रियों के भी गुलाम. ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन बुद्धि संस्कार, लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स.
1: बापरे,
0: इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी

0: भी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी
1: कंट्रोल में रहे,
0: मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि 5 गाड़ियां एक सड़क पर है, 5ों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है।
1: बाप रे,
0: ठीक है। एंड 5ों चाहते हैं कि जो बाकी 4 है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
1: क्योटिक सिचुएशन है, क्योस है।
0: तो यही वो 5 लोग हैं जो एक फैमिली में एक घर में रहते हैं। सी, आज मैं एक आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस 5 पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, 5 आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर?
1: ब्यूटिफुल।
0: हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना।
1: और कोई आ भी रहा है तो खुद को स्लो डाउन कर ले,
0: सिंपल,
1: वो निकल गया आगे।
0: सो द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर 5ों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज 4 की भी नहीं है लेकिन एक भी अपने करना शुरू करते हैं, तो वो एक भी कितने सारे एक्सीडेंट बचा देगा सारा दिन के अंदर?
1: बाकी 4 के साथ तो बचेंगे उसके,
0: तुम जब बात
1: तो 4ों के बच गए,
0: 4ों के बच गए। सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर 5ों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चले, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियालिटी ऑफ आर लाइफ टूडे। जितना मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, लेकिन मैं चाहती तो नहीं एक्सीडेंट हो, ठीक है? यहां से मैं आ रही हूं, वहां से आप आ रहे हैं, ठीक है? देखो, अगेन विजुअलाइज ऑन द रोड, सपोज मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए, ठीक है? लेकिन आई डोंट वांट टू मीट विद एन एक्सीडेंट, तो व्हाट डू आई ट्राई एंड डू ऑन द रोड? आई टेल अदर पीपल,
1: हट जाओ,
0: मींस यू मूव आउट ऑफ माई वे, आप मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मेरे अंदर पावर नहीं है ब्रेक लगाने की या अपना रास्ता चेंज करने की, ठीक है?
1: वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड।
0: मेरे अंदर पावर नहीं है तो मैं इशारा करती रहती हूँ कि तुम लोग हट जाओ रास्ते से। अगर आपने कहना मान लिया तो एक्सीडेंट बचेगा, लेकिन अगर आपने नहीं माना और आपने वहां से मुड़ के कहा मेरा भी ब्रेक नहीं चल रहा, या आपने मुड़ के कहा मैं क्यों हटू, तुम हटो, तो फिर तो एक्सीडेंट होना ही है। आज क्योंकि सारा दिन में मेरा मन बुद्धि कर्म इंद्रिया मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हम हर सारे रास्ते में क्या करने की कोशिश,
1: तो कहीं भी जा सकते हैं। तुम गाड़ी चलाने से पहले ब्रेक टेस्ट नहीं किया था क्या, देखा नहीं था क्या? हाँ। ब्रेक नहीं थी तो आए क्यों सड़क पे?
0: उतनी देर में तो हो गया ना एक्सीडेंट। नाउ अगेन गो बैक टू दैट लेडी यस्टरडे, वो एक अलग गाड़ी, उन्होंने आकर कुछ कहा, ठीक है? यहां से आप हैं अपनी गाड़ी में, मतलब ये माई माउथ, माई माइंड, एवरीथिंग, माई बिहेवियर, ये है मेरी गाड़ी। अगर कल आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में होती तो फिर वो कुछ कहते भी तो कह के निकल जाते, आपका एक्सीडेंट बच जाता।
1: यू मीन टू से कोई मुझे खाते खाते रोक दे और बोले जानना पहचान, बोले आपको परहेज करनी चाहिए, तो आई शुड कीप क्वाइट, दैट मींस मेरा आउट ऑफ कंट्रोल था।
0: आपका
1: जवाब नहीं दूं?
0: जवाब दे सकते हैं, लेकिन जवाब ऑफ माई चॉइस, जवाब विच इज कम्फर्टेबल फॉर मी, जवाब विच इज हेल्दी एंड हैप्पी फॉर मी।
1: बट एट दैट टाइम आई थॉट कि वो मेरे लिए कम्फर्टेबल था, लेटर ऑन आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल माई सेल्फ।
0: उस क्षण भी कम्फर्टेबल नहीं थे, क्योंकि बात आते ही फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ?
1: चिड़ गया।
0: चिड़ गया मतलब गाड़ी गई, ब्रेक अगर लगनी थी उस टाइम

0: तो उस समय क्या हुआ, बात आई और माइंड बहुत फास्ट स्पीड पर चला। कितनी फास्ट स्पीड पर माइंड चला, ऐसे क्यों बोला, बोलना चाहिए था, कोई तरीका है, कोई रिश्तेदार है मेरी जो बोल दिया, मैं कोई बीमार हूं ऐसे बोल दिया। लुक एट द स्पीड, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स ऐसे चलेंगे। ब्रेक लगा, बोल दिया, उनका नजरिया, उनको सही लगा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे परहेज नहीं करनी, और करनी भी होती तो मेरा मन नहीं है अभी परहेज करने का, आई फील लाइक इटिंग, फुल स्टॉप,
1: फिनिश।
0: हु आर यू इज अगेन कौन सी थॉट रेडिएट की फिर हमें दूसरे, जैसे आपने कहा ना वो कितना हर्ट हुआ होगा स्टाफ, ऐसे कौन सा तीर हमने सामने वाले को भी मारा, वो तीर भी प्यार वाला होना चाहिए कि ठीक है आपने बोला, एक आपने अपने कंसर्न से बोला, या दूसरा हो सकता है इट्स ओके, आपको जो सही लगा आपने कहा, फुल स्टॉप, ब्रेक। कल वो ब्रेक अगर लगती तो कम से कम 2 घंटे की शक्ति बच जाती, 2 आवर्स ऑफ थॉट पावर एंड 2 आवर्स ऑफ द इफेक्ट दैट थॉट पावर हैज ऑन माय बॉडी, ये सारा बच जाता अगर उस क्षण ब्रेक लग जाती। तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे वो ब्रेक लगाने की पावर, गाड़ी को अपने कंट्रोल में चलाने की पावर, उस चीज को वापस आई हैव टू गेट बैक इन टू कंट्रोल। अब जैसे ही आज जो हमने डिसाइड किया कि कोई आके कुछ कहेगा भी, तो हमारा जवाब देने का तरीका कैसा होगा, आज
1: बीइंग शक्ति एंड रॉयल
0: रॉयल। एंड आज जब हम वो करेंगे तो धीरे धीरे हम उस थॉट को उस ग्रूव में नहीं जाने देंगे, हम धीरे धीरे एक नया ग्रूव पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। हो जाएगा ना आज
1: 100%,
0: वेरी गुड।
1: इस पिक्चर लेस ऑफ मेडिटेशन,
0: सिट बैक एंड अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया, और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपनी किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग। ओम शांति।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।
2: When we allow an external stimulus to affect our state of being, our emotional health, physical health, relationships, and quality of sleep get affected. Our vibrations of anxiety radiate to all who are around us and influence them too. When we get disturbed in one particular situation, our emotional strength gets depleted. Now, we are more vulnerable to get disturbed when the next stimulus comes. This is why anxiety, stress, irritability escalates during the day. And then, during our journey of life, our mind should be convinced that situations, other people's sanskars, their behaviors will not be according to what is comfortable for us. We cannot afford to get disturbed each time. It is our energy loss. One particular way of responding to a situation repeatedly creates a groove in our brain.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, When they are under stress, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: हमारा भोजन हमारा व्यक्तित्व। लेखिका सुधापुरी। पात्र परिचय: उन्नति, दृष्टि, यश, वेदांत, आदित्य प्रकाश, आदित्य, सैंडी, आकाश।
2: मजा आ गया, ये तरबूज तो बहुत ही मीठा है।
3: मेरे खरबूजे का तो कोई मुकाबला ही नहीं।
1: मैं क्या बात करते हो, फलों के राजा के सामने किसी और फल की तारीफ। लाहौल बिलाकवत।
4: वो क्या होता है?
1: मुझे भी पता नहीं, पर ऐसा ही कहते हैं ना जब कोई कुछ गलत करता है।
4: ये फलाहारी पिकनिक मुझे बहुत अच्छी लगती है।
2: हाँ, ये मेरी ही दादाजी का आइडिया था।
3: हाँ, मैं तो उन्हें बाबूजी कहकर पुकारता हूँ।
5: और मैं बाबा।
2: वो मेरे सब दोस्तों को बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं बचपन में बहुत सारे दोस्त बनाने चाहिए, बचपन की दोस्ती हमेशा प्यारी लगती है।
6: मेरे पापा भी यही कहते हैं।
3: मैं भी इस बात में विश्वास रखता हूँ कि हर एक दोस्त जरूरी होता है।
1: जैसे किसी के साथ हम कोई खास खेल खेल सकते हैं,
4: कोई पढ़ाई में मदद करता है चाहे वो खेलने में उतनी दिलचस्पी नहीं लेता हो,
2: और कोई हमारा मजेदार चटपटा खाना खाने में हमारे साथ होता हो।
6: जैसे इस समय हम सभी मिलकर गर्मियों के मजेदार फल खा रहे हैं।
5: ये फलों का आइडिया अच्छा है, कितने ही पेट भरे क्यों न खा लो, कभी सुस्ती ही नहीं आती,
6: बल्कि इन्हें खाकर हम ताज़ा ही महसूस करते हैं।
7: तुम्हें पता भी है फल हमारे शरीर की किस प्रकार मदद करते हैं?
2: मजे करने में।
7: वो तो है ही, पर सबसे जरूरी बात ये है कि ये हमारी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं।
6: तो रोटी, पूरी, आलू, दाल, ये सब?
3: हाँ, और दूध।
7: वो सब भी जरूरी है, पर अलग अलग भोजन हमारे शरीर को अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं।
8: अभी हम पर पहुँचे ही हैं।
7: हाँ, तुम सब इन अलग अलग फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे कुछ बॉडी बिल्डिंग के लिए होते हैं, कुछ एनर्जी देने के लिए, तो कुछ बीमारियों से रक्षा के लिए।
1: सब भोजनों में अलग अलग पौष्टिक तत्व होते हैं ना?
7: जैसे दालों में प्रोटीन जो बढ़ने में और शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करता है, अनाज में कार्बोहाइड्रेट जो काम करने की शक्ति देता है, मक्खन और घी में वसा ये भी हमें शक्ति देता है, और कई विटामिनों को शरीर में ग्रहण करने की भी क्षमता है। फल और सब्जियों में विटामिन और मिनरल होते हैं।

0: और दीदी, संपूर्ण आहार पता है किसे कहते हैं?
1: मुझे पता है, दूध को।
2: और संतुलित आहार?
3: ऐसा भोजन जिसमें सब पौष्टिक तत्व सही मात्रा में हो।
4: पर ऐसा तो किसी व्यक्ति की उम्र, अवस्था, लिंग, वो क्या कार्य करता है, इस सब पर भी तो निर्भर होगा ना कि उसके लिए हम किसे संतुलित आहार कहेंगे।
5: हाँ, जैसे बढ़ते बच्चों के लिए खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए।
6: और किसी मजदूर को शक्ति देने वाले भोजन की जरूरत होगी।
5: बिल्कुल ठीक,
7: पर मुख्य बात तो यह है ना कि हमें जीने और बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत है।
0: क्यों, बीमारियों से रक्षा भी तो।
1: और ताकतवर बनने की भी।
0: कहते हैं सबसे पौष्टिक भोजन वह होता है जो सबसे कम पका हो।
5: हाँ, उसके पौष्टिक तत्व आग से और पकने से नष्ट नहीं होते।
3: पर कच्चा भोजन तो बस फली हुए ना, जैसे अमरूद, केला, खरबूजा,
4: अनार, सीताफल, खुरमानी, आलू बुखारा, नाशपाती।
5: केला भूल गए, छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी।
6: मुझे तो जामुन बहुत अच्छा लगता है।
7: मेरे दादाजी इन्हें बहुत खुश होकर खाते हैं।
5: ये मधुमेह की बीमारी वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है।
7: उन्हें तो पपीता भी बहुत पसंद है।
0: मुझे तो बेर बहुत पसंद है।
1: मुझे शहतूत।
2: मुझे फालसे।
3: क्यों, कुछ सब्जियां भी तो है जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं, जैसे गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर
4: और ककड़ी, खीरा।
5: टमाटर को हम सब्जी कहते हैं, पर असल में ये एक फल होता है।
6: अच्छा, फिर नट्स भी तो, जैसे मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट,
7: किशमिश और चिलगोजे भी।
0: पता है अब चिलगोजे बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
1: कहीं मौसम में बदलाव तो इनके कम उगने का कारण तो नहीं?
2: तुम भी ना,
0: हर बात को प्रदूषण तक ले जाते हो।
5: तो गलत क्या है, जब पशुओं की इतनी प्रजातियां विलुप्त हो रही है मानव के प्रदूषण फैलाने से, तो पेड़ भी तो हो रहे हैं।
3: जरा सोचो, ऐसा हो कहीं एक दिन हमें भोजन देने वाले पेड़ पौधे कहीं विलुप्त ना हो जाए, जैसे मक्का, बाजरा।
4: क्यों, गेहूं भी तो है।
6: और दालें, फल, मटर, राजमा, चना,
7: सब्जियां जैसे पालक, गोभी।
0: पर अगर पौधे प्रदूषण से प्रभावित हुए तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि तेल और घी भी तो इन्हीं से आता है, कुछ सीधे सीधे और कुछ
1: पता है इनडायरेक्ट तरीके से।
0: गाय घास या पौधा खाती है, दूध देती है, मक्खन निकलता है और घी।
3: पर बात सुनो, अगर पौधों पर प्रदूषण का बुरा असर पड़ेगा तो पशुओं पर भी पड़ेगा, तो दूध पर भी, दही, शहद, पनीर, अंडे या मांस।
4: मैं तो शाकाहारी हूँ।
7: मैं भी मांसाहारी नहीं हूँ, शाकाहारी हूँ।
5: चलो कुछ सकारात्मक सोचते हैं, कुछ नहीं होगा, तुम सब हो ना। जब जानते हो क्या समस्या है तो समाधान भी तुम ही निकालोगे। अच्छा ये तो बताओ, क्या तुम सब खाने से पहले हाथ धोते हो?
4: मैं तो धोती हूँ।
6: मैं भी, अच्छी तरह साबुन से।
7: मैं भी।
0: सबको हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए और खाने को खूब अच्छी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए।
1: दादाजी कहते थे हमारे 32 दांत होते हैं, तो हर एक दांत को एक एक बार तो भोजन चबाने का मौका मिलना ही चाहिए।
0: ये बात ठीक है, ऐसा हम हर कौर को कम से कम 32 बार चबा कर ही लेंगे।
5: हाँ, पर खाते खाते बातें नहीं करनी चाहिए।
3: मेरी मम्मी कहती है कि सही समय पर भोजन करना चाहिए।
4: पर कहते हैं कि जो बच्चे नाश्ता करके स्कूल जाते हैं उनका दिमाग बहुत तेज चलता है।
6: तो हमें नाश्ता जरूर करना चाहिए।
7: हमारे टीचर उस दिन कह रही थी कि दिन में नाश्ता, दोपहर को लंच और रात का खाना तो जरूर ही खाना चाहिए।
0: और दीदी, सबसे जरूरी बात जो सब भूल ही रहे हैं वो है साफ खाना खाना, ढका हुआ और ताज़ा खाना।
1: बासी खाना या सड़ा गला भोजन करने से बीमारी हो सकती है।
0: हाँ, और उन पर मक्खियाँ बिल्कुल न बैठी हों, ये ध्यान रखना चाहिए।
3: और साफ बर्तनों में खाए, इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए।
4: पर सबसे जरूरी बात तो ये है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए।
5: हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें इतना अच्छा भोजन मिल रहा है, उतना ही लेना चाहिए जितना कि हम खा सकें।
6: दीदी, शादियों में देखा है लोग अपनी प्लेटों में कितना

0: खाना भर लेते हैं और फिर खाया नहीं जाता तो फेंक देते हैं।
1: चलो आज मिलके कसम खाते हैं, न खाना वेस्ट करेंगे न किसी को करने देंगे।
2: हाँ उतना ही प्लेट में डालेंगे जितना खा सके।
0: इन सब बातों से ही तो एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होगा।
3: अच्छा भोजन अच्छा व्यक्तित्व,
4: ताज़ा लाभदायक रुचिकर सबको पसंद आने वाला सही मात्रा में सब गुणों वाला साफ सशक्त समस्याओं से लड़ने में सहायक।
5: ये भोजन की बात कर रहे हो कि व्यक्तित्व की?
3: दोनों की।

बोला मुझको खा लो मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोला मुझको खा लो मैं तो तुमको ताकत दूंगा। गोभी मटर टमाटर बोले गाजर भिंडी बैंगन बोले। अगर हमें भी तुम खाओगे रोज रोज बढ़ते

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनी की आवाज 107.8 FM पर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूँ रेडियो प्रोग्राम खाबो का सफर। जी हाँ, कहते हैं चुपके से धड़कन में उतर जाएंगे, राहे उल्फत में हद से गुजर जाएंगे, आप जो हमें इतना चाहेंगे हम तो आपकी सांसों में पिघल जाएंगे। आप सुना है रेडियो पुनी की आवाज। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम लोग एच अक्षर से 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज सुनने वाले हैं। कविता जी हमारे साथ हैं, जो इन गानों का कलेक्शन लेकर हमारे साथ है। तो कविता जी, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू आपके खापों के सफर में रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, और आप मेरे खाबों के सफर में। आज का अल्फाबेट का गाना BH से है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं।

गणेश जी का ठाकुर जनरल सिंह इस एल्बम से जो 1966 में रिलीज हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं और इस गाने को सुनते हैं। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: इंतजार रहता है हर शाम तेरा, रातें कटते हैं ले ले के नाम तेरा, मुद्दत से बैठी हूँ ये आस पाले, शायद अब आ जाए कोई पैगाम तेरा। आप सुने हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। आइए आगे बढ़ते हैं। कविता जी, अगला गाना कौन सा है आपका?
1: अजीब सी बेताबी है तेरे बिना, रह भी लेते और रहा भी नहीं जाता। अजीब सी बेताबी है तेरे बिना, रह भी लेते और रहा भी नहीं जाता, ऐसा ही कुछ गाना है।

0: की हैं।
1: ओके, हसरत जयपुरी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म दिल एक मंदिर है। राजकुमार पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म थी और ये गाना भी बहुत ही सुंदर है। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: इंतजार की आरजू अब खो गई है, खामोशियों की अदा हो गई है, न सिकुड़ा रहा न शिकायत किसी से, अगर है तो एक मोहब्बत जो इन तन्हाइयों से हो गई है। आप सुनाए हैं रेडियो पुणे की आवाज 107.8 FM पर। आइए आगे बढ़ते हैं। कविता जी, आप आगे कौन सा गीत है आपके पास?
1: जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए, ऐसा ही कुछ गाना है। हम थे वो थी वो थे हम थे, हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, हम थे वो थी वो थी हम थे और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, अरे याने याने प्यार हो गया, हम थे वो थी वो थी हम थे और रंगीन समझ गए ना।
0: ओके बहुत ही अच्छा गीत आपने याद करा। 1958 में रिलीज हुई थी चलती का नाम गाड़ी, कॉमेडी किशोरदा का फिल्म। जी हाँ, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है, किशोरदा का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। खुश रहो खुश रहा बाटो।
2: हम थे वो थी हम थे

खोया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ तुमको लेने दो आ हा हा, खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ तुमको लेने दो।

झक झक झक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह हमसे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार।

0: घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आहा हमसे होती और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: इंतजार तो हम भी किया करते हैं, आपसे मिलने की आस किया करते हैं।

0: फिर भी चले आते हैं, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना करे। अजी हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा।
1: ओके, रवि साहब का संगीत से सवारा हुआ ये गीत दिल का दिल का ठग 1958 में जो रिलीज हुआ था, किशोर दा का ही कॉमेडी फिल्म है ये, किशोर दा का गाया हुआ आपके लिए खास रवि साहब का संगीत। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना। अजी हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना। अजी हम तो मोहब्बत

0: आप तो दिल लेके चले जाते हैं, पीछे पीछे दीवाने फिर भी चले आते हैं।
1: मेरी जूती से
0: जूता पॉलिश करेगा, जूता पॉलिश करेगा लेकिन तुम पर मरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो

0: भी अरमाए जवां होते हैं, दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहां होते हैं। ठोकर से और भी अरमाए जवां होते हैं, दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहां होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा, लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना चाहे हमको दीवाना, आज हम तुम

0: इतना सताओ हमको हम जीने कैसे भला ये तो बताओ हमको। दूर हो के अजी क्यों ना सताओ हमको हम जिए कैसे भला ये तो बताओ हमको।
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा छप छप छप छप छप डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा। डडडा डडडा डडडा डडडा डडडा डडडा डडडा हम तो मोहब्बत करेगा डडडा डडडा।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।
3: इंतजार उसका जिसके आने की कोई आस हो खुशबू भी उस फूल की जो मेरे पास हो।

0: मंजिल न मिल सकी हमें तो कोई बात नहीं, गम भी उसी शख्स का होता है जिसे प्यार का एहसास हो। आइए आगे बढ़ते हैं ख्वाबों के सफर में। अगला गाना कौन सा है आपके पास?
1: अगला गाना बहुत अच्छा है, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम। प्यार में कोई तो दिल तोड़ देता है, दोस्ती में कोई तो भरोसा तोड़ देता है, जिंदगी जीना तो कोई गुलाब से सीखे, जो खुद टूट कर दो दिलों को जोड़ देता है, ऐसा भी ये गीत है।

0: रहे हंसते भी रहे।
1: ओके, मुकेश जी का गाया शंकर जयकिशन का संगीत फिल्म आवारा 1951 का ये खूबसूरत गीत अभी आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कोई मिलता ही नहीं हमसे हमारा बनकर, वो मिले भी तो एक किनारा बनकर, हर खाब टूट के बिखरा कांच की तरह, बस एक इंतजार है साथ सहारा बनकर। आइए आगे बढ़ते हैं खाबों के सफर में। अगला गाना कौन सा है आपके पास
1: दोस्तों? अगला गाना है हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होकर ना जी पाएंगे, हर वक्त तुझे याद करते मर जाएंगे, तुम्हारी बाहों में सर रख कर रोना चाहेंगे।

ओके, हासन साहब का लिखा ये गीत, मोहम्मद रफी साहब का गाया, उषा खन्ना का संगीत, एक सफेदा एक लुटेरा 1965 का। ये भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म, कॉमेडी के साथ साथ रोमांटिक भी रहा ये फिल्म, बहुत ही अच्छा एक कहानी, एक लुटेरा एक सफेदा। तो आइए सुनते हैं इस गीत को, आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आपको हो न हो पर हमें आपकी कसम, आपकी कमी का हर पल एहसास है। क्या बात है, आइए आगे बढ़ते हैं खाबों के सफर में। अगला कौन सा गीत है आपके पास?
2: दोस्तों ये गीत नूतन जी ने बहुत खूबसूरती से पेश किया है, गाया लता जी ने है, बहुत सुंदर गीत है।

हर कदम हर पल साथ है, दूर होकर भी हम आपके पास है। ओके, बहुत अच्छा गीत आपने याद कराया है। आनंद बख्शी साहब का लिखा, लता मुकेश साहब का गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म मिलन 1967 में जो रिलीज हुई थी। बहुत ही प्यारा सा गीत है ये, नूतन और सुनील दत्त पर पिक्चराइज किया गया ये फिल्म था। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। बड़ा गीत सुनते सुनते आपको एक अलग पिक्चराइजेशन आपके मन में आएगा। हम तुम युग युग से गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। तो आइए, गीत लिखने वालों ने बड़ा खूबसूरत ये गीत लिखा है। जैसे आप सुनेंगे आप अपने किसी यादों में जरूर खो जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को। खामों का सफर, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते, होठों से कुछ कह नहीं सकते, कैसे बयां करें हम आपको ये दिल का हाल कि तुम ही हो जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज। आइए आगे बढ़ते हैं कविता जी, अगला आखिरी गाना कौन सा है आपके पिटारे में?
2: ख्वाबों के सफर से लेना पड़ेगा अब मुझे आपसे इजाजत, जाते जाते आपके लिए ये सुंदर सा गीत हम

ओके मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत, चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का ये गाना आपके नाम, क्या बात है। चलिए दोस्तों, इस गाने के साथ साथ हम चाहेंगे आपसे इजाजत, मुझे और कविता जी को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, जाते जाते चार लाइनें आपके नाम। हकीकत कहो तो उनको ख्वाब लगता है, शिकायत करो तो उनको मजाक लगता है, कितने शिद्दत से उन्हें याद करते हैं हम, और एक वो है जिन्हें ये सब इस्तेफाक लगता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। सलाम नमस्ते, खम्मा गलीसा, खुश रहो, खुशियां बांटो।

बहुत प्यारा भजन। दुख में यदि सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसना सीखो, परिस्थिति कोई भी हो। दुख में हिम्मत रखने से दुख आधा रह जाता है और विचलित होने से दुख जो है वो दुगना हो जाता है। रात की सीढ़ियां पार किए बिना प्रभात की मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसा देखा गया कि धैर्य के सामने भयंकर संकट भी धुएं के बादल के समान उड़ जाते हैं। भाई सुनते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल दायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: quite handsome.
1: यहाँ बैठ सकती हूँ? माफ कीजिएगा।

0: खेल रहे हो?
1: शादी नहीं की, प्यार भी नहीं?
0: इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
3: अब किसान बने रहिए, अब निवासियों की है पहचान। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
4: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे, और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस विषय को लेकर बात करते हैं, जहां पर हमारे यूथ को खास हमने टारगेट किया है कि वो अपने जीवन में, जैसे कि सेकेंडरी स्कूल में आते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन शुरू हो जाता है, तो उनका करियर के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। कई बच्चे जो हैं 10th के बाद या फिर 12th के बाद सोचना शुरू करते हैं, और कई लोग पहले से सोचना शुरू कर देते हैं। ये हर एक की अपनी पालना और माता पिता का जो संस्कार है उस अनुसार वो चीजें होती हैं, या फिर आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, उस अनुसार फिर आप अपने बारे में उस तरह का सोच निर्माण करते हैं। तो आइए, आपके सोच में एक नया परिवर्तन लाने के लिए, एक नई सोच देने के लिए, अपने करियर को अच्छी बनाने के लिए आपको आज विशेष बातचीत करने वाले हैं हम लोग। आज के हमारे खास मेहमान राजेंद्र गोपाल व्यास जी हैं, जो बहुत ही अच्छे भारत के कवि हैं, और साथ ही साथ इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष अहम भूमिका निभाया है। एज ए एजुकेशनिस्ट ये अपना प्रोफेशन

0: संभालते हुए पूरी तरह से उसमें अपने जीवन भर उन्होंने सेवा दी है शिक्षा के क्षेत्र में, और वहां से रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब भीलवाड़ा में अपना घर पर ही रह रहे हैं और साथ ही साथ ब्रह्म कुमारी से जुड़कर आध्यात्मिक अनुभूतियों का जो है गहराई से चिंतन मनन कर उसकी अनुभूति करते हैं और दूसरों को अपनी अनुभूति का जो आनंद है देते रहते हैं। काव्य के माध्यम से, अनुभूति के शब्दों के माध्यम से हमेशा सभी लोगों को जो है खुशी बांटते हैं आध्यात्मिक जीवन का। तो आइए आज हम लोग उनके जीवन की यात्रा में एजुकेशन ये जो क्षेत्र है उसमें उनका कैसे आना हुआ, कैसे जाना हुआ, उसके बारे में उनसे जानेंगे और साथ ही साथ उनके बचपन की कुछ बातें और कुछ और जीवन के अनुभव भी सुनने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से सम्माननीय आदरणीय राजेंद्र गोपाल व्यास सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद सर, मैं धन्य हुआ आपने मुझे याद किया।
0: जी जी जी, राजेंद्र गोपाल व्यास सर बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपनी बचपन की कुछ बातें हमारे साथ साझा कीजिए कि आपका बचपन कहाँ बीता और किस तरह से आपकी एजुकेशन हुई। जी
1: बहुत अच्छा, मैं प्रभु को स्मरित करते हुए
0: जी
1: मेरे जीवन के बारे में यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि मेरा जन्म 31 जुलाई 1951 को, 51 में भीलवाड़ा में मेरा जन्म हुआ।
0: अच्छा।
1: एक पुराना हॉस्पिटल हुआ करता था आयुर्वेद का, उसमें मेरा जन्म हुआ मेरी माँ बताती है। और जन्म के तुरंत बाद ही यहाँ एक महात्मा गांधी अस्पताल बना था भीलवाड़ा में नया, जो अभी वर्तमान में है। उसमें जहाँ से, जिस हॉस्पिटल से मेरा जन्म हुआ, वहाँ से सारे माताओं को, नवजात शिशुओं को उसमें शिफ्ट किया उस नए हॉस्पिटल में। मेरी माँ बताती है उन्हें सफेद बॉर्डर की साड़ी करके, स्वतंत्र भारत में ये एक नया हॉस्पिटल बना, तो मैं एमजी हॉस्पिटल में थोड़े दिनों के लिए इधर शिफ्ट किया गया। और मेरा मूल गांव है हमीरगंज, यहाँ से 22 किलोमीटर भीलवाड़ा से।
0: अच्छा।
1: जहाँ मेरा जन्मस्थली है, यहाँ मेरा बचपन बीता है। मेरे पिता श्री जमनालाल जी व्यास और मेरी माँ का नाम कमला देवी है। मेरी परवरिश दो तीन माताओं से हुई, आपको सुन के आश्चर्य होगा। मेरी एक मौसी है जो बचपन में 13 साल में ही बाल विधवा हो गई, 13 साल में।
0: अच्छा अच्छा।
1: वो मेरे उसी गांव में उनका भी विवाह हुआ। वो मेरी माँ से बड़ी थी, उसका नाम था दुर्गा देवी। मेरे मौसा जी का एक तरह से एक मर्डर हुआ, यूं कह दीजिएगा, कुएं में उनकी लाश मिली। और 13 साल की उम्र में पता नहीं उनके देवर और ससुर से मेरी मौसी का नहीं संबंध बैठा, तो उस दिन सारी प्रॉपर्टी छोड़ के उसी गांव में वो मेरी माँ के घर आ गई। रमेश जी आप आश्चर्य करेंगे, 75 वर्ष उस मेरे घर में ही उसने मेरी पालना करी। वो दोबारा अपने ससुराल गई नहीं। बीच बीच में उनके देवर बहुत बार मिलने आते थे, कहते थे भाभी आप अपना घर ज्वाइन करो, आपकी प्रॉपर्टी है। नहीं, वो वहां से उसके जो कुछ गहने थे वो लेके आ गई। जीवन भर उसने मेरे पिताश्री और मेरी माँ के पास, यूं समझिए कि उसने हमारे घर का अन्न नहीं खाया, उसके पास जो गोल्ड था वो लेके आ गई, बाकी सारी वसीयत। तो एक जीजी हम उसको घर में कहते थे, उसने मेरा निर्माण किया, उसने मेरा निर्माण किया। और उसके देवर को वहाँ बापू नाम से संबोधित करते थे, वो बड़े रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी से रिटायर हुए और इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए थे मेयो कॉलेज में, और बंदूक रखना, बाग बगीचे संपन्न, इतना ईगो था। तो मेरी मौसी ने कहा कि मैं एक नया बापू पैदा कर दिखाऊंगी तुम्हें। और आज जिससे आप बात कर रहे हैं उसको घर में, मेरे घर में मुझे बापू नाम से संबोधित किया जाता है। और घर परिवार हमीर के लिए कहते हैं कि मैं उस बापू से तो 1000 गुना ऊंचाई पे अपनी जीवन शैली को जी रहा हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा इंस्पिरेशन कि मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश करी, मेरे बड़े भाई साहब मनोहर जी व्यास और नर्मदा देवी, ये मेरे भैया भाभी थे जिनको एक तरह से मेरे पिताश्री ने मुझे गोद रख दिया। यानी मेरी पढ़ाई की सारी परवरिश मेरे भैया भाभी ने करी। मेरे पिता संपन्न होते भी उन्होंने दूरदर्शिता रखी कि अगर मैं, मेरी पालना भैया भाभी से होगी तो जीवन भर में इनसे बहुत अच्छा रहूंगा। लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई का जो सिस्टम मेरे पिताश्री ने दिया, उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल खोला, वन मैन आर्मी कह सकते, 8वीं क्लास तक 300 बच्चों को अकेले मेरे फादर पढ़ाते थे सर।

0: आश्चर्य करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आठवीं तक और वहां का बच्चा गवर्नमेंट का एग्जाम देके और गवर्नमेंट स्कूल में पांचवी से छठी से सातवीं में फिट हो जाता था। तो मेरे पिताश्री बहुत बड़े, वो पहले गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनका ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल मेरे घर ही खोल लिया। ये मेरे हमीरगढ़ की एक छोटी सी प्रारंभिक, इसलिए 1967 तक पहली से दसवीं क्लास तक मेरी परवरिश हमीरगढ़ के एक माध्यमिक विद्यालय में हुई। सर वहां मेरा बचपन स्काउट, म्यूजिक, फुटबॉल, गेम्स, पढ़ाई में थोड़ा सा अगर आप मुझे पूछे तो मेरी रुचि कम थी, इसलिए मैं सेकंड डिवीजन ही पास होता था। मैं कभी एमए तक फर्स्ट नहीं आया, लेकिन या मैं सप्लीमेंट कर दूं मैं भूल जाऊंगा। उसके बाद मुझे पीड़ा थी कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया। तो जब मैं प्रताप नगर हायर सेकेंडरी स्कूल में आया तो मैंने कहा मैं पढ़ने में फर्स्ट नहीं आया पर मैं पढ़ाने में फर्स्ट आना चाहता हूँ, गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ। तो आपको आश्चर्य होगा 1980 में यहाँ एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक शिक्षण प्रतियोगिता होती थी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें मैंने सर ज्योग्राफी में गोल्ड मेडल लिया। यानी मैं पढ़ने में फर्स्ट नहीं आ सका तो उसकी क्षतिपूर्ति मैंने अपने पुरुषार्थ से, भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीष से, मैं पढ़ाने में सर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ज्योग्राफी में मैंने गोल्ड मेडल लिया है। वो तीसरी प्रतियोगिता थी राजस्थान की, अभी भी कंटिन्यू हर साल होती। तो ये एक वैक्यूम को मैंने इस तरह से पूरा किया। ये तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा का दौर रहा। इस आगे की यात्रा पर आपका जो प्रश्न है, मैं स्लोली स्लोली आगे बढ़ूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है और आशा करूंगा कि हमारे सभी दर्शक मित्रों को, श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं कि आपने स्कूली जीवन, तो आपने बताया कि किस तरह से आपकी पढ़ाई हुई, तो दसवीं या फिर सेकेंडरी उस समय कैसा था, टेंथ था कि ट्वेल्थ डायरेक्ट हो जाता था या कैसे था, वो थोड़ा सा बताइए। और फिर कॉलेज में
0: क्या होगा? जी आ जाऊंगा इसी क्रम में, दो भागों में बात कर लेता हूँ मैं। स्कूल एजुकेशन को पूरा करके फिर कॉलेज एजुकेशन पे जंप करूंगा। 1967 में मैंने हमीरगढ़ से टेंथ पास कर लिया। उसके बाद भीलवाड़ा में हायर सेकेंडरी स्कूल होता था।
1: अच्छा।
0: तो मैं 68 में सर यहाँ भीलवाड़ा आ गया 11th में। और यहाँ क्या होता था कि मेरा मन था कि मैं वैद्य बनना चाहता हूँ, पता नहीं कि उस समय आयुर्वेदाचार्य और भीष्काचार्य जो उदयपुर में मदन मानवीय कॉलेज होता था उसमें आर्ट्स के बच्चे भी एक टेस्ट दे करके और आयुर्वेद में जा सकते थे, उनके लिए बायोलॉजी का होना जरूरी नहीं होता था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
0: फिर भी मैंने इस स्कूल में आर्ट्स में एडमिशन लेने के बाद मैंने बायोलॉजी के एक पीडी गुप्ता मेरे लेक्चरर हुआ करते थे, उनके पास मैंने कहा कि मैं तो आयुर्वेद में जाऊंगा, मैंने बायोलॉजी नहीं ली पर मैं तो डिसेक्शन सीखना चाहता हूँ, आपके पास मेंढकों को प्रयोगात्मक तौर पे सर्जरी सीखना चाहता हूँ। तो मेरा प्यार इतना था कि उन्होंने मुझे स्वीकृति दे दी।
1: अच्छा।
0: कि जब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो चलो तुम फ्रॉक को इस तरह से। तो सर मैंने पहली बार एक मोम की प्लेट में चार आल पीने लगा के और क्लोरोफॉर्म दे के एक मेंढक को मूर्छित किया।
1: क्या बात है।
0: फिर तो हाथ कांपने लग गए और गलती कांपने से उस मेंढक की एक वेन कट गई।
1: ओहो।
0: और सर मैं मूर्छित नहीं हुआ यूं समझिएगा, मैं ब्राह्मण संस्कृति का संस्कारों का, मैं वो हिंसा देख नहीं सका और मुझे घृणा हो गई, मैं तो भूल के भी वैद्य नहीं बनूंगा। उस दिन के बाद मेरा डाइवर्जन आश्रम ही रहा। मैंने हायर सेकेंडरी प्रताप नगर में करी, वहाँ एक ऐसे टीचर थे सर जो मुझे हिंदी ढंग से नहीं पढ़ाते थे, पता नहीं मेरा मन क्यों होता था कि क्यों नहीं मेहनत करते। तो मैंने 68 में संकल्प किया कि मैं इसी स्कूल में किसी दिन हिंदी का टीचर बन के आऊंगा और भगवान करे तो मैं बच्चों को हिंदी कैसे पढ़ाई जाती, ये संकल्प मेरा पूरा हुआ सर। मेरी कॉलेज एजुकेशन के बाद एमए बीएड करने के बाद मैं गवर्नमेंट सर्विस में एक गांव आमली में पोस्टेड हुआ और एक प्रिंसिपल थे शिव शंकर जी श्रोत्री, उस जमाने में इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल को बड़े पावर होते थे सर ट्रांसफर को।
1: बिल्कुल।
0: एक रेलवे क्रॉसिंग पार करते मुझे शिव शंकर जी श्रोत्री मिले, तब मैं म्यूजिक में मैंने प्राइवेट में बड़ी हिंदी प्रभाकर और म्यूजिक प्रभाकर और तबले में ये काम कर लिया, तो वो जानते थे कि मैं म्यूजिक का टीचर भी बन सकता हूँ। तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पे मुझे पूछा क्यों रे तू कहाँ पहुंचते थे, मैंने कहा मैं तो गांवड़े में हूँ 8 महीने हो गए, बोले तू

0: से मैं बड़े स्कूल में लिया हूँ तो तू म्यूजिक में प्रार्थना वगैरह ये कर लेगा? मैंने कहा बिल्कुल कर लूंगा।
1: तो ये उन्होंने कब सीखा आपने, कैसे सीखा?
0: ये जब मैं कॉलेज में, क्या हुआ सर, फर्स्ट ईयर में जब आया तो वहाँ एक हमारे यूथ फेस्टिवल में इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन राजस्थान का लाइट म्यूजिक का हुआ प्रतियोगिता। अच्छा, सारे अच्छा। राजस्थान के सारे महाविद्यालयों के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए। मैं गांव से आया था लेकिन मैंने सुगम संगीत में, मेरे गुरु थे अमीरगढ़ में बालचंद जी शर्मा, उन्होंने मुझे बहुत म्यूजिक, तो मैंने स्कूल लेवल पे भी स्टेट में म्यूजिक में सेकंड आया था मैं स्टेट।
1: अच्छा,
0: अगर मैं फर्स्ट आता तो जयपुर आकाशवाणी पर मेरा ऑडिशन होता, लेकिन मैं सेकंड आया तो मेरा चयन नहीं हुआ। तो म्यूजिक फिर मैंने वहां फर्स्ट ईयर में जब मैंने लाइट म्यूजिक में उस कॉम्पिटिशन में टॉप किया फर्स्ट, तो वहां जो जज आए थे वो उनका नाम था लक्ष्मण दास वैष्णव, वे बिरजू महाराज के शिष्य थे और यहाँ एक संगीत कला केंद्र स्टेब्लिश हो गया था कॉलेज भीलवाड़ा में प्राइवेट। अच्छा, वहां उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो तो म्यूजिक सीखो। बस मैंने दूसरे दिन उस पुरस्कार के बाद मैंने फर्स्ट ईयर में ही ये कॉलेज ज्वाइन कर लिया सर, और यहीं से मैंने एक तरह से भी म्यूज किया है वोकल में। मैं 7-8 साल बहुत कॉलेज के जमाने में ही मैं रात को रियाज करता था और एमए किया, और इधर मैंने म्यूजिक के डिप्लोमा भी लिए। बाद में म्यूजिक में मेरा पोस्टिंग हो गया पर मैंने ज्वाइन नहीं किया। ये मेरी म्यूजिक यात्रा भी रही।
1: क्या बात, क्या बात। तो म्यूजिक यात्रा के बाद फिर जैसे कि आपका वहां सिलेक्शन हुआ तो संगीत आप सिखाने लगे, तो फिर एजुकेशन में बच्चों को जो पढ़ाने का वो जो सपना था आपका, वो कैसे पूरा हुआ उसके बारे में?
0: वो ऐसा हुआ सर, ये जो स्कूल जहाँ मैं ट्रांसफर होके आया हूँ ना अगस्त में, 26 अगस्त 1975 को, तो ये स्कूल सर 9th से शुरू होता था। हाँ, या 9th, 10th, 11th और 12th, चार क्लासेस होती थी। तो मैं तो बीएड करके निकला और पहले तो मेरी पोस्टिंग फर्स्ट 8वीं तक के स्कूल में हुई और सीधा मुझे बड़े स्कूल में इन्होंने, मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया सर। और मुझे पढ़ाने के लिए इन्होंने प्रार्थना के अलावा सीधी 11th में हिंदी पढ़ाने के लिए दे दी, जबकि लेक्चरर वहां थे। लेकिन मेरा टीचिंग इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा नहीं, सीधा 11वीं पढ़ाओगे तुम, और आप आश्चर्य करेंगे मैंने 14 वर्ष तक पीजी मैंने पॉलिटिकल साइंस में था मैं सर, लेकिन मैंने हिंदी पढ़ाई। और आप अतिशयोक्ति नहीं करता हूँ, 100% 14 साल मैंने, और मेरिट में और मतलब डिस्टिंक्शन मार्क्स वाले बच्चे हिंदी में तैयार किए। मैं ऐसी हिंदी पढ़ाता था वहाँ, ऐसी हिंदी।
1: क्या बात, क्या बात।
0: और वही 14 साल के बाद में मेरा शिक्षण, वहाँ एक प्रोजेक्ट आया सर, मैं आपको बता दूँ, आपने नाम सुना होगा, मानव संसाधन मंत्रालय का संस्कृति विभाग, उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था सर, ये शायद ये है 77-78 की बात है।
1: जी जी जी।
0: तो यहाँ एक उदयपुर में सीसीआरटी में हमारा एक सिलेक्शन हुआ जिले की तरफ से, या फर्स्ट ग्रेड के लोग ही इसमें भाग ले सकते थे, पर मेरे प्रिंसिपल ने नियमों को तोड़ के मुझे उस शिविर में भेजा। 29 दिन के शिविर में मैंने विद्यालयों में भारतीय संस्कृति प्रसार परियोजना का प्रशिक्षण लिया था। और उसमें मैं 44 लोगों में फर्स्ट आया 44 में।
1: कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया।
0: और वहाँ मुझे राजस्थान की तरफ से किट मिला सर, लाखों रुपए का। उस समय दिल्ली गया मैं सीसीआरटी में, और 12 वर्ष की मैंने ये जो प्रोजेक्ट किया उससे मुझे सीधा नेशनल अवार्ड मिला। शायद पहले भी कभी कहीं जिक्र हुआ हो, 3 अप्रैल 1989 को राष्ट्रपति द्वारा शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया मुझे। और ये वो सम्मान है रमेश जी जो आवेदन नहीं किया जाता, ये पहला वर्ल्ड का पहला अवार्ड है जहाँ सरकार रिक्वेस्ट करती है आप इसको स्वीकार करो, और मैंने किसी कारण मना किया कि मुझे नहीं आना। तो ये एक बच्चों का मेरा टीचिंग, और आज भी मैं विद्यालय में उस भारतीय संस्कृति के प्रसार की, और यही सोच के मेरे पिताश्री ने कहा कि मेरे सारे ही घर के लोग एजुकेशन में है, इसलिए मैंने अपने बेटे को हायर एजुकेशन के बाद बाहर नहीं भेजा। और 21 साल पहले इसकी मम्मी ने, हमारी युगल ने एक स्कूल स्थापित किया 21 वर्ष से, उसका नाम इंडियन एकेडमी है। इंग्लिश मीडियम का होते हुए भारतीय संस्कृति के मूल्यों के आधार पे वो बच्चा स्कूल को संभाल रहा है। तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मुझे हिंदू भारतीय होने का और दूसरा शिक्षक होने का बहुत बड़ा गर्व, एक अध्यापक होना। और उसके बाद में म्यूजिक के बाद पोइट्री में आ गया, तो जो नीरज जी कहते हैं कि कवि होना भी सौभाग्य है, तो मैं फक्र

0: से कह सकता हूँ कि मैं कवि बना, और ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद 21 वर्ष में तो सर मैं कवि की भूमिका को भी समाप्त करके एक ऋषि की श्रेणी में अपने आप को महसूस करता हूँ जहाँ काव्य के जरिए, मौन के जरिए, मुरलियों के जरिए, हिंदी भारतीय मंचों पर मैं 35 वर्ष रहा सर रमेश जी का, बहुत एक सम्मानित कवि के रूप में। बाद में जब ज्ञान में आया तो मुझे बाबा के ज्ञान की मूल्यों से ये लगा कि नहीं, संगीत और कविता ही जीवन की डेस्टिनी नहीं है, पवित्रता जीवन की डेस्टिनी है, इसलिए मेरा डाइवर्जन हुआ और मैं एक अच्छे राजयोगी के रूप में अपने आप को रेखांकित कर सकता हूँ। लोग मेरे व्यवहार से, मेरे चाल चलन से, मेरे ग्लो से ये महसूस करते हैं कि व्यक्ति कुछ लाखों में अलग तो दिखते ही हैं, हालांकि हूँ मैं इतना सामान्य।
1: राजेंद्र गोपाल व्यास जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही सुंदर आपकी यात्रा के बारे में सुनाया, मैं बहुत खुशी हुई। एक तो आप संगीतज्ञ हो गए, फिर उसके बाद आप शिक्षक बने और फिर उसके बाद आप एक कवि बने, तो ये त्रिवेणी जो आपने करियर एक साथ अपने अंदर समा के रखा, ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को आपको सुनने के बाद कहीं न कहीं एक जो है लगन, पढ़ाई और मेहनत, ये सारी चीजें अगर आप जोड़ लेते अपने अंदर और एक अच्छे इंसान बनके जो भी चीजें आपके सामने आती है उसको अगर वेलकम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने करियर को सजाते होंगे, संवारते भी होंगे। तो मैं चाहूंगा कि जब करियर की क्या उस समय जब आप एजुकेशन में एज ए म्यूजिक टीचर आप जब काम कर रहे थे, तो उस समय क्या आप सोचते थे कि कुछ और करना है, या उसके पहले भी आप क्या बनना चाहते? एक तो आपने बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहते
0: थे, उसको बहुत अच्छा शिक्षक था।
1: जी जी,
0: मैं अच्छा शिक्षक बनना चाहता था, वहाँ मैं पढ़ाता भी था बहुत मन से, 8-8 पीरियड पढ़ाता था सर मैं, 8-8 पीरियड, और सेकंड शिफ्ट की प्रेयर करने के बाद मैं घर आता था। मेरे दोनों हाथ आप समझिए जहाँ घड़ी मानते हैं वहाँ तक मेरे हाथ चौक से भर जाते थे। उस समय मेरा विवाह हुआ ही था तो मैं सूट पहन के भी कभी कभी बच्चों के क्लास में जाता था, तो मेरे सूट पर पूरी सफेद चौक जो है वो रेखांकित हो जाती थी। मैं ये पसंद वो नहीं परवाह करता कि मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे क्या इस सफेदी से मेरा, लेकिन ये, और एक इसमें और निवेदन कर दूं कि मेरा इस ससुराल में जहाँ मेरा विवाह, सर वो बहुत बड़े लीडिंग एडवोकेट है मेरे ससुर का, फिर उनके बेटे उस समय, आज की डेट में उस परिवार में 17 एडवोकेट है सर, 17। तो जब मेरा विवाह इनसे हुआ तो मैंने यहाँ पढ़ाई के दौरान सोचा कि इन वकीलों से कैसे निपटेंगे, तो आप आश्चर्य करेंगे सर मैंने LLB भी किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: परमिशन ली मैंने डिपार्टमेंट से और मेरी सर्विस बुक में एंट्री कराई कि मैं इस विधि को भी पढ़ूंगा कि कम से कम मैं मुकदमा लड़ू या न लड़ू, लेकिन मैं कम से कम कभी ससुराल वालों से अगर मेरा विमर्श हो तो मैं केस हारू नहीं, इसलिए मैंने LLB भी किया।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: तो मैंने इस विधि को भी किया और फिर बाद में ज्ञान में आने के बाद परमात्मा की विधि को भी मैंने जीवन में अडॉप्ट किया। तो मैं इन बच्चों को ये कह रहा हूँ,
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है गोपाल सर। मैं चाहूंगा कि अभी यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारी बातचीत हो रही है राजेंद्र गोपाल व्यास जी से। और एक मल्टी टैलेंट व्यक्ति हैं, जो कवि भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी है, एडवोकेट भी है और बहुत ही अच्छे पॉपुलर मेडिटेशन करने वाले योगी भी हैं, ऋषि भी है। तो निश्चित तौर पर जब आप इनको एक देखते होंगे कि कैसे

0: चीजों को उन्होंने ज्ञात किया होगा, कैसे उन चीजों को अपने अंदर समाया होगा उन्होंने, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति एवरीथिंग इज पॉसिबल ऐसा कहा जा सकता है जब व्यास जी को सुनेंगे, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप अपनी जिज्ञासा, हमारे विद्यार्थी मित्र जो हमें सुन रहे हैं, युवा साथी सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने ईश्वर ने आपको वो सारी शक्तियां दी है, बस उसका उपयोग करना आना चाहिए आपको। अगर आप उपयोग नहीं कर रहे हो तो वो शक्ति आपकी व्यर्थ जाएगी। लेकिन राजेंद्र गोपाल सर जैसे बहुत सारे लोग हैं, एक अच्छे शिक्षक होने के नाते उन्होंने अपनी बुद्धि का, अपने पूरी शक्तियों का जो ईश्वर ने दिया है उन्हें, उसका पूरा उपयोग किया उन्होंने, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि एक संगीत जो विधा है, अगर उसको आप समझ लेते हैं, उसको अगर पकड़ लेते हैं, तो बाकी सारी विधाएं अपने आप शायद उसके आगोश में या उसके गोद में आ जाती है। क्योंकि संगीत में जो है व्यक्ति निखरता है और आगे बढ़ता है, और वो एक कला ऐसी है कि जहां पर आपका मन जो है खुल जाता है, आपका बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, और आपको खुशी भी मिलती है ना। और जब आप दूसरों को भी कुछ सुनाते हैं तो उनकी खुशी भी देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई कोई भी कला हो वो आपको जो है आगे बढ़ाता है और आपको निखारता है। तो बिल्कुल शायद गोपाल व्यास जी ने जब संगीत को अपनाया तो उसके बाद उनको लगा कि बस उनके जीवन में उन्होंने बहुत कुछ पाया, और फिर उसके बाद एक अच्छा शिक्षक बने, उसके बाद एक अच्छे कवि बने, और फिर आखिरी में उन्होंने एक ये भी सोचा कि ससुराल में इतने सारे एडवोकेट है तो हम क्यों नहीं बन सकते, तो उन्होंने वो भी बाजी मारी और एडवोकेट भी बने। तो निश्चित तौर पे आप के अंदर इतनी काबिलियत, इतनी क्षमता है, बस उसका उपयोग करने की जरूरत है। मुझे ये आज एहसास हो रहा है कि हम अपनी क्षमताओं का शायद ही अनुमान लगा पा रहे हैं ना। तो बहुत सारी शक्ति आपके अंदर है, बस जरूरत है उन्हें जगाने की। तो आइए फिर से मैं सम्माननीय आदरणीय जो हमारे राजेंद्र गोपाल व्यास जी हैं उनसे वापस जोड़ना चाहूंगा। अब जैसे कि जो आपने यात्राएं एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते काव्य की तरफ कैसे झुका हुआ, और कैसे आपने लिखना शुरू कर दिया पहले, और उसके बाद मंचों पर कैसे आपको आना हुआ, वो थोड़ा इतिहास बताइए।
1: जी सर, देखिए जब आप मुझे खोल रहे हैं तो मैं इनर वर्ल्ड में इतना गोता लगाता जा रहा हूँ कि बाबा ने मुझे कितनी विधाओं में मेरे को ट्रेंड किया। यहाँ सप्लीमेंट करूँ, आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि मैं कविता से पहले देश के बहुत अच्छे केमिस्ट्री में और एस्ट्रोलॉजी का भी विद्यार्थी रहा। मैंने जम करके सर ज्योतिष को किया और उस समय पैसा भी कमाया। अच्छा। मुझे कवि सम्मेलन ज्योतिष की वजह से मिलने लगे। मैं किसी का हाथ देख के कुछ प्रिडिक्ट करता था, वो बातें बाबा की कृपा कहिएगा वो लागू हो जाती थी, तो मुझे अच्छा, आयोजन मिलने अच्छा, लगे। अब स्टेज पे मसनत के पास छुप छुप के मैं कविता भी बोलता था और कवियों के हाथ भी देख लेता था। और दूसरे दिन कुछ जातक मुझे घर ले जाते, वहाँ पे अतिरिक्त लिफाफा मुझे कवि सम्मेलन के अलावा और मिल जाता था। तो फिर जब एक जगह मैंने मेरे मन में आया, परमात्मा ने मुझे कहा कि कहीं दूसरों का भविष्य देखने में तुम अपना वर्तमान तो नहीं बिगाड़ दोगे बेटा, ऐसे अंदर से गूंज आने के बाद सर मैंने इस विधा को एक तरह से वेस्ट फाइल में रख दिया। और अब कदा कदा कभी कहीं कोई अटक जाता है तो बिना पारिश्रमिक के मैं उनकी सेवा कर लेता हूँ, क्योंकि ज्योतिष भी छठा जो वेद है यदि, और उसमें भी हॉरोस्कोप के बजाय मैं केमिस्ट्री में ज्यादा, मेरे कीरो मेथड से भी मैंने हाथ देखने की, हस्त रेखाओं पर मेरा एक तरह से बहुत अच्छा कमांड रहा सर।
0: जी,
1: क्योंकि 7.5 साल में ये एक ऑटोमेटिक ईसीजी मशीन है कि हम जो सोचते वो रेखाओं में प्रिंट हो जाता और हम रेखाओं के बारे में काफी अंदाजा। लेकिन जब बाद में रेखा का अर्थ समझ में आया कि अनंत बिंदुओं से मिलने पर एक रेखा बनती है, अनंत रेखाओं से एक पेज बनता है, एक पेज से कॉपी बनती है, तो फिर मैंने कहा यार रेखा के चक्कर में नहीं पड़े अपन, तो बिंदु के चक्कर में पड़ जाए। तो मैं ज्ञान में जब आत्मा के रूप में बिंदु स्वरूप हो गया तो मेरा एक शेर है जो मैं आपको निवेदन करूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि हम खुदा तो नहीं पर जमाने से जुदा है। हम खुदा तो नहीं पर जमाने से जुदा है, हम किसी पे नहीं पर कोई हम पे फिदा है।
0: क्या
1: तो ईश्वर मुझसे फिदा हुआ, और मेरे लिए तो अभी रमेश बाबू रेडियो मधुबन मेरे लिए तो ईश्वरी है जो मुझ पे फिदा होके गांव के सुदूर बच्चे को इस तरह से इंटरव्यू में उपस्थित कर रहे हैं। तो मेरी काव्य यात्रा का मैं आपको बताऊं कि मैंने 35 वर्ष हमारे हमीरगंज में एक बंसीलाल जी बेकारी बहुत अच्छे कवि और उसके बाद मेरे भाई साहब स्वयं बड़े पंडित मनोहर व्यास सरस्वती, ये दो महान हस्तियां हमीरगढ़ में और हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि सम्मेलन 35 वर्षों तक हमीरगढ़ में हुए। इंडिया का कोई ऐसा कवि नहीं जो मेरे गांव में नहीं आया हो, ये श्रेय जाता बंसीलाल जी बेकारी को। लेकिन मेरी प्रतिभा से वे शुरू में ये महसूस किया कि अगर ये बच्चा मंच पे आया तो मेरे लिए खतरा उपस्थित हो सकता, तो उन्होंने मुझे कभी मंचीय सहयोग नहीं दिया।
0: अच्छा,
1: तब जिसका मैंने जिक्र किया कि मेरी मौसी जो है, जब वो एक बार उन्होंने कहा कि तुमको मैं भारत के बड़े मंच पे आज प्रस्तुत करेंगे, मैंने कविता की तैयारी की, लेकिन वहां जाने के बाद जानबूझ के उन्होंने मुझे कट लगाया और मैं बहुत पीड़ित लौटा मेरी मौसी के पास। तो मौसी ने कहा कि जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया ना, वो तो श्रोता के रूप में भी तुम्हारे पास उपस्थित नहीं हो पाएगा। और ये मेरी मौसी की प्रिडिक्शन बहुत सही हुई कि माउंट आबू में 21 वर्ष वर्ल्ड लेवल के इस बड़े रंगमंच से काव्य पाठ करने के लिए मैं बराबर तैयार हुआ, लेकिन बंसीलाल जी बेकारी कभी माउंट आबू नहीं आ सके, मेरी मौसी की घोषणा बिल्कुल सही हुई। तो मैं पोइट्री के 35 वर्ष कवियों को सुनने के बाद फर्स्ट ईयर में जब मैं सर 1969 में कॉलेज में आ गया, बस वहीं से मैंने छोटे मोटे काव्य लिखना शुरू किया। एक बार मैंने पहले भी कहा कि मैंने एक छोटी सी क्षणिका लिखी थी, मेरी माँ गांव के आंगन में वो अल्पना मानती थी, मैं गांव में रहता था ना सर, कच्चे घर थे, तो वो पीली मिट्टी पे सफेद खड़िया से वो कुछ अल्पना मान रही थी। तो मेरी सबसे पहली रचना उस दिन बनी, जो रचना क्षणिका के रूप में है, मेरी किताब में मुझे मिल गया, मैं भी उसको मैंने छापा है। और वो क्षणिका मैंने सर एक लेटर लिखकर के हरिवंश राय बच्चन को बिना पूछे मैंने उनको वो क्षणिका भेजने के बाद उन्होंने एक आप देखे पूरा परिशिष्ट उन्होंने मेरे लिए लिखा जवाब में। लोगों को भरोसा नहीं आया कि हरिवंश राय बच्चन गांव में राजेंद्र गोपाल व्यास को चिट्ठी लिखेंगे, और उसमें उन्होंने मेरी क्षणिका की तारीफ करके कहा कि तुम्हारे बीज में वो सारे तत्व मिलते हैं जो एक दिन तुम महान वृक्ष के रूप में उजागर होंगे, इसलिए ये नियम है। काशी रागरी प्रचारणी सभा को पूरा पढ़े, हिंदी साहित्य पढ़े, आदिकाल से लगा करके आधुनिक हिंदी भारतीय भारत हिंदू युग और द्विवेदी युग और सबको मैंने खूब गहन अध्ययन किया, क्योंकि मैं हिंदी ही पढ़ाता रहा 14 साल तक, तो मैं खूब किताबें पढ़ने का मुझे शौक रहा। फिर फर्स्ट ईयर से मैंने लिखना शुरू किया। आप देखिए 35 वर्ष इंडिया के सारे कवियों को सुनने के बाद और म्यूजिक मेरा अपना विषय रहा, तो सर मैं लिरिक्स भी लिखता था और मेरी कंपोजिंग भी, इसलिए मेरा एक गीत आप आशय करेंगे एक धुन का गीत कभी दूसरे उस गीत पे नहीं आया, मैंने हर बार नई धुन में अपने गीत लिखे, तो ये मेरी पोइट्री का। फिर मुझे कभी समय मिलने लग गए सर, फिर तो भगवान के दया। लेकिन ये एक रहा कि मैं मोबाइल नहीं रखता था, अभी भी नहीं रखता हूँ, जिसके कारण मेरा अन्य कवियों से और फेसबुक पर ये मेरा कम रहा, लेकिन मैं आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ कि मुझे किसी के माध्यम से कवि सम्मेलन मिल जाते हैं, मैं अपनी बात कह देता हूं। और अब तो नेशनल प्रोग्राम, मैंने सबसे पहले मेरा एक नाइट में मैं हीरो बना 1984 में, जब इंदिरा गांधी की डेथ पर मेरा एक गीत बना, कैसे निकला होगा दम लेखनी कहे, मैं नहीं कह रहा हूं कलम कह रही है कि उसने अपना प्राण देश पर कैसे न्यौछावर किया। इस गीत ने सर मुझे एक नाइट में हीरो बना दिया, किस गीत के बाद मैं सीधा भारतीय मंचों पे आ गया। आश्चर्य करेंगे, जैसे कोई यूपीएससी से डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड में आ जाए ना, ऐसे मुझे कवि के रूप में मान्यता मिली। तो मेरी काव्य यात्रा एक बिहार लिखिया मुंगेर के स्वामी जी हैं निरंजनानंद जी, आपने नाम सुना होगा, योग का पहला विश्वविद्यालय, वो किसी कार्यक्रम में जब यहाँ एक मुंगेर विश्वविद्यालय की का एक शाखा यहाँ वेदांत दर्शन नाम से स्थापित हुई, तो उनसे मेरा पहला परिचय हुआ। किसी दंपति के घर प्रकाश नवाल वंदना है, उनके घर वो बिराजे, वहां मैंने गीत सुनाए। तो गीत सुनने के बाद उन्होंने मुझसे रमेश जी एक प्रश्न पूछा कि आपका कोई काव्य संकलन छपा है? तो मैंने कहा सर इसमें व्याकरण का एक सिस्टम है कि मैं अभी तक छपा हुआ नहीं हूँ, छिपा हुआ हूँ। ये सुनते ही उन्होंने कहा आप मुझे 15 दिन में अपने गीतों की पांडुलिपि दीजिएगा, मैं आपकी किताब छपाऊंगा। और मैंने इतना खुश हुआ कि मैंने तो 15 दिन में क्या, मैंने तो 10 दिन में ही मैंने बहुत अच्छे शिष्य मेधावी चंद्र त्रिपाठी नाम है उनका, उन्होंने मेरी पांडुलिपि तैयार करके और सर

0: इनको प्रस्तुत कर दी और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 2003 में उस पुस्तक का प्रकाशन भी हो चुका है। मैं मुझे मिल गया नाम से उसमें कुछ तीन भागों में वो है और क्राउन प्रेस कोलकाता से करीब उसकी 50,000 प्रतियां छपी है, जो मैं आपको पता है माउंट में मैं उन जीनियस लोगों को वो गिफ्ट देता हूँ, वो स्वीकारते हैं और आज भी वो किताब मेरी पहचान बन गई उसमें। उसके बाद तो काव्य रचनाएं और हो गई, अब दूसरा संकलन निकले में किसी ने मुझे पूछा कि आपका और कोई संकलन है, मैंने कहा शेर नहीं के एक ही बहुत होता है, अगर दूसरा नहीं भी चपे तो क्या।
1: चलिए रंजन गोपाल व्यास जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और आशा करूंगा हमारे युवा साथी आपकी इस यात्रा में जहां पर आप अपनी भावनाओं को अपने विचारों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उन सभी को मोटिवेशन मिल रहा है क्योंकि व्यक्ति जैसे ही बोलना शुरू करता है तो उसकी जो है जीवन के सारे जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से मोटिवेशन देता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर राजेंद्र गोपाल जी से बात करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और राजेंद्र गोपाल व्यास जी की कहानी आपने सुना, किस तरह से वो संगीत से जुड़े, उसके बाद शिक्षक बने, उसके बाद कवि बने, उसके बाद एडवोकेट बने और उस बीच में एस्ट्रोलॉजर भी बन के निकले और अभी राज ऋषि बनकर हम सभी से बातें कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति और व्यक्तित्व अनेक, ऐसे व्यक्ति से हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए, मैं आखिरी में मैं जोड़ना चाहूंगा आप को फिर से राजेंद्र गोपाल व्यास जी सर से, और मैं चाहूंगा कि एक बात जरूर बताइए कि हमारे जो युवा साथी आज के समय में, पहले आपके टाइम पर तो शायद ऑप्शंस बहुत कम थे, है ना, या तो शिक्षक बनो, या तो इंजीनियर बनो, या तो डॉक्टर बनो, है ना, तो बाकी चीजें ऐसे जैसे आईटी ये सब चीजें नहीं थी। आज मल्टीपल चीजें हैं, हर सेक्टर में बहुत सारे विभाग आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है उसमें, है ना। तो मैं चाहूंगा कि आज के युवा को आप एक मैसेज और अपने करियर को चूज करने के लिए क्या बताना चाहेंगे।
1: बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे रमेश बाबू नई पीढ़ी पर बहुत नाज है, तो बुजुर्गों का तो बहुत कदर करता ही हूँ, लेकिन 1947 के बाद इंडिया के इस गणतंत्र ने और प्रजातंत्र ने जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो बताया मैंने आपको, जो भी मैं किसी चीज पर नेगेटिव कमेंट कभी नहीं करता, मैं ईश्वर और कुदरत पर भरोसा करता हूँ कि कभी कुछ गलत होता ही नहीं है। हमारी नजरों में जो गलत हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कल्याण छिपा रहता है, ये मैंने ज्ञान में आने के बाद महसूस किया। तो एक तो मेरा शिकायती चित्त सर कभी नहीं रहा, मैं परिस्थितियों से कभी नहीं घबराया। अगर वातावरण अनुकूल नहीं है तो हम टीचिंग में कहते थे कि हमें क्लासरूम क्लाइमेट क्रिएट करनी पड़ती। मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिए सर पर, आज एक अलग किस्म का इंटरव्यू एक घटित हो रहा है, क्योंकि ये एक क्रिया नहीं है, ये एक लीला है। एक मैं अकस्मात योग से उठा, आपका फोन आया, तो मैंने कहा नहीं, इतनी बड़ी उपलब्धि को मैं सारे काम अपॉइंटमेंट छोड़ के मैं यहाँ प्रस्तुत हो गया कि मेरा सौभाग्य है कि मधुबन रेडियो से आज संपूर्ण विश्व में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है मेरा। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं बच्चों को एक बात कहूंगा, मेरा एक डायलॉग है जो रेडियो मधुबन से भी बजता है कि इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते, पर इन बीजों को बचा सकते जिससे नए उद्यान लगाए जाए। देखिएगा, मैं बच्चों को ये कहूंगा कि गांधी जी के जमाने में बुनियादी शिक्षा आई थी सर हमारे यहाँ, वो 4H एजुकेशन कहलाती थी। उसमें 4H होते थे, हैंड, हेड, हार्ट और हारमोनी। तो वो एक पेंसिल भी हुआ करती थी रमेश जी, शायद आप एक 4H पेंसिल आया करते थे। हाँ, तो पहले क्या हार्मोनियस डेवलपमेंट होता था, सर्वांगीण विकास, बुनियादी शिक्षा में फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, गेम्स खेलते थे हम, क्राफ्ट करते थे हम, हॉबीज करते थे, पढ़ाई करते थे, स्कूलों में हमारा एक हार्मोनियस डेवलपमेंट होता था। आज मैं ये नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, पर जब से साइंस को हमने प्राण आधार मान लिया है, जब से ये साइंस आई, मोबाइल आए, लैपटॉप आए, इसमें बच्चों का बचपन तो सर खा गए, ये लोग बिल्कुल खा गए। अब तो गेम भी बच्चे हमारे इस मोबाइल पे ही खेल रहे, फील्ड भूल गए, पेड़ों पे चढ़ना भूल गए, तैराकियां भूल गए, फुटबॉल भूल गए हैं, फुटबॉल भी ये मोबाइल पे ही खेल रहे हैं। और बड़े शहरों में स्विमिंग पूल के नाम पे 2 फीट पानी के गड्ढे में बड़ा महंगा तैराकी वो सीख भी लेगा, हम तो गांवों के तालाबों में सर घंटे, चमकी और कमल लाना ऐसी ऐसे खतरों से खिलाड़ी हुआ करते थे हम तो। तो मैं तो ये बच्चों को यही कहूंगा कि बदलते युग में आप पिछले युग पे मत जाइएगा। हम तो एक कपड़े की गली से खेल के भी सर गांवों में बहुत प्यार से आपस में फिजिकल और मेंटल और हार्टली जीवन जीते थे। आज बच्चे, आपको एक सुन के आश्चर्य होगा कि 2 जुड़वा ट्विंस बच्चे भी एक माँ के सामने एक प्लेट में खाना नहीं खा सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज जो वैल्यू क्राइसिस आया ना, जो मूल्यहीनता आई है, उस पर मुझे पीड़ा है कि हम बच्चों को क्या कह रहे, संस्कार तो हम दे ही नहीं। यानी 2 जुड़वा बच्चे अगर एक

0: एक में खाना नहीं खा सकते, तो रमेश बाबू बताइए उनकी प्रॉपर्टी के विभाजन के वक्त उनकी हालत क्या होगी।
1: जी जी,
0: एक पीड़ादायक प्रश्न है, तो मैं नए बच्चों को कहूंगा कि सबसे पहले तो बुक्स के प्रति भी वापस, इंटरनेट पर आप जाइएगा लेकिन किताबों से अपना प्रेम वापस लाइएगा। हो सकता आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाए, नहीं चले, तो कम से कम बुक जो है वो तो आपको जीवन में बहुत आना। इसलिए मैं एक जगह एक फंक्शन में बार बार कहता हूँ कि हम बड़े लोग आजकल किसी अतिथि के वेलकम पर बुके देते हैं, एक बुके 400 रूपये का आता है रमेश बाबू, ये नए बच्चे सुन रहे हो मेरी बात।
1: बिल्कुल,
0: आप इतने बड़े 400 रूपये के बुके का 10 मिनट बाद कोई महत्व नहीं रहता। अगर आप 400 रूपये के बजाय 100 रूपये की एक बुक भी आप किसी को दे, तो जिंदगी भर उस परिवार में सुगंध आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सकती। एक मैसेज तो मैं ये दे रहा हूँ बच्चों को, वे बुक के प्रति ज्यादा रुझान लाए, बुके के प्रति थोड़ी उदासीनता लाए, ज्यादा फूलों को तोड़े नहीं, वो सृष्टि में उसी डाली पे लगे हुए हैं यार, परमात्मा हवा के जरिए। आप देखिए अपना नाखून तोड़ के बताओ ना, जगदीश चंद्र बसु जब मेरी बॉडी में उतरते तो मैं यही कहूंगा कि अनायास आप टहनिया नहीं तोड़े, फूल नहीं तोड़े, वो वहाँ लगे हुए हैं, उनकी सुगंध अनंत तक पहुँचती है। दूसरा, बच्चों को कहूंगा कि वे अपनी फैकल्टी को निर्धारित करें, अपने इनर वर्ल्ड में पेरेंट्स और गुरु के माध्यम से देखें कि आप बनना क्या चाहते हैं। अगर वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है तो सर उसको आर्टिस्ट के ही फील्ड में डाला जाए, अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर, लेकिन पेरेंट्स क्या होते हैं कि वो अपना दबाव डालते, जो बाप चाहता वो बनाना चाहता। इस पर बहुत सारी फिल्में भी आई, मैं उनका चित्र यहाँ नहीं करूंगा।
1: जी,
0: तो मैं चाहूंगा कि बच्चे को 9th के बाद अपने इनर वर्ल्ड में खुद भी अपनी समझ और अच्छे गुरुओं की गाइडेंस से अपनी फैकल्टी चयन करें, अपना कैरियर चेंज करें, और जिस कैरियर के ट्रैक में वो आ जाए उसमें हड्डी तोड़ मेहनत करे, फिर साइड सीन नहीं देखे सर। और अर्जुन की वो व्याख्या मैं करूंगा कि अर्जुन जैसे धनुर्धारी को न पेड़ दिखता है, न टहनिया दिखती है, न चिड़िया दिखती है, न आंख दिखती है, केवल पुतली दिखती है। तो 12वीं के बाद में, 12th के बाद में, या किसी कोचिंग के बाद वो अपना चाहे MBA करे, MCA करे, लॉ करे, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, अपनी क्वालिटीज को इनर वर्ल्ड में चेक कर ले कि आल्दो वो बनना चाहता था। अगर वो सही क्वालिटीज में वो जाकर के बनता है तो मैं सोचता हूँ इन बच्चों को जो मैं एक राय दे रहा हूँ अपनेपन के कारण, कि वे निश्चित रूप से एक ऊंचाई पर अपने जीवन को बनाएंगे। और मुझे फक्र है कि आज युवान, वृद्ध और प्रौढ़ मुझे सुन रहे हैं। मेरी इसमें कहीं कोई अहम की भूमिका आपको लगे कि व्यास जी कुछ घमंड की का छौंक लगा रहे हैं, तो मैं उनसे माफी चाहूंगा। कतई किसी अंतिम अनकॉन्शियस में भी मुझे ये ईगो नहीं है कि मैं कुछ काबिले तारीफ व्यक्ति हूँ, पर हाँ, परमात्मा ने मुझे, अनंत गुरुओं ने धार रख करके मेरे को इस हीरे को तराशा है कि आज जहाँ मौका मिलता है मैं चूकता नहीं हूँ और फालतू में कहीं बोलता नहीं हूँ। रमेश बाबू, आपने मेरे इनर वर्ल्ड में जो इंडोस्कोपी कैमरा डाल के आज मुझे जो मैसेज दिया है, मैं आपके प्रति, रेडियो मृदुवन के प्रति और बाबा के प्रति थैंक्स चाहूंगा कि अनंत गुरुओं ने मुझे ठीक है, इसलिए मैं लाइफ लॉन्ग सीखने प्रति क्षण में। और दूसरा, मैं निवेदन कर दूं कि मैं प्रेजेंट में रहने में बिलीव करता हूँ, मैं पास्ट और फ्यूचर की ज्यादा चिंता नहीं करता। और दो लाइनें आप कहो तो मैं गीत की भी सुना दूं ताकि सबको लगे कि मैं म्यूजिक और पोएट्री का विद्यार्थी रहा। तो एक प्यारी सी पंक्ति सुन लीजिएगा। लोग मुझे पूछते हैं स्वामी जी के मैं इतना अच्छा कैसे लिख लेता हूँ, है ना, तो उनके आंसर पर दो लाइन सुनिएगा। मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगा, मेरी कविता लिखने में मेरी योग्यता नहीं है, ये प्रभु प्रसाद है, एफर्ट नहीं है, ग्रेस है। मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगा, मैं भी क्या लिख पाता, मेरी है कितनी औकात,
1: क्या बात
0: है कितनी औकात। एक अंतिम बंद देखेगा बहुत अच्छा
1: जी,
0: भर भर अंतिम है इसका, भर भर खाली होना है, ज्यादा चीजों को संग्रह नहीं करें सर, आत्मा बोझिल हो जाएगी। हमारा मनुष्य जीवन देने के लिए मिला, मैं भी पहले सर बहुत लोभी था, आपको बताऊं, हर चीज प्राप्त करता था। अब मैंने बतौर करके बांटना शुरू किया जब से मैं बाबा के पास आया। भर भर खाली होना है और खाली होके भरना, कम खाना गम खाना सहना, पल दो पल का रहना, विहत करे ना रहन बसेरा, तूने डाली पा,

0: मेरा प्राण है ये। और उसमें भी जसंत भाई, पिशा बहन, आप, रोहित, बहुत सारे ऋषि, अनंत लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। और सीनियर्स में भी मैं नाम लूंगा, हमारे तुलसी भाई जी है, राम श्लोक भाई जी है, हमारे जसवंत भाई है, हमारे सतीश भाई जी है। इन महारथियों के बीच मेरी पालना रही है और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सबने मुझे सराहा, सुना, सुने, आप सबको सुना।
1: शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र गोपाल व्यास सर, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ। मैं भी इस आपकी रूहानी यात्रा के साथ जुड़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ और आशा करूंगा कि हमारे जो श्रोता मित्र हैं उन सभी को भी आनंद आया होगा आपकी बातें सुनकर। आपकी जीवन यात्रा में जो पड़ाव आए, जो छोटे बड़े अलग अलग मुकाम आपने हासिल किए, लेकिन हर जगह जो है एक जो रस है, प्रेम का रस बहता हुआ दिखता है। और निश्चित तौर पे मैं चाहूंगा कि प्रभु प्रेम के इस प्रभु प्रेम के इस रंग में हमेशा आप रंगे रहें, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं। सभी हमारे युवा साथी जो हमें सुन रहे हैं, उन सभी को मैं कहूंगा कि जीवन में आप चाहे जो बनना चाहे बिल्कुल बन सकते हैं, बस उसके लिए जी तोड़ मेहनत, जो हमारे व्यास जी ने कहा, बिल्कुल आप हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आप बिल्कुल हार्डवर्क करें, आपको अपनी जो है सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी अच्छे बने, करियर बनाएं, परिवार का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, नमस्कार, धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी

0: नहीं आ सकते बैठे बैठे दुकान में, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं, जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले, क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हाथ की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटे छोटे बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया,

0: उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया, वो उन्होंने किया। मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जहाँ के कहीं लागे न किसी की उसे बस नजर के मीठे सपनों में कोई है वो बेखबर के धीरे चल है बिगी हवा के मेरे बुलबुल की है नींद जवां के कहीं लागे न किसी की उसे बस

कहीं है, दुख कहीं है, होश कहाँ है भला इस बहार में, इस बहार में। कलियों से कह दे आज न चिटके।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: अलग प्रेमी रसिक श्रोते हो, तुम्ही ऐकत आहात पुणेरी आवाज अर्थात 107.8 FM। आणि तुम्ही आता जे जगदीश सोबत रंगतदार आणि बहारदार कार्यक्रमात अलगची झलक मध्ये अलग तुमची रसिक श्रोते हो, झलक आमची। अलग प्रेमी रसिक श्रोते हो, आज 3 मे 2026 आणि अलगची झलक प्रयोग क्रमांक 201 अर्थात द्विशतक पार। 200वा प्रयोग अत्यंत यशस्वी झाला, आवडला, आयोजन नियोजन सुंदर होतं, अशा अनेक प्रतिक्रिया आपण ऐकल्या। आणखी पुढची एक प्रतिक्रिया घेऊ जी आपल्याला अलगकर विद्या कुंभार कोल्हापूर यांनी पाठवली आहे। अलगची झलक आजचा कार्यक्रम द्विशतकी होता त्याबद्दल खूप अभिनंदन। आज मयूर सरांचे मार्गदर्शन लाभले, तसेच बऱ्याच अलगला मानाचा मुजरा प्राप्त झाला। सर्वच आजच्या अलग या एकापेक्षा एक होत्या आणि त्यात वेगळे पण होते हे तुमच्या दमदार सादरीकरणातून दिसून आले। हा कार्यक्रम पुढे जाण्यासाठी आणि सुरू राहण्यासाठी तुमचा मोठा वाटा आहे। नेहमी सर्वांची अलग एकत्र करून एक अलग सादर करणे, एक एक अलग सादर करणे हे सोपे काम नाही, तरी तुम्ही ते उत्तमरित्या करत आहात। तुमच्यामुळे माझ्यासारख्या अनेक अलगकरांना एक ओळख मिळत आहे। तसेच यातून तुमच्यामुळे समाज प्रबोधन होत असल्याने नवीन अलग लिहायला नेहमीच हुरूप येतो। तुमचे कौतुकाचे शब्द नेहमीच प्रोत्साहन देणारे असतात। तसेच आजही माझ्या अलगला मानाचा मुद्रा प्राप्त झाला त्याबद्दल खूप धन्यवाद। हा कार्यक्रम असाच अखंड सुरू राहो आणि वेगवेगळ्या अलग तुमच्या सुंदर सादरीकरणात ऐकण्यास मिळोत, हीच सदिच्छा आपली अलगकार विद्या कुंभार कोल्हापूर। अलगकार विद्या खूप खूप धन्यवाद। खरंच आहे, अलगकार मयुरेश यांच्या मार्गदर्शनामुळे अलगचा दर्जा नक्कीच वधारेल, अलगचा दर्जा खूप सुंदर होईल। आणि अलग केवळ ते अलगकार नाहीये तर अलगचे महागुरु आहेत। ऐकूया पुढची प्रतिक्रिया। गोरेगाव पश्चिमेतून अलगकार विवेकानंद यशवंत मराठे लिहितात, प्रयोग क्रमांक 200व्या आपल्या अलग झलक या कार्यक्रमासाठी माझे अलग गुरु म ना दे यांचे बहुमोल मार्गदर्शन करणारे व्याख्यान आयोजित केले होते, याबद्दल आम्ही अलग

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कंप्यूटर कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

पाका नारंगी की पाका पाता चूता रंगी जालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अरे माँ सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: अला अला अला।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: सवितुर्वरेण्यम्

107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरे सफर को हम देखें तो रिश्तों को नए अंदाज में देखने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। जब हमने समझा कि हम मैं कौन हूं, मेरी अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा का साथ मिला, तो रिश्तों को भी एक नई जान, एक नया अंदाज, एक नई खुशबू मिली। घर तक जब सीमित थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अपनी पिछली कड़ी से हमने बात शुरू की है कि घर के बाहर कदम रखा जाए और जब हम अपने कर्म क्षेत्र या ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे विश्वास की एक डोरी उनमें भी डाल सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज एक बार फिर इस सफर को आगे बढ़ाते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हर बात की तरह हमारे साथ हैं रमा कुमारी, सुस्त शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सुस्त शिवानी, पिछली बार अगर हम देखें तो हम ऑफिस पहुंच गए थे और ऑफिस पहुंच के हमने ये जाना था कि जब हम ऑफिस में एंटर कर रहे हैं या जब ऑफिस जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दबाव है कि जाना पड़ेगा, एक कॉम्पिटिशन की भावना, एक बोझ लेकर हम जाते हैं और फिर वो पूरा दिन हमारे साथ चलता रहता है, जैसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की बात आपने की थी। एक बार आगे बढ़ें और उस पूरे सिलसिले को और जानें, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है, क्यों घर और ऑफिस के माहौल में या ऑफिस जाने में हमें इतनी प्रॉब्लम आती है।
1: कहा जाता कि होम इज वेयर द हार्ट इज, यू नो, एंड नॉर्मली वी लीव द हार्ट एट होम when we go to work, and nowadays in the offices it is said bring your heart to work. Kyunki ek samay tha jab kaha jata hai ki bring your hands to work sirf, you know, ki yahan par hai intelligence, hum sare ideas denge, top management sare ideas dege, jisko hum pyramid structure kehte the ki jo top ke log hain ideas sirf unhi ke honge aur jo lower level par aayenge unko sirf us idea ko implement karna hai. आपको अपना दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, आपको जो कहा जाए वैसे का वैसे उसको करना है। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट वे बैक, जस्ट ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क। फिर जैसे जैसे परिवर्तन आता गया तो इट सेज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क बट ब्रिंग योर हेड टू वर्क ऑल्सो, अपना दिमाग भी साथ में लेकर आइए, आपका आइडिया भी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। और तब हम अब जो समय पर चल रहे हैं कि हर एक के आइडिया को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि वो आइडिया यू नो लोअर लेवल से आया या टॉप मैनेजमेंट से आया, एवरीबडी इज इक्वली इम्पोर्टेंट, सो ब्रिंग योर हेड टू वर्क। बट देन व्हाट हैपेंड, वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग आवर हैंड्स एंड हेड टू वर्क। अर्लियर वी वर ब्रिंगिंग ओनली हैंड टू वर्क, इट वॉज वेरी सिंपल, एक व्यक्ति का दिमाग ऊपर, बाकी सब
0: कई सारे हाथ काम करने वाले,
1: तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। एक ने बताया, सब ने उसको सिर्फ फॉलो करते,
0: और उस वक्त की जरूरत भी शायद वही थी।
1: अब जब सो मेनी हेड स्टार्टेड कमिंग टू वर्क, यू नो, क्योंकि हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर पे आ गए कि सब लोग एक ही लेवल पर हैं एज फार एज गिविंग द आइडिया इज कंसर्न, तो जहां इतने सारे हेड्स केम टू वर्क, तो दैट मीन्स हेड अर्थात ईगो, इतने सारे ईगोज केम टू वर्क ऑल्सो, माई आइडिया is better than your idea. Yeah.

0: आपका आइडिया क्यों लिया गया, मेरा आइडिया क्यों नहीं लिया गया, मेरा आइडिया ज्यादा बेटर है। तो जहां सिर्फ हाथ आ रहे थे ना, ईगो प्रॉब्लम कम थी क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन वेयर ऑल द हेड स्टार्टेड कमिंग टू वर्क, तो सारी जो आईक्यूज थी, ईगोज थी, वो सारी क्लैश होने लग गई। और जहां इतनी सारी ईगोज क्लैश होने लग गई, तब प्रॉब्लम्स आने लग गए। और फिर हम काम तो कर रहे हैं, बट वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। एंड सो नाउ द करंट ट्रेंड इज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क, ब्रिंग योर हेड्स टू वर्क, बट ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क ऑल्सो। हेड्स, हैंड्स एंड हार्ट टू वर्क। क्योंकि हार्ट टू वर्क से क्या होगा, यू आर नॉट जस्ट ब्रिंगिंग योर आइडियाज, आपकी ईगो सिर्फ नहीं लेकिन बिलोंगिंगनेस। हार्ट जहां है अर्थात क्या कि बिलोंगिंगनेस है।
1: दिस इज योर ऑफिस,
0: दिस इज योर ऑफिस। हम एक पॉसिबल है ये कि हम अगर चाहें तो अपने ऑफिस को अपना घर बना सकते हैं।
1: लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये भी कहा जाता है कि ऑफिस के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो जाना चाहिए, ऑफिस को इतना सब कुछ नहीं बना देना चाहिए।
0: जहां तक अटैचमेंट की बात आती तो वो तो हम वैसे भी अब डिटैचमेंट के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि हमें सब कुछ करना है लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। ऑफिस के साथ भी आज हम कहते हैं कि अटैचमेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन दर्द कितना है सारा दिन ऑफिस में। बिकॉज अटैचमेंट मे नॉट बी टू द ऑफिस, बट अटैचमेंट इज टू माई इमेज, अटैचमेंट इज टू माई आइडिया। आप मेरा आइडिया स्वीकार नहीं करो आज, मुझे कितना दर्द होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरा अटैचमेंट अपने आइडिया से है। आपसे भले ना हो, इस ऑफिस से भले ना हो, इस पोजिशन से ना, अपने आइडिया से तो है। मेरी एक इमेज है इस ऑफिस के अंदर। आप अगर आकर कुछ और कह गए, लेट्स से मेरी इमेज है दैट आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, अगर आपने आज आकर कह दिया कि आपने ये काम ठीक से नहीं किया, आई एम हर्ट, मुझे बहुत दर्द होने वाला है क्योंकि आई एम अटैच्ड टू दैट इमेज। तो अटैचमेंट तो हमारी बहुत सारी चीजों से है, लेकिन अटैचमेंट और बिलोंगिंगनेस दो अलग अलग बातें हो गई। अगेन, अटैचमेंट वो जहां दर्द है, और बिलोंगिंगनेस वो जहां प्यार है लेकिन दर्द
1: नहीं है। और अभी भी अटैचमेंट, अगर जो हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं, वो मुझसे ही रिलेटेड
0: है। बिकॉज अटैचमेंट है क्या, फिजिकली तो अटैचमेंट नहीं है ना। यहाँ हम किसी चीज को अपना समझकर, आइडेंटिटी को अपना समझकर पकड़कर खड़े हो जाते हैं कि दिस इज माय आइडिया, या मेरा आइडिया सबसे अच्छा, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो सबसे अच्छा, इन्होंने उसके अंदर गलती निकाली कैसे। सारा दिन तो सबसे ज्यादा हर्ट इसी बात पर है कि मेरे काम को आपने क्रिटिसाइज किया कैसे, अटैचमेंट्स। और ये सारे अटैचमेंट्स किस लिए, क्योंकि ईगो, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। सो माई आइडिया, माई पोजिशन, माई स्टेटस, सो मेनी थिंग्स, वो सारे अटैचमेंट्स यहाँ। लेकिन बिलोंगिंगनेस वो एक अलग चीज है। बिलोंगिंगनेस हुई कि जैसे ये मेरा परिवार है, वैसे ये भी मेरा परिवार है। है तो परिवार ही ना। और वास्तव में देखा जाए तो आज हम घर से ज्यादा समय ऑफिस में बिताते हैं। अब के समय पर जो हम चल रहे हैं, तो शायद हम घर तो रात्रि को सोने नहीं जाते हैं। यू नो, बाय द टाइम वी रीच होम इट इज 8:30 व्हाटएवर टू ईच वन, एंड वापस सुबह 8:30 बजे हम निकल जाते हैं। तो जो मेजर पोर्शन है वेकिंग अप टाइम, क्योंकि वो जितनी देर घर गए वो तो सोने का समय, वो सारा तो ऑफिस में है। तो शायद अ मोर इम्पोर्टेंट फैमिली इज हियर, क्योंकि उनके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं। तो वहां हाउ टू फील गुड, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अपने जीवन को इंजॉय करना।
1: वहां तो मैं हमेशा ऑन टोज हूँ। वहां इफ वी लुक एट, एक्चुअली तभी तो कहते हैं कि इतना स्ट्रेस है ऑफिस में, इतना स्ट्रेस है। अगर हम देखें, बिल्कुल देखा जाए, तो वहां हम कभी भी बिलोंग फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा डर रहता है कि वो कभी भी आपकी पीठ पे छुरा भोंक दे।
0: तो ये डर यहां है, ये डर हमें है। क्यों? क्योंकि हम इनसिक्योर है, हमारी सेल्फ एस्टीम लो है। अगेन, हर सिचुएशन में जो ऑफिस में आने वाली है, हर व्यक्ति जो ऑफिस में हमें मिलने वाला है, उसमें पर्सपेक्टिव को चेंज करके उधर से हटाकर अपने ऊपर लेते जाइए। ऑफिस और घर में क्या फर्क है? लेट्स से फॉर एग्जांपल, घर में एक बच्चा या एक मेरा यंगर ब्रदर या छोटी बहन गलती कर देती है, हम सारे घर में बैठते हैं और हम कहते हैं घर की बात को घर में रखना, ये बात कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए। और वो बात सच में घर में रह जाती है। बड़ी से बड़ी गलती छुप जाएगी, क्योंकि परिवार वाले कहते हैं ये हमारी परिवार की इज्जत का सवाल है, इसको घर में रहना चाहिए। ऑफिस में भी कोई छोटा नया रिक्रूट आया, छोटा बच्चा है मेरे कंपैरिजन में, मे बी आई एम 30 एंड ही इज जस्ट 20 और वट एवर, वो एक गलती करता, व्हाट विल आई डू?
1: सारी जगह फैलाया जाए।

0: नो दैट इज द डिफरेंस. क्यों? क्योंकि ये मेरा भाई था और ये नहीं है. तो देयर द एटीट्यूड विल बी उसकी गलती को हाईलाइट कर दो, उसकी गलती को हर एक को सुना दो, सीनियर्स तक रिपोर्ट कर दो. ये सब किस लिए? बिकॉज ही इज नॉट माई फैमिली मेम्बर, ही वॉज माई फैमिली मेम्बर. डिफरेंस. यहां उल्टा मुझे चांस मिला है कि उसने गलती की. इट्स एक्चुअली एज इफ आई विल कीप वेटिंग कि वो जो मेरे कलीग्स हैं या जो भी जिनके साथ मुझे जो इनसिक्योरिटी फील होती है वो गलती करे और मैं सबको बता दूं कि देखा. एंड प्लस आई गेट अ चांस टू कीप ऑन ऑल्सो पुलिंग हिम डाउन ये गलती की. तो वो एक अंडरकरंट कैसा बिल्डअप हो जाएगा और ये जो मैं करूंगा तो उसके बाद मुझे कैसा फील होगा और जिसके प्रति मैंने ये किया तो उससे मुझे कैसी वाइब्रेशन आएगी. तो हाउ कैन आई फील गुड इन द ऑफिस इफ आई टेक दैट सेम रिलेशनशिप देयर, अ यंगर ब्रदर और अ यंगर सिस्टर और इवन सेम एज वट एवर, गलती की. Help the person out and just keep it between the two people. क्या होगा उस relationship में? This is cooperation. वो था competition. अब ये जो अगर हमने कर लिया एक बार कि किसी ने गलती की और हमने उसको किसी को नहीं बताया, बिल्कुल किसी को नहीं बताया, जहां तक जरूरत नहीं है रिपोर्ट नहीं की उसके और उसको सिखाकर समझाकर सॉर्ट आउट करके बिल्कुल उसको भी हल्का कर दिया. What you have a family member for the rest of your life. Not till you are only in that office, you have a friend for the rest of your life. But we don't want to build these relationships because we are in that belief system ki sabko piche girana hai aur khud aage bhagta jana hai. To agar office mein wo jo log hai unko bhi parivar ki tarah bhi nahi, parivar hi. This is my family, this is my office, this is my home. तो वो ऐसे होने लगेगा कि जब आप सुबह घर से उठेंगे तो आप एक घर से उठेंगे
1: दूसरे परिवार में,
0: दूसरे घर में पहुंच जाएंगे. एंड संडे को आप उस परिवार को मिस करेंगे क्योंकि आप उनसे नहीं मिलते हैं. एंड मंडे मॉर्निंग
1: You will
0: look forward to meeting them again. It is possible. And for that, I don't have to wait कि पूरा ऑफिस कब ऐसा बन जाएगा. No, क्योंकि वो होने नहीं वाला. It's again like waiting for the world to change. It's not going to happen. Just my way of looking at the people. And that person who can do this is a leader. वो चाहे junior most व्यक्ति हो उस office का. That person is a leader in the office who can do that. It's possible. And then I would love to go to work.
1: Actually, I can feel the, you know, vibrations. अगर एक परिवार से उठ के हम दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं तो पूरा का पूरा एटीट्यूड, पूरा का पूरा हमारा देखने का नजरिया बदल चुका होगा जब हम अपने ऑफिस में एंटर करेंगे.
0: और जब आप पहुंचेंगे ना सारा दिन में तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं. यू नो दैट फीलिंग. क्योंकि वो आपको यही नहीं लगेगा कि आप ऑफिस में हैं. कोई भी चीज अगर आप इंजॉय करते हैं, कोई भी ग्रुप के साथ, लेट्स से आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो हल्का कितना लगता है. क्योंकि आप
1: उस घर में भी जो काम कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम
0: बिल्कुल नहीं लगता. तो थकावट नहीं होती है, एनर्जी सारा दिन ऑफिस में एनर्जी ड्रेन आउट क्यों हो जाती है? ये छोटी छोटी बातें जो हम करते हैं, इसको नीचे खींचना, इसको नीचे गिराना, इधर से उधर तक गए, वेंडिंग कॉफी मशीन तक गए, उसके वहां खड़े हुए, कॉफी पी, जब तक वो इतना सा कॉफी का कप होता है, जब तक वो पिया चार लोगों के बारे में डिस्कस करके आ गए. दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट देन व्हाट विल हैपन? माय एनर्जी गेट्स पुल्ड डाउन. हाउ कैन आई फील गुड? तो कैसा अच्छा लगेगा? तो मैंने अपने लिए ही, किसी और ने नहीं. लोग नॉर्मली कहते हैं जी क्या करें हमारे ऑफिस का वायुमंडल ऐसा है ना. इट्स एन एनर्जी फील्ड विच आई क्रिएट ना, माई चॉइस कि मैं किस तरह की एनर्जी फील्ड अपने लिए क्रिएट करना चाहती हूँ. तो टुमोरो व्हेन आई गो बैक टू वर्क, लेट मी गो बट दिस थॉट, आई एम गोइंग टू माय फैमिली.
1: बट देन इफ आई गेट ऑल द नेगेटिव वाइब्रेशन,
0: दैट्स ओके. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट आई वांट टू गिव
1: एंड हाउ स्ट्रांग आई एम.
0: जब वो नेगेटिव अगर आ भी रही है अभी तो मेरी फिर भी चॉइस है कि मुझे क्या देना है. सी नॉर्मली जब दो लोग एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ईच वन इज कैरिंग एन एनर्जी फील्ड. एक ऑरा तो है हर एक का. तो अभी वर्तमान समय क्या हो रहा है, दोनों का ऑरा थोड़ा सा नेगेटिव है. तो बहुत जल्दी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो नेगेटिव ही एक दूसरे से कैच करते हैं. अब अगर हमने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके, इंट्रोस्पेक्ट करके, अपनी थॉट को चेंज करके और थोड़ा मेडिटेशन भी प्रैक्टिस अगर करें तो हमारा ऑरा धीरे धीरे, एनर्जी फील्ड चेंज होता जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए. नाउ व्हेन आई कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस पर्सन, इनका नेगेटिव ही है, दे हैव नॉट चेंज्ड, मे बी द होल ऑफिस हैज नॉट

0: on myself, leakage nahi hone do sara din. Third stage kya pahunchegi?
1: Meri aap tak pahunche. I'll overpower you.
0: Absolutely. My positivity aapko overpower karegi aur tab ye log kahenge ki inse milkar bahut acha lagta. This person is now a leader. Kyunki inke saath kaam karke auron ko acha lagta hai. Now why will this person not move up in terms of corporate ladder? क्यों नहीं जाएंगे ऊपर, क्यों इनको प्रमोशन नहीं मिलेगी? इनफैक्ट जब इनको प्रमोशन मिलेगी तो ये लोगों को जेलसी नहीं होगी, इनको खुशी होगी.
1: लेकिन अगेन जो ये था, मैं भी उसी पे आ गई, उनको जो भी वो प्रमोट कर रहे हैं इंटरनली और आउटर बोथ शुड बी सेम इन सिंक.
0: हाँ, वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ इनर.
1: यू नो, हर बार क्या होता है, ऊपर से तो बहुत अच्छे हो जाते हैं. ऑफिस में ये बहुत एक पूरा का पूरा एस्पेक्ट ये चलता है कि हम ऊपर से तो वी आर लाइक वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ ऐसा चलता
0: है. हम एक ऑफिस के ग्रुप में, कंपनी में ग्रुप के साथ वर्कशॉप कर रहे थे, तो हमने कहा कि सपोज वी हैव लिटिल लिटिल मशीन्स जिससे आप सबकी थॉट्स इस समय रीड हो जाए. तो एवरीबडी लुक्ड एट ईच अदर लाइक दैट एंड देन दे सेड, फिर हम सब एक रूम में नहीं बैठ सकेंगे. यू नो, एंड बाहर से देखें तो एवरीबडी इज परफेक्टली फाइन, बट जो हम एक दूसरे के प्रति सोच सकते हैं उसकी तो लेवल
1: वही आई थिंक दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट.
0: बट वो ही तो वायुमंडल है, ऑफिस कल्चर और क्या है. लेकिन हम वेट नहीं कर सकते कि सारे कब चेंज होंगे. इफ आई चेंज
1: एंड आई हैव टू चेंज एक्चुअली इंटरनली,
0: ओनली इंटरनली. क्योंकि अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव है तो यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट कि मुझे बोलना पॉजिटिव है, कि कहीं मेरे मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड नहीं निकल जाए. वो कैसे निकलेगा? यू नो, उसका बीज नहीं है अंदर. अभी एफर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि बीज नेगेटिव है यहाँ, तो एफर्ट करना पड़ता है कहीं गलती से बाहर ना निकल जाए. तो यहाँ सारा दिन अटेंशन रखना पड़ता है कि आई शुड टॉक प्रॉपरली, कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, आई शुड वर्क प्रॉपरली. लेकिन जब रॉ प्रोडक्ट, यू नो, रॉ मटेरियल ठीक होगा तो आपको एंड प्रोडक्ट पर मेहनत के बारे में
1: वंडरफुल. एक्चुअली दैट रियली मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. यू नो, ये माइंड सेट दिमाग में आते ही कि मैं एक परिवार से निकल के दूसरे परिवार में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक पूरा यू नो बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी. अब हम उस परिवार में जा रहे हैं जहां मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि हमने अभी पिछले रिलेशनशिप में देखा है कि जब हम घर में थे तो उन रिश्तों में इतनी मुश्किलें थी. तो वो मुश्किलें आएंगी, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, इसका मतलब वो मेरा परिवार है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं. यू नो, हम पहली चीज ऑफिस में क्या करते हैं, आई वॉन्ट टू लीव, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क हेयर, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता. घर पे तो मैं नहीं कहती कभी कि मैं घर में नहीं रहना चाहती.
0: बिलोंगिंगनेस नहीं है ना. देखो, घर पे बड़े से बड़ा झगड़ा हो जाए, यू नो, बच्चे कितनी बार झगड़े में, गुस्से में, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन छोड़कर कौन जाता है? कोई नहीं जाता. अगले दिन वापस वही, उतना ही प्यार, हस्बैंड वाइफ भी, मैं छोड़ के चला जाऊंगा. वाइफ तो कितने प्यार से अपना सूटकेस भी निकाल देती है, सारा पैक कर देती है, मैं चली जाऊंगी. थोड़ी देर के बाद वापस. इट्स ओके, सी कॉन्फ्लिक्ट इन, यू नो, छोटी छोटी बातों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट्स गोइंग टू ऑलवेज बी देयर. लेकिन जहां वो बॉन्डिंग है तो वो झगड़ा अगले दिन तक भूल जाता है. लेकिन यहां बॉन्डिंग नहीं है ऑफिस में, तो वो छोटी सी बात भी वो इतनी यहां इम्पैक्ट कर देती है, वो हर्ट इतना डीप हो जाता है. और क्योंकि बिलोंगिंगनेस नहीं है तो छोड़ना बहुत ईजी हो जाता है.
1: पहली चीज, पहला थॉट आता है लीव.
0: आई लीव, या क्योंकि बॉन्डिंग नहीं है ना. तो जहां बॉन्डिंग नहीं है तो उस रिश्ते को तोड़ना बहुत ईजी है.
1: बहुत सुंदर. आई थिंक दिस रियली गिव्स अनदर विजन टू माई रिलेशनशिप इन द ऑफिस एंड माई रिलेशनशिप टू द ऑफिस. यू नो, माई बिलोंगिंग फीलिंग की आई बिलोंग टू दैट ऑफिस. अगर ये माइंड सेट लेकर चलते हैं, अब पहला तो हमने पहला पड़ाव पार किया है कि हमारा एटीट्यूड जब हम ऑफिस जा रहे हैं वो क्या होगा. अब हम उन प्रॉब्लम्स पे आते हैं, जैसे हमने रिश्तों के घर में बात की थी, वैसे यहां पर भी जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हम आते हैं तो डिफरेंट है थोड़ी प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का मुझे लगता है कि हम सोल्यूशन उसी में ढूंढ सकते हैं. फर्स्ट इज कि मेरे प्रोजेक्ट को, या मैंने जो जितना जहां तक पहुंचा था, मेरी अचीवमेंट को एक्नॉलेज नहीं किया गया. दैट्स द बिगेस्ट हर्ट.
0: अगेन आई विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑन अ जर्नी. एक प्रोजेक्ट इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग. एक चीज की हुई कभी वेस्ट नहीं जाती है. और अप्रिसिएशन मुझे किससे चाहिए? मोटिवेशन. कई बार लोग बोलते हैं मोटिवेट ही नहीं कोई करता है, अप्रिशिएट नहीं करता तो हम मोटिवेट कैसे होंगे? तो वर्तमान समय एक चीज को हमें याद रखना पड़ेगा, वो हम बार बार डिस्कस करते आए हैं रिश्तों में, कि जो चीज औरों के पास नहीं है उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें. मे बी दे डोंट हैव दैट मोटिवेशन इन देम राइट नाउ, तो वो हमें कैसे मोटिवेट

0: करेंगे. तो मोटिवेशन या अप्रिसिएशन ये पॉजिटिविटी है. लेकिन अगर मेरा सीनियर खुद ही बहुत नेगेटिव है, खुद ही बहुत स्ट्रेस्ड है, तो वो कहाँ वो अप्रिसिएट करे. उस तो अपने ही प्रॉब्लम्स में इतना घिरा हुआ है. लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा काम अच्छा नहीं. लेकिन अगर मैंने उसको राइट पर्सपेक्टिव में नहीं लिया, अब ये रिलेशनशिप है अ जूनियर एंड अ सीनियर लेट्स से, एंड घर में एक फादर एंड अ चाइल्ड. ओके, अगर एक बच्चा घर में समझ सकता है कि मे भी मेरे पापा किसी बात से परेशान है, तो शायद इसलिए उन्होंने मेरी चीज को अप्रिशिएट नहीं किया, और उसके मन में कंपैशन है, गुस्सा नहीं आएगा कि पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, क्यों वो परेशान है, कोई बात नहीं मैं कल डिस्कस कर लूंगा. Why can a junior not think the same thing about his senior? कि maybe he is upset about something. वो किसी और conflict में है. क्या बात है जो उन्होंने recognize ही नहीं किया मैंने ये किया. क्या होगा उससे? Immediately आपके यहाँ से एक positive vibration जाएगी. अभी क्या था? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों नहीं किया? जान के चीज नहीं किया ये. हाँ, मुझे आगे नहीं. क्या गया?
1: खुद डर गए हैं. सबसे इनसिक्योर. हाँ, खुद इनसिक्योर है क्योंकि मैं ज्यादा हूँ. तो हो सकता है आप ज्यादा.
0: दो एस्पेक्ट हो सकते हैं. हो सकता है कि सच में ये रीजन हो इफ यू फील लाइक दैट. लेकिन ऑफकोर्स ये जजमेंट हमें एक या दो बार में कभी भी किसी के लिए पास नहीं करने चाहिए. मेजोरिटी टाइम्स आज वर्तमान समय लोग बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में अंदर ही है. कई बार तो वो अपने घर की किसी प्रॉब्लम से डिस्टर्ब्ड है. वो बैठे हुए हैं ऑफिस में लेकिन उनकी वो घर की प्रॉब्लम, कई बार उनकी तबियत, कुछ भी, सो मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर कि वो सब चीजें उनके माइंड पर है. और उस समय उनका मूड ही नहीं होता अप्रिशिएट, क्योंकि आपको कोई चीज उस समय बहुत ज्यादा अच्छी लगती नहीं है. आपका अपना कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा है. तो पहले तो आप वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें. फिर अगर आपके अंदर करेज है, कॉन्फिडेंस है, तो आप जाकर बात कर सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया इस तरह से, आपको कैसा लगा? डू यू थिंक इट वॉज ओके? आप मेरे बड़े हैं, यू कैन गिव मी ऑल वॉट यू फील कि इसमें क्या क्या रॉन्ग था. वेन विल आई डू दिस? इफ आई वॉन्ट टू मेक द रिलेशनशिप वर्क, इफ आई वॉन्ट टू, नॉट आई हैव टू. लेकिन क्योंकि हम वो सब नहीं करना चाहते, हम बस चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके अगेंस्ट सोचना शुरू कर देते हैं कि इनको तो चाहिए ही नहीं था, ये तो करेंगे ही नहीं अप्रिशिएट. तो उससे क्या होगा? हमारा डायलॉग नहीं होता, हम और ही विदड्रॉ हो जाते हैं. अब अगर कई बार ऐसा हो गया है, मेनी मेनी मेनी मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, एंड आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया कि देयर इज सम स्ट्रेटजी या इनसिक्योरिटी, अब क्या कर सकते हैं? नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू स्टिल हैव टू कीप डूइंग योर वर्क. व्हाट इज द चॉइस? क्योंकि आपकी विशेषता है. अब हमें ये समझना पड़ेगा कि दूसरे का इनसिक्योर होना हमारे प्रति, ये हमारी गलती नहीं है, ये उनकी अपनी कमजोरी है. और अगर सामने वाला व्यक्ति कमजोर है तो फिर मुझे रहम करना पड़ेगा उस पर. आई विल हैव टू सिंपथाइज रादर देन गेटिंग एंग्री, क्योंकि उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो है और वो इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डर रहे हैं. तो फिर मुझे क्या होना चाहिए?
1: क्योंकि मैं डिप्रेस्ड होता जा रहा हूँ ना, क्योंकि
0: अगर मैं डिप्रेस्ड हो गया तो मेरी अपनी विशेषता वो खत्म हो जाएगी. आई हैव टू रियली रियली टेक केयर. सी, दिस इज वॉट इट इज. वॉट इज हैपनिंग कि ये नेगेटिविटी मेरे ऊपर ओवर पावर हो रही है. ये तो सारा दिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा? वो चाहते थे कि मेरा काम खराब हो जाए. इफ वी फील कि वो चाहते थे मेरा काम खराब हो जाए, एंड दे सक्सीडेड. क्योंकि मेरा मूड ऑफ होता गया, होता गया, होता गया, मैं डिप्रेस्ड होता गया, तो मेरा काम से माइंड हट गया और मेरा मन इन्हीं बातों में चल गया कि ये ऐसे क्यों, वैसे क्यों. तो वो जो क्रिएटिविटी मेरे काम में थी, जिसकी वजह से वो इनसिक्योरिटी थी, अब वो क्रिएटिविटी खत्म हो गई, एंड नाउ ही सिक्योर. अब वो सिक्योर हो गए कि हाँ, इनकी जो विशेषता थी वो खत्म हो गई. तो आई लेट हिम विन ओवर, आई लेट हिम ओवर पावर मी, एंड देन आई से उनकी वजह से मैं नीचे गया या उनकी वजह से मैं ऊपर नहीं गया. किसी की वजह से नहीं, मैंने होने दिया ऐसा. आई गेव इन, आई यू नो, आई गेव इन टू दैट पावर. दूसरे ने कोशिश की, मे बी इंटेंशनली अनइंटेंशनली, दूसरे ने कोशिश की मुझे क्रिएटिविटी से हटाने की या मेरी विशेषता को खत्म. मैंने वो होने दिया. अगर मैं चाहता प्रोटेक्शन, वो करते रहेंगे अपना इनसिक्योरिटी में. मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी मोटिवेशन की वेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आई हैव एक्सेप्ट.

0: कि वो मोटिवेट करने वाले नहीं है. तो अब मुझे मोटिवेट कौन करेगा?
1: मैं खुद.
0: हर चीज इज गोइंग टू कम बैक टू माई सेल्फ. सेल्फ मोटिवेशन. व्हेन विल आई बी एबल टू डू दैट? जब मेरे को ये समझ में आ जाए आई एम नॉट वर्किंग फॉर हिम, आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ. ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा बनना, ये किसी और को अच्छे लगे या नहीं अच्छे लगे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. एम आई हैप्पी विद इट?
1: लेकिन इससे मेरे जो ग्रोथ के जो रास्ते थे वो बंद हो गए.
0: ग्रोथ के रास्ते कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप अपनी पावर को मेंटेन करेंगे, किसी को वो अथॉरिटी नहीं देंगे आपकी एनर्जी को डिप्लीट करने की, तो जहां पावर है, एनर्जी है, वहां ग्रोथ है. जहां पावर ही खत्म हो जाती है तब ग्रोथ फिनिश हो जाती है, आप रुक जाते हैं या फिर पीछे जाना शुरू कर देते हैं. आप एज लॉन्ग एज अपनी पावर को मेंटेन करते हैं, अपनी मोटिवेशन को मेंटेन, आप करते जाएंगे, इन द प्रोसेस आप नया सीखते जाएंगे. एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे लोग उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, वो एक व्यक्ति करे या नहीं करे. एंड फिर भी इफ आई वॉन्ट टू लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, विच विल नॉट हैपन, बट इफ आई लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, देन मे बी नॉट हियर, मे बी इन सम अदर जॉब, लेकिन माई होल प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग दैट, लर्निंग, वर्किंग हार्ड, गोइंग ऑन, वो अगली जगह पर यूज हो जाएगा. लेकिन वो कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता. ट्रूथ डज नॉट हैव टू बी जस्टिफाइड, ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ. तो उसको गिव अप नहीं करे. इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि जो सच की नाव है, परमात्मा हमेशा कहते हैं सच में चलने में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आता है, तो कहते सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं. लेकिन जब वो हिलती डुलती है तो थोड़ा सा डरना नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस रखना कि ये डूबेगी नहीं. सत्यता को प्रत्यक्ष करना नहीं पड़ता कि मुझे प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, मैं कितना अच्छा. सत्यता स्वयं प्रत्यक्ष हो जाती है. सो जस्ट लिटिल पेशेंस, गो ऑन ग्रोइंग इनसाइड एंड वर्किंग हार्ड.
1: वंडरफुल. आई थिंक इट गिव्स अ रियल न्यू डायमेंशन. शिवानी, अभी तो वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, जो आज वर्क कल्चर की बात करते हैं, तो मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली इज नीडेड देयर. हम ये सोच रहे थे कि घर तक सही है, लेकिन काम में मेरा ही क्यों आए. लेकिन अगर काम भी अब घर या एक परिवार बन गया है, तो वहां ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए मेडिटेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है. किस तरह से किया जाना चाहिए, यहाँ किस तरह से ग्रुप एनर्जी जो है वो पूरे माहौल को बेहतर कर सकती है, इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे अपनी अगली कड़ी में. अब इजाजत लेते हैं. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: एक परिवार से निकलकर अगर हम दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं, अगर ऑफिस का जो कल्चर है उसे भी हम अपने हिसाब से ये मान लें कि वो मेरा एक परिवार है, तो शायद कहीं ना कहीं मुश्किल इतनी नहीं लगेगी. जो सारे आपके सामने अड़चने आ रही हैं, उन्हें भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आप हथियार नहीं डाल देंगे और ये नहीं मान लेंगे कि जहां एक प्रॉब्लम आई आई चेंज, बिकॉज दैट्स वेयर योर डेस्टिनी इज. अगर आपने ऑफिस ज्वाइन किया है तो उसको पूरा वक्त देने की कोशिश कीजिए और पूरा एनर्जी देने की कोशिश कीजिए, एक पूरी पॉजिटिविटी के साथ. कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 09999933555, 09999933666, 0987366655, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. वक्त बदला है और आज जब हम एक परिवार से निकलकर दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं, तो वहां मेडिटेशन कितनी जरूरी हो जाती है और कितना स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट वहां पर भी होना जरूरी हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे और किस तरह के प्रॉब्लम्स ऑफिस में हम और आप फेस करते हैं, कैसे उनसे निकल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे अगली कड़ी में. अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा यू नो ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है, और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज़।

0: 102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली भोरी भोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी भोली पहली हरी बोली।

0: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच. हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर
1: करायचं.
0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
2: लकडी की काठी, काठी पे घोडा.
0: मनात पीठ वाजल्या की शरीर अपोआप फिरकतं. त्याचसोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
1: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: नमस्कार, आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी में. एक महत्वपूर्ण बात इस पूरे सफर में जो हमें समझ में आई है वो ये कि सबसे पहला कदम अपनी इस तलाश में जो हमें उठाना है वो ये कि खुद को स्वीकारना है. दूसरे हमें स्वीकारे या ना स्वीकारे, सबसे पहली जरूरत है कि हम जैसे हैं, जहां पे भी हैं, जिस पल में हैं, खुद को स्वीकार ले. जहां हमने खुद को स्वीकार लिया वही हमारी ये जर्नी, हमारा ये सफर शुरू हो जाता है. फिर कई तरीके अपना के हम इस खूबसूरत सफर में उस मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं. अब आगे बात थोड़ी सी करते हैं और ये देखते हैं कि हम दूसरों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे या दूसरे अगर हमें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते तब किस तरह की मुश्किलें आती हैं. और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वेल नोन साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल. अ वेरी वार्म वेलकम सर.
5: नमस्कार.
4: नमस्कार. और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी. आपका स्वागत.
6: ओम शांति.
4: ओम शांति. डॉक्टर पटेल, हमने बात तो की थी कि खुद को स्वीकारना कितना जरूरी है, और क्योंकि बिना किसी क्वेश्चन के जैसे हम हैं वैसे हम अपने आप को खुद ही स्वीकारें.
5: देन विल चेंज. लाइक आवर पॉइंट वाज कि हम अपने आप को स्वीकारेंगे तो फिर परिवर्तन पॉसिबल है.
4: हाँ, लेकिन पहली बात, पहला पड़ाव ये था कि हम खुद को बस जैसे हम हैं वो सही हैं. उसके बाद फिर अपने ऊपर वो जो जर्नी थी वो शुरू हो जाएगी. आगे अब पढ़ते हैं थोड़ा सा और दूसरों की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा समाज, हमारा जो पूरा परिवार है, हमारा एनवायरमेंट जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है. सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि दूसरों को हम स्वीकारें, क्योंकि ज्यादातर देखते ये है कि हम ये चाहते हैं कि वो अच्छा तो है लेकिन अगर वो ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा होता, अगर वो ये कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता. तो दूसरों को हम चेंज क्यों करना चाहते हैं?
5: चेंज यदि करना चाहते हो गलत है एक रीति से देखना चाहे तो. भले व्यक्ति को चेंज होने की आवश्यकता है वह दूसरा क्वेश्चन है, परंतु जो हम उनका पीछा करते हैं कि जब तक आप चेंज नहीं होंगे हम आपको प्यार नहीं देंगे, जब तक आप चेंज नहीं होंगे हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना, जब तक आप में

0: या नहीं आएगा, आई विल नॉट स्माइल एट यू. नहीं, पेरेंट्स
1: इमोशनली दूसरों के साथ
2: ब्लैकमेल करते हैं,
0: इमोशनल ब्लैकमेलिंग एक प्रकार से.
2: नहीं, बट कहाँ तक सही है दूसरों को, हमें क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मे बी वी हैव बीन कंडीशन लाइक दिस कि दूसरों में हमेशा हमें गलतियां नजर आती हैं, आ ही जाती हैं. हम मुझे आप सब कुछ अच्छे लग रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरा मन ये कहे कि नहीं, ये कुछ ये सही नहीं है, ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है.
0: बट वही होना चाहिए.
2: हाँ, वो कैसे?
0: हाँ, वो दूसरी बात है, भी क्यों होना चाहिए. पहली बात तो यह है कि भी क्यों हो, क्योंकि आप अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत तो बड़ी बात है कि आपकी जो वेवलेंथ है, ट्यूनिंग, हमने पहले भी ट्यूनिंग की बात की है, वो आपका ट्यूनिंग बहुत ही अच्छा हो सकता है.
2: ऑरा की जो हमने बात की,
0: ऑरा की बात, या तो कहे कि भी विचारों की वेवलेंथ भी एक दूसरे के साथ मिलती हो, वो ट्यूनिंग आपका अच्छा हो सकता है. दूसरा कि जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपको सहयोग भी देगा. जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सामने वाला व्यक्ति सहयोग भी नहीं देगा. और अब रही बात चेंज की, तो वो चेंज भी तब ही पॉसिबल है
2: जब हम पहले एक्सेप्ट
0: करते हैं, और फिर वो आपकी बात को सुनेगा. उसको रियलाइजेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि चेंज इजी नहीं है. एक तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे चेंज की जरूरत है. दूसरी बात, अभी एक्सेप्ट करने के बाद भी मेरे में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए
2: कि मैं वो चेंज.
0: हाँ, तो वो सब करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट.
2: यस सिस्टर शिवानी, मैं आपको कह तो देती हूँ कि आप जैसे हैं मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मतलब क्योंकि वो सही तरीका है, कर रही हूँ. अपने आप को भी मैं बोल रही हूँ कि हाँ, वो जैसे हैं मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ कहीं ना कहीं. हाउ टू एक्चुअली गेट इन टू दैट रियल सेंस कि मैं रियली उसे एक्सेप्ट कर लू, कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप जैसी हैं वैसी ठीक हैं. वो हो नहीं, मतलब मैं कितना भी कह लूं कि आप जैसे हैं ओके, मुझे आपने कहा कि मुझे करना चाहिए तो मैं ठीक है जैसे हैं ओके. लेकिन इंटरनल जर्नी, व्हेन विल आई रियलाइज इट, यस आई हैव एक्सेप्टेड इट द वे यू आर,
1: द क्वेश्चंस विल स्टॉप. ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अगर ऐसा ना करते ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा होता, या ऐसा ना बोलते ऐसा बोलते तो ज्यादा अच्छा होता. तो वो क्वेश्चंस जब स्टॉप हो जाएंगे और वो जो जैसा कर रहे हैं वैसे ही आपको अच्छे लग रहे हैं, देन इट इज एक्सेप्टेंस.
2: देखिए, मुझे इरिटेशन होती है ना उससे,
1: सो देन देयर इज नो एक्सेप्टेंस येट. ना एक्सेप्टेंस नहीं है तो उसका थोड़े अपने ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देके शुरू में एफर्ट करना पड़ता है.
2: पर मैं कहूं कि मैं क्यों करूं,
1: इट्स जस्ट सिंप्लिसिटी फॉर योर सेल्फ, नथिंग एल्स. दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सी, इफ इट इज लाइक, अगर आप जैसे हैं वैसे मुझे पसंद नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से. मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि आपको मिलते ही, आपको देखते ही, आपसे बात करते ही मेरे मन में वो सारी चल रही है, यू नो, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करते. फिर मैं आपको फोर्सफुली चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई कैन नॉट चेंज यू. तो आई डू दिस जर्नी ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, ट्राइंग टू चेंज अदर पीपल. तो इफेक्ट इज कि आप जैसे हैं वैसे आप खुश हैं, लेकिन आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ पेन,
2: अननेसेसरी.
1: सो इट्स जस्ट कॉम्प्लिकेशन इन माई ओन लाइफ, यू नो. तो इफ आई कुड ओनली से कि आप जैसे हैं मेरे को ठीक है बिल्कुल, इट्स जस्ट सिंपल फॉर मी. सी, अवेकनिंग मीन्स एवरीथिंग सिंपल फॉर मी. उसका बेनिफिट दूसरे को ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एवरीथिंग सिंपल फॉर मी. बाकी आपने कुछ कह दिया और मैं चार दिन उस पर वो सोचती रहूं क्यों ऐसा क्यों, तो देन इट्स जस्ट कॉम्प्लिकेशन फॉर मी. तो एक्सेप्टेंस हमारे जीवन को बहुत सरल बना दे,
2: चाहे वो खुद को कर रहे हो या दूसरे
1: किसी को या परिस्थिति को.
2: डॉक्टर साहब, लेकिन इतना आसान नहीं होता है.
0: अनुप्रिया जी, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है कि ये मुश्किल जरूरी है, परंतु वह आवश्यक है.
1: दिस इज एक्चुअली, इट हैज टू बी डन,
0: एक्सेप्ट इज रियली नेसेसरी. और उसके लिए जो एक मुख्य पॉइंट कि क्यों एक्सेप्ट करे या तो कैसे करे, क्योंकि हम सभी डिफरेंट है, ये बात भी समझ में आ जाए कि भाई हमारे सर का एक बाल भी सेम नहीं है इस दुनिया में, वो यूनिक है. तो जैसे ही मैं जो हूं, सामने वाले की पर्सनालिटी में बहुत फर्क होना है, तो इसके कारण वो डिफरेंस को भी हम इंजॉय करें, एक्सेप्ट करने के बदले भी. जैसे सीरियल्स में भी जब लोग अलग अलग रोल करते हैं, उसमें स्पाइस है, ट्रेजेडी है, नहीं मारा मारी है, तब तो इंजॉयमेंट होती है, तब उसको लोग देखते हैं, नहीं तो नहीं देखते. तो ऐसे ही जीवन में भी ये होना जरूरी है,
2: सब तरह के लोग होने जरूरी,
0: जरूरी
2: ये कहते
0: है,
2: हैं. लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जैसा बिहेव कर रहा है उसकी बजाय अगर वो इस तरह से बिहेव करे या इस तरह का हो जाए तो उन्हीं के लिए बेहतर हो जाएगा, क्या तब भी मुझे उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए?
0: नहीं, वो ठीक है, वहां आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो पहले एक्सेप्ट करो।
2: हाँ,
0: फर्स्ट यू एक्सेप्ट, गिव देम अ कम्फर्टेबल फीलिंग, जैसे हमारे बच्चे ही है, उनको हम एक कम्फर्टेबल फीलिंग करें कि वी विल गिव यू अनकंडीशनल लव, नो वी विल एक्सेप्ट यू एज यू आर, और फिर उनको अगर एक बार जब वो स्टेट ऑफ माइंड में हो, क्योंकि चेंज कब आता है, बार बार टोकने से चेंज नहीं आता है, उल्टा उससे तो रेजिस्टेंस डेवलप होता है।
2: लेकिन क्या सिस्टर शिवानी मुझे ये पता चल पाएगा कि मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया है उसके बाद मैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं बिना उन्हें एक्सेप्ट किए ही चेंज कर रही हूँ? क्योंकि दिस इज अगेन अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन।
1: एक्चुअली जो भाई साहब ने कहा ना कि चेंज को लाने के लिए एक शक्ति की जरूरत है, पावर के बिना चेंज नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कम्स, यू नीड पावर। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं हो जाऊं चेंज, वेरी डिफिकल्ट, हमारे खुद के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, तो वैसे ही दूसरे के लिए भी डिफिकल्ट है। आज देखो एक एक आदत छोड़ना या चेंज करना कितना चैलेंजिंग हो जाता है, तो वो पावर कौन सी होगी? कौन सी पावर वो है जो आपको इंस्पायर कर देगी चेंज होने के लिए? दैट विल बी द पावर ऑफ लव। यू नो वो एक पावर जब मिल जाती है ना हमें किसी से, यू नीड एनर्जी टू चेंज, तो दैट शुड बी पॉजिटिव एनर्जी। अभी हम जो एनर्जी भेजते हैं वो क्रिटिसिज्म वाली एनर्जी होती है, यू नो एनर्जी तो हम भेज रहे हैं, अपनी तरफ से ठीक ही बोल रहे हैं, तुम तो हो ही ऐसे, वी थिंक ये मोटिवेट कर देगा दूसरे को, तुम्हारा भाई देखो कितना अच्छा कर रहा है, कंपैरिजन, ये सारी जो नेगेटिव वेज हम यूज कर लेते हैं जिससे दूसरा इंस्पायर हो जाएगा चेंज होने के लिए, दैट्स वेरी टेम्पररी। अगर हम किसी को सही मायने में करना भी चाहते हैं इंस्पायर, तो वी नीड टू सेंड पॉजिटिव एनर्जी, नॉट नेगेटिव एनर्जी। तो क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, ये सब नेगेटिव एनर्जी है जिससे वो और भी, मतलब जिसको हम कहते हैं जिद्दी होते जाते हैं, स्टबर्न होते जाते हैं अगर उन्हें अपनी बात राइट लग रही है। तो पहले वी हैव टू सेंड लॉट ऑफ लव,
2: बट देन व्हेन
1: लव कम्स विद एक्सेप्टेंस, सी दैट्स वेयर द कनेक्टिविटी इज गोइंग। आई विल बी एबल टू लव यू ओनली इफ आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, you know, and that's like what a mother does for a child. एक माँ के लिए कहते हैं ना कि उसका बच्चा चोर भी होगा तो भी वो कहेगी नहीं मेरा बच्चा बहुत प्यारा, यू नो दैट्स द काइंड ऑफ लव शी हैज फॉर द
2: चाइल्ड। तो हम दुनिया के लिए उस लेवल तक पहुँच सकते हैं, हम अपने दोस्तों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए अगर हम बात करें।
1: बिल्कुल, तो जब हम वो एक्सेप्टेंस कर लेंगे ना कि वो जैसे है, अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप चेंज होते हैं तो मेरा व्यवहार चेंज हो जाता है, थोड़ा सा आपने मेरे कहे अनुसार बात नहीं की तो मैं अपना मुंह बना लूं, या मैं अपना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, थोड़ा सा आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। यू नो इट नॉर्मली हैपन्स बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, क्योंकि एक लंबी जर्नी है और जब शायद आप मिले थे जब आप 20-22 की एज में थे तब थिंकिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट था, आप 30-35-40 की एज में जाते हैं हो सकता है दोनों में से एक का इवॉल्वमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, एंड देन वी से बट यू नो जिससे मैंने प्यार किया था वो ये नहीं था, यू नो पीपल talk like that, that person has changed, so that means ke ab jaisa wala then I don't like, so then that is not acceptance, so then the person says aap waise wale ban jao jisse maine shaadi ki thi, so these are, then that was not really,
2: wo kahan chala gaya jisse tere pyar kiya tha,
1: these all these words, ya jaise parents bachchon ko kehne lag jate hain kai bar, kyunki jab tak wo chote the their life was around the parents, lekin bade hone ke baad you know the son is with the wife, so the mother will say wo mera beta wo wala kahan gaya, you know we looking for that same, we don't actually, we don't want people to change. It's a very paradoxical thing. हम change भी करना चाहते हैं उनको हर टाइम, लेकिन अपने अनुसार। अगर वो चेंज हो गए किसी और अपने लाइकिंग अनुसार, we don't like the change.
2: And we don't even understand that anything which is constant in life is change.
1: It has to change. तो हम उनको अगर हम कहते हैं I like you, I really love you because this relationship is like that, then आप जैसे भी होंगे, आज आप ऐसे हैं कल आप किसी और तरह होंगे, I still really like you. तो then that positive energy वो ट्रांसमिट होती है, और ये बोलने की बातें नहीं होती है, यू डोंट हैव टू कीप सेइंग दिस टू समबडी, उसको ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिलेगी, और वो पॉजिटिव एनर्जी जब आपसे मिलेगी और फिर अगर आप यू नो उसको कहते हैं कि ये चीज करके देख लो, यू नो हम जो फाउंडर हैं ब्रह्मा कुमारीज के, दैट्स हाउ इट हैपेंड, कि जब ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई और जैसे एक एक भाई बहने आते गए, हर एक अलग अलग परिवार से, अलग अलग संस्कार, अलग अलग बैकग्राउंड, कमजोरियां, और विशेषताएं सब कुछ, लेकिन जो फाउंडर है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उन्होंने क्या किया, ही जस्ट लव्ड एवरीबॉडी एंड व्हेनेवर ही यूज्ड टू मीट अ चाइल्ड

0: वो पहले उनकी विशेषताओं को पहले उस बच्चे को सुनाते थे, यू नो नॉट फ्लैटरी, लेकिन जो सही मायने में उसकी विशेषता है, आपके अंदर ये है ये है ये है, और वो आत्मा बिल्कुल एक यू नो एम्पावर हो जाती थी, बिकॉज इट वॉज ऑल्सो विद वाइब्रेशन, इट वॉज नॉट विद वर्ड्स. एंड फिर वो सब कुछ कहकर ब्रह्मा बाबा कहते थे, बच्चे अगर इस सब के साथ तुम ये एक बात भी कर दो ना और साथ में, तो देखो कहां से कहां पहुंच जाओगे. एंड दैट पर्सन जस्ट वांटेड टू डू इट,
1: क्योंकि कहा जाए कन्विक्शन के साथ.
0: एंड फॉर द बेटरमेंट, यू नो चेंज में भी दो चीजें हैं, एक है आई वांट यू टू चेंज बिकॉज इट्स गुड फॉर यू, एंड एक है आई वांट यू टू चेंज बिकॉज आई लाइक इट दैट वे. दो चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है.
1: बिल्कुल.
0: आई वांट यू टू चेंज बिकॉज मेरी लाइफ ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी इफ यू चेंज लाइक दैट. तो ये सारी जो कंडीशनल्स आ जाती है बीच में, तो दूसरा व्यक्ति फिर चेंज
1: अगेन वी नीड टू चेक आवरसेल्फ्स.
2: एक्चुअली एक बात एक जरूरी ये है कि भल हम बार बार ना कहे, वो शिवानी बेन ने बहुत अच्छा कहा कि भी रोज रोज कहने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट, परंतु आवश्यकता है कि हम उनको अप्रिशिएट तो करते ही.
0: हाँ, जो उनकी पॉजिटिविटी,
2: हाँ, डेली भी आप कुछ कुछ बातें अप्रिशिएट करो, छोटी सी भी आपने अच्छा ड्रेस पहने अप्रिशिएट करो, ये नहीं कि वे तो हमेशा ऐसे ही चलता रहता है,
1: क्योंकि वो भूल जाते हैं.
0: मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान ये रखना कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए.
2: कुछ चीजें याद भी रखो, जैसे बर्थडे है उसको याद रखो, कई बार तो याद दिलाया होता है तो भी उस दिन भूल जाते हैं.
1: बिल्कुल. ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये हमें एक्चुअली हम सोचते हैं कि हमने उन्हें पता ही है, लेकिन कहते रहना बार बार कन्विक्शन के साथ बहुत जरूरी होता है. डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एक्सेप्टेंस जो है वो होनी ही नहीं चाहिए, इट इज नेसेसरी. आपने कहा कि आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा शायद. क्यों आवश्यक है इतना ज्यादा?
2: इसलिए एक्सेप्टेंस आवश्यक है कि भी तब ही हम साथ में मिलके, क्योंकि एक टीम है. आज टीम स्पिरिट की बहुत बड़ी बात है, न केवल कंपनीज में परंतु फैमिली भी एक टीम है. तो फैमिली जो एक टीम है, वो भी अच्छे से आपको अगर अपने परिवार को चलाना है तो वो टीम स्पिरिट होनी चाहिए. वह तब ही होगी कि जब एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे. एक बहुत अच्छा उसका अर्थ है कि भी फैमिली का अर्थ क्या है, है ना. फैमिली का स्पेलिंग अगर आप देखो तो फैमिली का अर्थ है ना, फादर एंड मदर आई लव यू. तो बस यह बात है, तब आएगी कि जब एक्सेप्टेंस है. अगर बच्चों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो कभी भी ऐसा नहीं कर.
1: आई लव यू, ये आई थिंक सबसे ज्यादा कहा जाने वाले तीन शब्द हैं,
0: लेकिन नॉट अंडरस्टूड.
1: बिल्कुल. मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड्स जो है वो, बिकॉज सही तरह से अगर देखें हम तो एक्सेप्टेंस. अच्छा, दूसरों को एक्सेप्ट ना करने में कि दूसरों को ये कहे कि हमारी तरह से चेंज क्यों नहीं होते, कहीं ना कहीं हमारी ईगो भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है, काफी उसमें सामने आती है. हाउ डू वी रियली डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर ईगो एंड सेल्फ एस्टीम, यू नो, क्योंकि कितनी बार हम ये बात करते आ रहे हैं कि ईगो और सेल्फ एस्टीम, मतलब मैंने तो ये इसमें मेरी ईगो नहीं थी, ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, सेल्फ एस्टीम थी, इस कारण मैंने ऐसे किया, इस कारण मैं ये चाहता था या मैं चाहती थी, लेकिन समवेयर वो ईगो का एक एस्पेक्ट होती है.
2: बहुत सारे डिफरेंस है वास्तव में, इट इज पोल्स अपोजिट, पर लगता है सिमिलर, लेकिन उसमें आसमान जमीन का फर्क है. जैसे कि ईगो जो है वो हमें ऑलवेज एक्सटर्नल ले जाएगा, नहीं बाह्य बातों में ले जाएगा. सेल्फ एस्टीम आपको इंटरनलाइज करेगी वास्तव में, है ना. ईगो को बार बार प्रूव करना पड़ेगा कि भी मैं राइट हूं, मैं राइट हूं, है ना. सेल्फ एस्टीम को यह प्रूव करने की जरूरत नहीं, इसलिए ईगो वाला औरों को कहेगा कि देखो मैंने अच्छा किया. कुछ न कुछ ऐसी युक्तियां ढूंढेगा कि लोगों को ये कन्विंस हो कि भाई ये जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, ये बहुत बड़ा व्यक्ति है. परंतु सोमान वाला व्यक्ति जो है वो इंटरनल उसका डायलॉग होगा, वो अपने आप को कन्विंस करेगा कि मैं अच्छा हूं. जैसे सूर्य को ये कहना नहीं पड़ता है कि सूर्य तुम बहुत अच्छे हो, वो अच्छा ही है. तो ऐसे ही सेल्फ एस्टीम वाला जो है उसका वो इंटरनल डायलॉग है, और वो ईगो से बाहर आना ही पड़ेगा. मैं कई बार सोचता हूं कि अगर आध्यात्मिक दुनिया में हर व्यक्ति थोड़ा तो पुरुषार्थ करता ही है, आप आध्यात्मिक जगत में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं जब तक ईगो को ब्रेक नहीं करें.
1: मुझे आप कह रहे हैं कि वो जो शेल है वो ब्रेक होना
2: बिल्कुल. हाँ, पंछी को अगर मुक्त होना है तो अंडे को तोड़ना ही पड़ेगा, जब तक नहीं टूटेगा वह मुक्त दुनिया में नहीं आएगा.
1: तो वो जो ईगो का शेल हमने है, जो वो शेल है, उसको ब्रेक करना होगा. इतना आसान है, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते. मैं तो मानती हूँ कि मेरी ईगो ही नहीं है, तो मेरी सेल्फ एस्टीम है.

0: कई बार ये भी देखा गया है कि कहते हैं कि जो ईगो है वो बहुत जो ज्यादा बोल रहे होते हैं, ज्यादा लाउड होते हैं वो लोग होते हैं, और जो बड़े शांत होकर बैठे हैं, जो अपने गरिमा में बैठे हैं, उनमें ईगो नहीं होती है. बट समवेयर डीप दे ऑल्सो आर प्रिटी ईगो.
1: दैट कैन बी अ स्मॉल साइन कि जो बार बार बाहर बोलता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी.
0: ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि ये
1: साइलेंट वाला व्यक्ति वो सेल्फ एस्टीम वाला हो सकता है. साइलेंट वाला ईगो
2: कि वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग भी बहुत साइलेंट बैठते हैं. मतलब वो एक ग्रुप में बैठे हैं तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ही नहीं है इंटरेक्ट करने में.
1: लेकिन वो डिफरेंशिएशन ये है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सेल्फ एस्टीम का, कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला अकेला रहेगा बट वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसके चेहरे से भी पता चलेगा कि वो खुश नहीं है.
0: लेकिन सुपीरियरिटी वाला भी कई बार होता है कि ओहो अच्छा चलिए आप बातचीत कीजिए, मैं तो सुन रहा हूँ कि क्या बात कर रहे हैं आप. अगेन दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग एन ईगोइस्ट एक्चुअली.
1: यह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज ईगोइस्ट.
0: हाउ डू आई एक्चुअली रियलाइज यू नो कि मैं जो मैं बिहेव कर रही हूँ या जो भी मैं एक चीज कर रही हूँ वो ईगो है या सेल्फ एस्टीम. हाउ डू एक्चुअली आई कम टू नो अबाउट इट, बिकॉज पता ही नहीं चल पाता कई बार तो, कि कई बिहेवियर्स ऐसे हैं जिसमें मानती हूँ कि वो सेल्फ एस्टीम है. मैंने तो इसलिए कहा था, इसलिए किया क्योंकि वो मेरी मुझे लगा कि सेल्फ एस्टीम का एक रूप है, लेकिन वो अल्टीमेटली अगर हम उसमें जाएं तो वो ईगो निकलती है.
2: कोई भी नेगेटिव बिहेवियर जैसे रिफ्यूजिंग, क्रिटिसाइजिंग, जस्टिफाइंग, बॉसिंग, कम्पीटिंग, ये जितने भी नेगेटिव बिहेवियर्स हैं जिनको हम सेल्फ रिस्पेक्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट एक पॉजिटिव फीलिंग है. ईगो एक नेगेटिव फीलिंग है, यू नो इट जनरेट्स अ डिस्टर्बेंस. नेगेटिव और पॉजिटिव से वही है, पॉजिटिव स्टेबल है, नेगेटिव एनर्जी डिस्टर्बेंस है. तो जहां भी एक एनर्जी डिस्टर्बेंस है तो वो जितने भी बिहेवियर्स हैं जो मेरे में या जिनके प्रति वो टारगेट किए गए हैं, यू नो समटाइम्स आई कैन से यस आई एम स्टेबल बट आई एम शाउटिंग एट समबडी, पर दूसरे पर क्या असर पड़ रहा है? तो आप पे वही असर पड़ेगा जिस क्वालिटी ऑफ एनर्जी. इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आई एम सेंडिंग यू पॉजिटिव एनर्जी बट यू आर फीलिंग नेगेटिव. ये कैसे होगा? आप वो ही फील करेंगे जो मैं आपको भेज रही हूँ. तो अगर आप यू नो इफ आई से कि नहीं मैं बिल्कुल ईगो में नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं है, ये तो बिल्कुल राइट था, तो दूसरे को वही फीलिंग आनी चाहिए.
0: अगर वो नहीं आ रही है,
2: अगर दूसरा हर्ट हो रहा है, दूसरा अपसेट हो रहा है या कुछ, देन आई हैव सेंट दैट एनर्जी. यू नो इट्स ओके, इट्स नॉट दैट. हो सकता है दूसरे का भी परसेप्शन, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि इफ आई सेंट पॉजिटिव एनर्जी यू विल टेक इट नेगेटिवली. एंड ऐसा हो नहीं सकता कि आई सेंड यू नेगेटिव एनर्जी एंड ऑफकोर्स नाउ दैट डिपेंड्स इफ यू टेक द पावर टू कन्वर्ट दैट एनर्जी देन इट्स एलिवेटेड. आई एम टॉकिंग ऑफ टू नॉर्मल पीपल. इफ आई सेंड यू पॉजिटिव यू विल गेट पॉजिटिव, इफ आई सेंड यू नेगेटिव you'll get negative. तो वो ऑटोमेटिकली पता चल सकता
1: है. डिमांडिंग, इसके द्वारा पता चल सकता है कि those who are very much demanding तो ईगो है. सेल्फ रिस्पेक्ट वाला वो डिमांडिंग नहीं है.
0: अच्छा, यहाँ एक स्टूडेंट टीचर और पिता और बच्चे के माँ बाप और बच्चे की बात भी आती है कि जब स्टूडेंट जो एक टीचर है डिमांड की बात करे, वो उम्मीद करता है कि स्टूडेंट मुझसे ढंग से ही बात, मुझे वो रिस्पेक्ट देगा वो, क्योंकि मैं स्टूडेंट बिकॉज ऑफ माय स्टेटस. क्या ये उसकी ईगो है या उन्हें वो यू नो लाइक ही शुड बी लाइक दिस, कि वो अपने आप उन्हें यू नो एक्सपेक्ट ना करनी पड़े. स्टूडेंट शुड बी रिस्पेक्टिंग,
1: दैट इज द राइट. आपने सही उत्तर भी दिया.
0: नहीं, पर यहाँ कंफ्यूजन रहता है. वो टीचर कंटिन्यूसली सोचता है कि उसको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. पेरेंट्स भी कहते हैं कि उसको मेरी बात माननी चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए.
1: नो, दैट इज ईगो. इनफैक्ट नो, यू बिहेव इन सच अ वे, आप अपनी वैल्यूज को इतनी अच्छी बनाओ और जो आपका व्यवहार है ऐसा अच्छा हो कि ऑटोमेटिक वो रिस्पेक्ट करे आपको. डिमांड नहीं करनी पड़ेगी, एक्सपेक्ट नहीं करना पड़ेगा.
2: रिस्पेक्ट रोल के लिए नहीं होने चाहिए.
0: कि मैं क्या हूँ.
2: रिस्पेक्ट इज फॉर द सोल, दैट्स व्हाट वी से. रिस्पेक्ट रोल के लिए नहीं, इट्स फॉर द सोल. दैट मीन इट्स फॉर द पर्सन दैट यू आर. इट्स नॉट नेसेसरी जस्ट फॉर, क्योंकि अगर वो जो हम बाह्य रोल के लिए देते हैं उसको हम रिगार्ड कहते हैं. दैट्स व्हाई देयर टू डिफरेंट वर्ड्स, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट. रिगार्ड है कि कोई बड़ा अंदर आता है तो हम कुर्सी से उठते हैं, उनको जगह देते हैं, ये रिगार्ड है. एंड इट्स ऑलवेज आउटर, आउटर वर्ल्ड में. लेकिन जो रिस्पेक्ट है वो अंदर से, यू नो इट, वो अंदर से निकलेगी आपके.
0: तो वो अंदर से वो बच्चे के लिए भी हो सकता है.
2: हाँ, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि रिस्पेक्ट एक बच्चा पेरेंट को करेगा, रिस्पेक्ट एक पेरेंट को भी बच्चे के लिए करनी है. रिस्पेक्ट एक टीचर को भी स्टूडेंट के लिए करनी है.

0: क्योंकि रिस्पेक्ट इज एनर्जी विच इज फ्लोइंग फ्रॉम अ सोल टू अ सोल इरिस्पेक्टिव ऑफ रोल एज एनी बैरियर. क्योंकि बच्चा सिर्फ शारीरिक रूप से वो बच्चा है लेकिन आत्मा तो वही है, एनर्जी वही है एंड आई रिस्पेक्ट दैट एनर्जी. तो वो रिस्पेक्ट फिर आंतरिक एक दूसरे के लिए, दैट्स पॉजिटिव. अगेन इट्स एक्सेप्टेंस, इट्स अगेन इट्स इंटरकनेक्टेड. इफ आई एक्सेप्ट यू आई रिस्पेक्ट यू.
1: उनके नजदीक एक भाई था जो सारी ये हमारी जो संस्था है उसमें काफी ही एड प्रीडोमिनेंट रोल. तो एक बार उन्होंने बहुत गुस्सा किया, कई बातें दादी को सुनाई, जब उन्होंने शांति से सुना तब रिएक्ट नहीं हुए पीसफुली. और फिर थोड़ी देर हुई तो तुरंत कहा कि भी वो भाई को खाने पे बुलाओ ना, मेरे साथ बैठ करके हम भोजन करेंगे. तो देखिए यह बात है, वो भाई खुद सुनाते हैं कि भी यह इवेंट हुई जीवन भर में दादी को रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वह महानता की निशानी है. कि मैं तो उनको सुनाया था, अगर वो नहीं भी बुलाते तो शायद मेरे मन में कोई नेगेटिव बात आने वाली नहीं थी. लेकिन यहाँ उनका स्वमान है, ईगो नहीं है कि जिसके कारण उनको रिस्पेक्ट दिया.
0: और अगेन उनकी उनकी एक्सेप्टेंस थी ना, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इट्स लाइक ओके.
1: या उस समय उनके पॉजिटिव थॉट चले होंगे साथ, उस समय जो भी 15-20 मिनट का समय होगा कि भाई कोई कारण से इन्होंने कहा मुझे भी अपने को शायद कुछ जीवन में चेंज करने के, ऐसा पॉजिटिव सोचा होगा तब उनको एक्सेप्ट.
0: और वही आपने कहा ना कि अगर आप नेगेटिव देते हैं तो जब तक सामने वाला एलिवेटेड नहीं होगा तब तक उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं. सो दैट इज फॉर दीज सोल्स हु रीच दैट लेवल कि जो एनर्जी आप भेज रहे हैं वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पाएंगे. बहुत बहुत अच्छा लगा आज हमने जो बातचीत की कि सचमुच हम कहते हैं तो बहुत आसानी से है कि मैं दुनिया से प्यार करना चाहती हूँ, मैं दुनिया को प्यार देती हूँ या मैं चाहती हूँ कि सबको प्यार किया जाए, लेकिन हम सच सही मायने में नहीं जान पाते क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. तो जितना जरूरी खुद को एक्सेप्ट करना है उतना ही जरूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना भी है. तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी बहुत बहुत शुक्रिया. खुद से प्यार हम में से हर कोई करता है. हम ये भी चाहते हैं कि हम लोगों को प्यार करें और लोग भी हमें प्यार करें. तो इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो यही कि स्वीकारें, खुद को स्वीकारें, लोगों को स्वीकारें, जैसे हैं उन्हें स्वीकार लें और फिर प्यार स्वतः ही हो जाएगा. ऐसी कई और बातें हैं जो आपके दिल में भी उठ रही होंगी. तो अगर आपके पास कोई सवाल है आपका स्वागत है. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873 666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. इसके साथ ही अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि अभी नहीं.

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: हृदय की अथाह गहराइयों में तरंगित उस निराकार निरंजन की भक्ति हमारे जीवन, मन और कर्म को देती है नेकियों की शक्ति।

आइए इस विश्व के पालनहार उस निराकार को हम अपनी भावनाओं के स्वर में साकार करें। संगीत सुमन के अभिनंदन से सुकर्मों का आधार था।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं
1: मादाम भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनने में उन्हें बड़ा आनंद आता और शहीदों के प्रति वे अगाध श्रद्धा रखा करती थीं। जैसे जैसे उन्हें अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का ज्ञान हुआ, उनके विचार क्रांतिकारी रूप धारण करने लगे। वे उन सभी गतिविधियों में भाग लेने लगीं जो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध चल रही थीं। मुंबई में प्लेग के रोगियों की सेवा करते करते वे स्वयं भी प्लेग की चपेट में आ गईं और उन्हें इलाज के लिए यूरोप जाना पड़ा। जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड आदि देशों में रहकर वे लंदन पहुंची और दादा भाई नौरोजी की सचिव के रूप में कार्य करने लगीं।

यहाँ उनका परिचय भारतीय क्रांतिकारियों से हुआ। 1907 में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मादाम कामा ने भारत की स्वाधीनता की जोरदार वकालत की और अंग्रेजों के झूठे प्रचार का पर्दाफाश किया। 1908 में इंडिया हाउस में स्वाधीनता संग्राम की अर्धशताब्दी समारोह के अवसर पर उन्होंने बहुत सा धन एकत्रित करके युद्ध पीड़ित परिवारों की सहायतार्थ भेजा था। भारत की आवाज दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए मादाम कामा ने पेरिस से वंदे मातरम नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। वे चाहती थीं कि प्रत्येक देश की महिलाएं जागृत होकर अपने देश के लिए कार्य करें। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब भारतीय फौजियों को यूरोप भेजा गया, तब बंदरगाह पहुंचकर वे सैनिक टोलियों को समझाती कि मातृभूमि को गुलाम बनाने वालों की ओर से उन्हें नहीं लड़ना चाहिए। फ्रांस सरकार को जब मादाम कामा की गतिविधियों के बारे में पता चला तो उन्हें एक पुराने किले में नजरबंद कर दिया गया। युद्ध समाप्ति के बाद जब उन्हें नजरबंदी से छोड़ा गया तो उनका स्वास्थ्य काफी गिर चुका था। जीवन के अंतिम दिनों में मादाम कामा भारत लौट आई थी, जहां 16 अगस्त 1936 को उनका निधन हो गया।

0: सुनो भाइयों सुनो, ये देखो ये क्या लिखा है, आज गजभिये काका का ढाबा बंद रहेगा।
1: लेकिन कल तो हम आए थे, काका ने कुछ बताया नहीं। भाई ये तो गलत है, अचानक बंद।
2: हाँ रात को तो मैं खाना खाने आया था, पर मुझे कुछ भी नहीं बताया।
0: सवाल ये उठता है कि हमें खाना खिलाएगा कौन? महीने का आखिरी हफ्ता, जेब नरम हो रही है सभी की।
1: आज उपवास हो जाए सामूहिक।
2: भाई मैं तो तैयार हूँ, पर पेट में दौड़ रहे ये चूहे उपवास के लिए तैयार नहीं है।
0: तो चलो किसी मंदिर या मस्जिद के सामने चलकर बैठ जाते हैं। दे दे राम दिला दे राम, देने वाला भी भगवान।
1: सुन लो प्यारो, हंसने से पेट नहीं भरेगा, जो बचा है वो भी हजम हो जाएगा, फिर वही हाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। चलो चलकर कुछ जुगाड़ करते हैं।
2: अरे गजभिये काका तो वो आ रहे हैं, देखो। पर ये उधर कहाँ जा रहे हैं? अरे काका, अरे
3: काका, ओ काका सुनो तो सही।
0: लो वो रुक गए।
3: दादा वहीं रुकना, हम लोग आपके पास आ रहे हैं।
1: राम राम काका। क्या काका, आज तो भूखा ही मार दिया, आज ढाबा क्यों बंद है?
4: अरे क्या बताऊं भैया, वो चौक वाली गली में रामदासी भाई और भगवान को प्यारी हो गई, उन्हीं के दाह कर्म से आ रहा हूँ।
2: रामदासी भाई, वो कस्तूरबा अस्पताल वाली?
4: हाँ, पूरे 100 बरस की थी वो, गरीबों और पिछड़ों के लिए जीवन दे दिया, फ्रीडम फाइटर थी वो, अंग्रेजों के जमाने में कई बार जेल गई, उनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं था, सब देश के लिए दान कर गई।
0: तब तो कोई बात नहीं, उनके लिए हम लोग आज उपवास रख सकते हैं।
4: अरे नहीं नहीं नहीं, घर चलो, आज हम सब साथ में भोजन करेंगे। चलो चलो, मुझे नहाना भी है। ये तो जीवन है और जीवन चक्र तो अपनी गति से चलता ही रहता है।
1: भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
4: सुनो जरा गर्म पानी रख दो। अच्छा एक काम करो, गरम मत करो, मैं नहा लूंगा। और ये कुछ मेहमान आए हैं, अरे नवीन जरा इन्हें बैठक में बिठाओ।
5: जी भैया।
4: आप लोग बैठिए बैठिए।
2: नमस्कार नवीन भाई।
5: नमस्कार भैया, नमस्कार।
2: आज आपको परेशान करने आए हैं हम।
5: अरे तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, बैठिए लीजिए पानी पीजिए। दरअसल बात यह है भैया जी कि हमारी भाभी तो गई है मायके, अब उनके सारे काम की जवाबदारी अब मेरी हो गई।
0: नवीन भाई क्या करते हैं आप?
5: भैया मैं स्कूल में प्राध्यापक हूँ, पर आजकल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर शोध कर रहा हूँ।

0: आइए गजबीर काका, नहाना हो गया आपका?
1: हाँ, अब जरा हल्का, कुछ हल्का लग रहा है। मैंने महाराज को बोल दिया है, अभी थोड़ी देर में भोजन तैयार हो जाएगा।
2: भैया आप पूजा पाठ निपटा लीजिए, मैं इनके साथ बैठता हूँ।
3: तो नवीन भाई, आजकल आप किस तहनाली पर काम कर रहे हैं?
2: मदाम भीकाजी कामा पर।
4: मदाम भीकाजी कामा, ये कौन थी?
2: भैया हमारे देश की एक साहसी महिला थी, जिन्होंने देश विदेश में भारत की आजादी की क्रांति की अलग जगाई थी। 24 सितंबर 1861 को बंबई में एक पारसी व्यापारी सौराबजी फ्रामजी पटेल के यहाँ उनका जन्म हुआ। पिता ने कन्या का नाम भीकाजी रखा। घर में उसे मुन्नी के नाम से पुकारा जाता था। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और विद्यालय का पूरा काम किए बिना ना तो भोजन करती थी और ना ही शयन करती थी। हर विषय में उसे सर्वोच्च अंक प्राप्त होते थे। बोलती भी खूब थी। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में वो प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया करती थी और बचपन में ही उसने कई भाषाएं सीख ली थी। आगे चलकर ये मदाम कामा के नाम से प्रसिद्ध हुई। भैया उनकी वाणी में वो तेज था कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 18 अगस्त 1907, जयंती का स्टुटगार्ट शहर।
5: अब मैं निवेदन करूंगा मदाम कामा से मंच पे अपने विचार।
6: कोई भारतीय राजकुमारी मालूम पड़ती है? काले आदमियों के देश भारत में भी इतना सुंदर है, आश्चर्य है।
7: बहुत प्रभावशाली और सुसंस्कृत महिला है
5: मदाम कामा।
8: ये मेरे देश का झंडा है। संसार की स्वतंत्रता प्रेमी महानुभावों, ये मेरा नियम है कि मैं अपने देश का झंडा फहराकर ही बोलना शुरू करती हूँ। भारत के महान शहीदों के तप, त्याग और बलिदानों की गरिमा से युक्त स्वाधीनता के प्रतीक इस झंडे को मैंने आपके सामने फहराया है। हरा रंग भारत की धन धान्य पूर्ण हरितिमा का प्रतीक है। उस हरी पट्टी पर 8 कमल पुष्प अंकित है। हमारा भारत 8 प्रांतों में बटा हुआ है और 8 कमल भारतीय योग साधना के प्रतीक भी हैं। झंडे के बीच की पट्टी केसरिया रंग की है। केसरिया रंग की पट्टी पर हमारा ओजमय मंत्र वंदे मातरम अंकित है। सबसे नीचे की पट्टी लाल रंग की है। लाल रंग भारत में अनुराग का रंग माना जाता है। अनुराग एवं एकता की भावना के प्रदर्शन के लिए लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य और दूसरी ओर चंद्रमा अंकित है। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। लाल रंग वैसे खूनी संघर्ष का प्रतीक भी माना जा सकता है, जिसके माध्यम से हिंदू और मुसलमान मिलकर अपनी मातृभूमि को मुक्त करने के लिए कृत संकल्प है। मैं अपने सम्मुख बैठे हुए संसार के सभी स्वाधीनता प्रेमी सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस झंडे के सम्मान के लिए खड़े हों और इसका अभिवादन करें। धन्यवाद। आप स्वाधीनता प्रेमी महानुभावों ने स्वाधीनता चाहने वाले एक देश के झंडे का सम्मान किया। इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपनी समस्त देशवासियों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भारत जहाँ समस्त संसार की मानवता का 5वां भाग रह रहा है, वो आज ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चक्की में पिसकर करा रहा है। भारत के समस्त आर्थिक साधनों का दोहन करके ब्रिटेन गुल छर्रे उड़ा रहा है और भारतीय लोग दाने दाने को मोहताज होकर सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। क्या साम्राज्यवाद और समाजवाद एक साथ रह सकते हैं? मेरा प्रस्ताव है कि संसार की सारी स्वाधीनता प्रेमी जनता, संसार की मानवता के 5वें भाग, भारत की जनता को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने और समता तथा समाजवाद के पथ पर अग्रसर होने के प्रयत्न में सहयोग दे। वंदे मातरम।
2: फिर सभी लोगों ने प्रस्ताव के समर्थन में हाथ ऊंचे किए। केवल ब्रिटेन के प्रतिनिधि नहीं नहीं करते रहे,

0: केवल ब्रिटिश के उदारवादी सदस्य हिंडमैन ने समर्थन किया। इस क्रांतिकारी महिला ने ब्रिटिश लोगों का मुंह बंद कर दिया। और भाइयों, ये झंडा भारत का प्रथम राष्ट्रीय झंडा था जिसका डिजाइन वीर सावरकर ने किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महान नेता लेनिन से कामा का परिचय हुआ।
1: लो भाई, ये भगवान का प्रसाद ले लो। लो भाई नवीन, तुम भी लो। हाँ, अब आगे सुना।
0: एक दिन वो अकेली बैठी हुई थी, तभी
2: मदाम जी कुछ खा लीजिए, आपने कुछ नहीं खाया।
3: मेरे देश के कई गरीब भाई भूखे सो जाते हैं, उनके हिस्से का अनाज ब्रिटिश जानवरों को खिला देते हैं। मैं कैसे खाऊं? लोगों की दशा से मेरा मन भर आता है, लेकिन मुझे कमजोर नहीं होना है। अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो हम करेंगे। एक हिंसक को परास्त करने के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है।
0: एक दिन लंदन में एक सभा हो रही थी। मदाम भीकाजी कामा मुख्य वक्ता थी। उनके मुख से शब्द नहीं अंगारे निकलते थे, जिससे अंग्रेज श्रोता तिलमिला जाते थे।
4: मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भारत संघर्ष करेगा और आजादी प्राप्त करके रहेगा। मैं मानती हूँ कि भारत के लोग अनपढ़ और भूखे हैं, पर पेट की भूख से कहीं अधिक भूख उनको आजादी की है। आप लोग रूस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर भारत के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते। कारण मैं बताती हूँ। ग्रेट ब्रिटेन भारत के रक्त की बूंद बूंद चूसकर भी संसार में ये ढिंढोरा पीट रहा है कि भारत हमारे शासन में सुखी है और वो स्वाधीनता नहीं चाहता।
3: हमारे जीवन की सार्थकता देश के लिए मर मिटने में है। हम भारत के हैं और भारत भारतीयों के लिए है। मैं शेर की मांझ में घुसकर ही शेर को ललकारती हूँ।
0: लंदन के घर घर में लोग भीकाजी कामा का नाम जानते थे। जासूस छाया की तरह पीछे लगे रहते थे। 1908 तक वो लंदन में रही। 1 मई 1909 को पेरिस पहुंच गई। वहां उन्होंने वंदे मातरम अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके लिए उन्हें बहुत श्रम करना पड़ा था। अखबार की लोकप्रियता देखकर उसमें व्यवधान डलवाकर उसे वहां से हटा दिया गया। फिर 8 महीने जिनेवा से अखबार प्रकाशित हुआ, वहां से भी उसे हटाया गया और हॉलैंड भेज दिया गया।
1: वाह भाई वाह, देखो एक स्त्री होकर कितनी साहसी थी वो। अरे देश के लिए कहां कहां नहीं गई वो।
0: ठीक कह रहे हो भैया, अनिवासी भारतीयों में स्वतंत्रता की अलग जगाने के लिए लंदन, फ्रांस, मिस्र, अमेरिका सब जगह गई और अपनी वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
5: और एक बार जब वे मिस्र की राष्ट्रीय सभा में भाग लेने के लिए गईं, तो वहां सभा में एक भी महिला को ना देखकर उन्होंने कहा,
4: मिस्र में आके मुझे आधी ही खुशी हुई है, क्योंकि मैं मिस्र का यहाँ केवल आधा प्रतिनिधित्व ही देख रही हूँ। शेष आधा प्रतिनिधित्व कहाँ है? मैं मिस्र के सपूतों से पूछती हूँ कि आप लोगों की माताएं कहाँ हैं? आप लोगों की बहनें कहाँ हैं? आप लोग ये न भूलें कि पालना झुलाने वाले हाथ ही व्यक्ति का निर्माण करते हैं और राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का बहुत योगदान रहता है।
6: नवीन भाई, मदाम कामा भाषण ही देती रहती थी क्या?
0: अरे नहीं भैया, मदाम कामा उन व्यक्तियों में से नहीं थी जो स्वयं दूर रहकर दूसरों को आग में कूदने का उपदेश देते रहते हैं। क्रांति तो उनके खून की हर बूंद में थी। वे बराबर इस प्रयत्न में रहती थीं कि यदि अपना गला फंसाकर भी साथियों को बचाया जा सकता है तो उन्हें अवश्य बचाया जाए। एक बार की बात है, वीर सावरकर लंदन में गिरफ्तार करके भारत ले जाया जा रहे थे, जब उनका जहाज 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के बंदरगाह मार्सिलिस के निकट पहुंचा, तो वे जहाज से समुद्र में

0: Company.
1: Vande Mataram.
0: और सावरकर गोलियों से बचते हुए फ्रांस की भूमि पर जा पहुंचे।
2: फिर क्या हुआ? क्या वो वहाँ से बचकर निकल गए?
0: नहीं, उन्हें आशा थी कि वहाँ उन्हें भागने के लिए कार लिए हुए मदाम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा मिल जाएंगे, पर जब वे वहाँ नहीं मिले तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। अंग्रेज सिपाहियों ने वीर सावरकर को पकड़कर फिर जहाज की कोठरी में डाल दिया और जहाज को शीघ्र ही वहाँ से ले गए।
2: तो नवीन भाई, ये क्या पहले से योजना थी कि मदाम कामा उन्हें वहाँ मिलेंगी? और यदि ये योजना थी तो मदाम कामा वहाँ क्यों नहीं आई?
0: अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। दरअसल उनकी कार फ्रांस के तट पर बिल्कुल ठीक समय पर पहुंची थी, पर उनको यह जानकर बड़ी निराशा हुई कि उस दिन जहाज अपने समय से बहुत पहले ही किनारे लग गया था और समय से बहुत पहले ही वहां से चल भी दिया था। इसका कारण यह था कि जब वीर सावरकर समुद्र में कूद पड़े तो उनका पीछा करने के लिए जहाज को अपनी गति बढ़ानी पड़ी, जिसके कारण वो किनारे पर समय से पहले पहुंच गया। और जब वीर सावरकर को फ्रांस की भूमि पर पकड़ लिया गया तो किसी अन्य मुसीबत से बचने के लिए जहाज वहां से शीघ्र ही चल दिया।
2: तो क्या मदाम कामा सिर्फ विदेशों की ही गतिविधियों में भाग लेती थी?
0: नहीं भाई, भारत में भी उन दिनों क्रांतिकारी घटनाएं बड़ी तीव्रता से घट रही थी और मदाम कामा किसी न किसी रूप में उनसे जुड़ी हुई थी।
2: नवीन भाई, कोई और वाकया हो तो बताएं।
0: एक बार की बात है, नासिक के कलेक्टर मिस्टर जैक्सन की हत्या 21 दिसंबर 1909 को क्रांतिकारी युवक कानारे द्वारा कर दी गई। इसी प्रकार टिन्नेवाली के न्यायाधीश मिस्टर ऐश की हत्या 17 जून 1911 को एक क्रांतिकारी वांची अय्यर ने कर दी। जब दोनों मामलों में पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें सरदार सिंह राणा और विनायक दामोदर सावरकर पर शक हुआ।
3: ये पिस्टल्स इंडिया कैसे आए?
4: सर, सरदार सिंह राणा एंड विनायक दामोदर सावरकर ने चतुर्भुज अमीन के जरिए लंदन से इंडिया भेजी।
3: व्हाट? इन इंडियन के पास पैसा किधर से आया?
4: सर, ब्राउन इन मॉडल का 20 पिस्टल्स इंडिया आया था, जिन्हें खरीदने के लिए मैडम कामा ने इंतजाम किया था।
3: कैसे भी करके इन दोनों इंडियंस को गिरफ्तार किया जाए। अरेस्ट देम।
2: मैडम कामा ने इंतजाम किया, फिर तो वो पकड़ी गई होंगी।
5: नवीन भाई, लेकिन ये पूरा किस्सा क्या था?
0: अरे सही बात तो ये थी कि वे 20 ब्राउनिंग पिस्तौलें सरदार सिंह राणा और सावरकर द्वारा ही सरदार सिंह राणा के संदूक में रखकर इंडिया हाउस के रसोइये चतुर्भुज अमीन द्वारा भारत भेजी गई थी और ऊपर वाले पेंदे पर अन्य सामान रख दिया गया था।
2: फिर क्या हुआ नवीन भाई? फिर मदाम कामा का क्या हुआ? मुकदमा तो इन पर भी हुआ होगा।
0: अरे यही तो बात थी, मदाम कामा ने फिर एक कहानी की रचना की और मिस्टर जैक्सन व मिस्टर ऐश की हत्या के संबंध में कुछ जानकारी देने की पेशकश उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल से की और ब्रिटिश काउंसिल के सामने मदाम कामा ने अपना बयान इस प्रकार दिया।
6: मिस्टर जैक्सन और मिस्टर ऐश की हत्या जिन पिस्तौलों से हुई है वे मैंने ही भारत भेजी थी। सरदार सिंह राणा और किसी अन्य का उन्हें भारत भेजने में कोई हाथ नहीं है। ये ठीक है कि वो संदूक सरदार सिंह राणा का था, पर वो बहुत दिनों से मेरे पास पड़ा था और सरदार सिंह को बिना कुछ बताए ही उस संदूक का उपयोग मैंने पिस्तौलें भेजने के लिए किया। इस संबंध में सावरकर को भी मैंने कुछ नहीं बताया। वे दोनों लोग निर्दोष हैं और पिस्तौलें भेजने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है।
0: ब्रिटिश काउंसिल इस बयान को सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने बयान की रसीद मदाम कामा को देकर उन्हें विदा कर दिया। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि मदाम कामा ने ये सारी कहानी की रचना अपने साथियों को बचाने के लिए की। ऐसी थी मदाम कामा।
2: वाह नवीन भाई, क्या जीवट महिला थी! अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान खतरे में डाल दी।
0: जिस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद ने यूरोप और अमेरिका में भारत के गौरव का डंका बजाया, उसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र

0: पराधीन भारत की स्वाधीन होने की आकांक्षा को सर्वाधिक प्रचारित किया मदाम कामा ने। जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग वे देश के काम के लिए कर रही थी। देश के किसी लाडले की वीरतापूर्ण गाथा सुनकर वे खुशी के मारे नाच उठती थी और देश के ऊपर होने वाले दमन तथा अत्याचार की कहानियां सुनकर वो रो उठती थी।
1: रात के 2 बज रहे हैं, आप आराम कर लीजिए, नहीं तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। खाने की चिंता तो आपको है ही नहीं।
2: और क्या खाऊं? उन अत्याचारियों ने 17 अगस्त 1909 को मेरे बच्चे मदनलाल ढींगरा को फांसी पर लटका दिया। मेरे बच्चे, वो फंदा मेरे गले में क्यों नहीं डाला गया? क्यों नहीं मेरे गले में? दुष्टों ने उसकी हत्या कर दी, मेरे बच्चे।
0: मदनलाल ढींगरा को फांसी हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका था, पर मदाम कामा उसे भुलाए नहीं भूल पाती थी। उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह समझती थी। जब 17 अगस्त 1909 को उसे फांसी हुई थी तो कुछ दिन तक मदाम कामा पागलों जैसा व्यवहार करती रहीं। और भारत के डॉक्टर अविनाश भट्टाचार्य जब सन 1913 में मदाम कामा से मिलने फ्रांस पहुंचे तो मदनलाल ढींगरा का जिक्र निकल पड़ा।
3: तू अविनाश है या मदनलाल ढींगरा? तू वापस आ गया मदन, तू वापस आ गया अपनी माँ से मिलने। चल चल, हम दोनों सारे अंग्रेजों को मार देंगे। चल चल चल ना मेरे साथ, चल। वो देख, वो पूरा अंग्रेज, मार उसे, मार मार उसे।
2: वो भाग गया, अब वो भाग गया, मार ना उसे, भाग गया वो।
0: और फिर 1914 को प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। फिर इंग्लैंड ने भारत से हिंदुस्तानी फौजें लाकर मोर्चे पर अड़ा दी। तब मदाम कामा बंदरगाह पहुंच गई।
4: मेरे वीर बच्चों, अंग्रेजों की तरफ से मत लड़ो। अरे, जिस भूमि पर तुमने जन्म लिया, जिस भारत माँ ने तुम्हारा लालन पालन किया, आज तुम उसी भारत माँ के मान को अपने पैरों तले रौंदने जा रहे हो? क्या तुम्हारी रगों में बह रहा खून ठंडा हो गया है? भारत माँ के शेर अब तुम दूसरों के इशारों पर नाचोगे? क्या तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति इतनी क्षीण हो गई है कि तुम इतना भी नहीं समझते कि तुम लोग उस देश की तरफ से लड़ने जा रहे हो जिसने हमारी भारत माँ को कैद कर रखा है? यदि अंग्रेजों की तरफ से लड़ोगे तो भारत माता के बंधन और दृढ़ होते चले जाएंगे। याद रखो, ये युद्ध हमारा नहीं है, तुम्हें धोखे में रखा जा रहा है, तुम्हें मरने के लिए मोर्चे पर भेजा जा रहा है। अपनी मातृभूमि को गुलाम बनाने वालों की ओर से तुम लोग मत लड़ो।
0: इंग्लैंड और फ्रांस युद्ध में मित्र देश थे। उन्होंने कामा से डरकर उन्हें एक पुराने किले में कैद कर लिया। 4 साल तक उन्हें नजरबंद रखा गया। युद्ध की समाप्ति पर उन्हें छोड़ा गया। तब उनके स्वास्थ्य का सर्वनाश हो चुका था, उनका शरीर कंकाल मात्र रह गया था। उन्होंने अपने अंतिम दिन पेरिस की एक अंधेरी गली के मकान में बिताए। फिर उन्हें भारत लौटने की अनुमति मिल गई। उन्होंने बीमार हालत में समुद्री यात्रा की। जिस समय उन्होंने भारत छोड़ा था उस वक्त वे युवती थी, अब 70 वर्ष की वृद्धा होकर भारत लौट रही थी। 8 महीने अस्पताल में रहने के पश्चात 16 अगस्त 1936 को वो इस दुनिया से चल बसी।
5: नवीन, मुझे लगता है उनकी मृत्यु किसी शहादत से कम नहीं। अरे, फांसी लगने से ही कोई शहीद कहलाए, ये जरूरी थोड़ी है।
6: चलिए, भोजन तैयार है।
0: अरे भैया, महाराज ने भोजन लगा दिया है, चलिए भोजन कर लीजिए।
7: नहीं नवीन भाई, उस महान क्रांतिकारी की गाथा सुनकर नहीं, नहीं, आज मादाम कामा की स्मृति और शहादत में हम लोगों का आज उपवास है। धन्य है भारत देश,
8: धन्य है हम कि हमने भारत में जन्म लिया।
9: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
10: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत।
11: अश्विनी
10: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
12: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे,
10: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
2: चौदहवीं रात का चांद कुछ थकी थकी सी आधी अधूरी सांसें, कुछ रास्तों के बेनाम से मोड़, एक शाम की फूली हुई सुर्ख व सुनहरी शफक, ये सब उस शायर का सरमाया है जो बूंद बूंद पिघलती रात अपनी ओक में भरता रहता है। कुछ सुनहरी सी चांद की बूंदें, कुछ सब्ज रात के पत्ते जो हथेलियों में पड़ते हैं और सूख जाते हैं। एड़ियों पे ऊंचक उचक के शायर चांद को छूने की कोशिश कर रहा था कि रात बुझ गई, वक्त खत्म हो गया, और वो जो शायर था ना,

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल दायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनल

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. सुश्री शिवानी हमारे साथ है. वेलकम सिस्टर.
3: ओम शांति.
2: वेलकम टू बीइंग शक्ति.
3: थैंक यू सो मच
2: सिस्टर. लास्ट एपिसोड में आपसे बात हो रही थी कि अबाउट शक्ति एंड वीकनेस. तो मैं सोच रहा था कि ये अपने आप को वीक बोलना थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि यू फील देन यू स्टार्ट फीलिंग मोर वीक और अपने आप को कमजोर लगते कि क्या मैं इतना वीक हूं कि कोई कुछ बोल दे तो मुझे कुछ हो जाएगा. तो मैं समझ रहा था नेचुरल है, किसने बोला और मैं चिढ़ गया, सो व्हाट.
3: इसने बोला तो मैं चिढ़ गया, सो व्हाट. नहीं, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स.
2: नो, छोटा बच्चा भी चिढ़ता है ना, जो खिलाना मांगता है नहीं दो तो चिढ़ जाता है. ये करो तो फ्रॉम चाइल्डहुड है, बाय नेचर है ना, उसको तो किसी ने नहीं सिखाया.
3: बाय नेचर वो आत्मा ने पिछले कॉस्ट्यूम से कैरी फॉरवर्ड किया ना, इसीलिए बच्चे भी तो अलग अलग तरह के होते हैं. कुछ बच्चों के लिए कहते हैं बच्चा बहुत शांत है, कुछ बच्चों के लिए कहते हैं ये बच्चा बहुत जल्दी जल्दी रोता है, कुछ बच्चों के लिए कहते हैं ये बच्चा ज्यादा गुस्सा करता है, किसी बच्चे के लिए कहते हैं ये बच्चा बहुत हसमुख है. बच्चे भी एक जैसे थोड़ी होते हैं. अगर बाय बर्थ होता है, व्हिच वी आर सेइंग कि बाय बर्थ कैसे आया, तो बाय बर्थ सारे आइडेंटिकल थोड़ी होते हैं. बाय बर्थ सारे अलग अलग होते हैं. क्यों हर बच्चा अलग अलग होता है? क्योंकि हर बच्चा क्लीन स्लेट नहीं स्टार्ट हो रहा. हमने सोचा बच्चा मीन्स स्टार्टिंग. इट्स नॉट अ स्टार्टिंग, इट्स ओनली अ न्यू बिगिनिंग आफ्टर अ कैरी फॉरवर्ड.
2: जैसे हम कैमरा में कट करते हैं शॉर्ट, बीच में अगर कोई डिस्टर्ब हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं.
3: जैसे हम 31 मार्च को कहते हैं ये साल पूरा हुआ, नया खाता शुरू हुआ, न्यू बिजनेस ईयर. लेकिन न्यू बिजनेस ईयर डजंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो. न्यू बिजनेस ईयर स्टार्ट फ्रॉम द कैरी फॉरवर्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर.
2: अगर न्यू बिजनेस जीरो से शुरू हो तो मेरी पिछली 20 साल की कमाई और मेहनत का क्या होगा?
3: वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरी पिछली 20 साल की कमाई और मेहनत का क्या होगा? अब कमाई हमारी दो तरह की हो सकती है. या तो हमारा बहुत प्रॉफिट था पिछले 20 सालों में, या लॉस था. इट डजेंट मैटर, स्टार्ट तो उधर से ही होना पड़ेगा. इट कैन नॉट बी कि हर 31 मार्च को हम 0-0 पे आ जाएं और स्टार्ट करें. सो इट कैन नॉट बी कि हर बच्चा 0-0 से स्टार्ट करे अपनी बैलेंस शीट को, एकदम फ्रेश स्टार्ट करे. हर बच्चा अपने पिछले 20 साल नहीं, लेकिन अपने पिछले सारे जन्मों का कैरी फॉरवर्ड संस्कार लेकर इस जन्म को स्टार्ट करता है. और इसीलिए बच्चे के अंदर भी हमें ये सारे संस्कार दिखाई देंगे, क्योंकि 2 साल पहले वो बच्चा एक 80 साल के शरीर में था, तो वो संस्कार तो दिखाई देंगे. अब आपने कहा समवन सेड समथिंग, आई गॉट डिस्टर्ब्ड, सो व्हाट. बट देन वी जस्ट सॉ लास्ट टाइम सो मेनी थिंग्स. आई गॉट डिस्टर्ब्ड, खुशी गई, शांति गई, मन उथल पुथल में आया, 1 घंटा उसका प्रभाव रहा, रिश्ता अफेक्ट हुआ, शब्द भी कुछ मुख से गलत निकल गए, राइट. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने देखा कि शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ा.
2: और रात को खाना खाते समय फिर शक्ल देख ली तो खाना रोक दिया,
3: खाना भी रोक दिया, और रात को नींद भी नहीं अच्छी आई. तो सो व्हाट जो आपने कहा ना, फिल इन द ब्लैंक. सो मेनी थिंग्स. सो वी कैन नॉट से सो व्हाट, वी विल इन फैक्ट हैव टू से सो मच. इतना कुछ हो गया उस 1 घंटे में डिस्टर्ब होने की वजह से. एंड नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1 घंटे में जब हम थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं तो वो कोई उस दिन की लास्ट सिचुएशन भी तो नहीं थी. उस 1 घंटे में डिस्टर्ब होने से हमारी मन की शक्ति क्या हुई?
2: डिप्लीट होती,
3: थोड़ी सी डिप्लीट होती गई. आधे 1 घंटे के अंदर कोई और बात आएगी, कोई और बात भी तो आएगी. अब कोई और कुछ कहेगा, कुछ और हमारे अनुसार नहीं होगा. तो क्योंकि वो मन पहले से ही फ्लक्चुएटिंग स्थिति में,
2: तो जल्दी आग में घी का 1 चम्मच और डाल दिया.
3: और डाला तो आग तो बहुत ज्यादा अब उड़ गई,
2: बड़े खेगी.
3: तो अब सो व्हाट का इम्पैक्ट और देखें. अब ये सिर्फ पूरे दिन की एक सिचुएशन नहीं आती ना. अगर एक सिचुएशन आए पूरे दिन के अंदर, हम डिस्टर्ब हो,

0: फिर एक घंटे में दो घंटे में हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन, सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन, पीपल आफ्टर पीपल आफ्टर पीपल, हर एक हमारे अनुसार नहीं होगा. दिस इज डीप डीप डीप रियलाइजेशन एंड डीप डीप डीप प्रोग्रामिंग. लोग सिचुएशन, लोगों के सेंटेंसेस, लोगों के बिहेवियर मेरे अनुसार नहीं होंगे अगर हर बात को.
1: बट एक चीज मेरे अनुसार एक ही चीज कभी और वो मेरे अनुसार हो सकती है और कभी किसी टाइम पे ये मेरे अनुसार वही चीज नहीं हो. और वही सेम चीज कोई मेरा अपना बोले और कोई दूसरा बोले, या एक्स वाई जेड में मेरी चॉइस का पर्सन बोले मुझे अच्छा लगता है, वही चीज कोई दूसरा बोले बुरा लगता है, फिर वो चीज के अनुसार की तो बात हुई नहीं ना.
0: राइट.
1: फिर मेरी चॉइस आ गई है.
0: चॉइस आ गई ना, तो चॉइस तो है.
1: मैं कई बार मेरे घर पे भी बोलते साहब डांटेंगे तो ठीक है, आप मुझे मत डांटो. अब एक मेरे एक स्टाफ की बात कर रहा
0: हूं. राइट.
1: मैं डांटू हिस इज एक्सेप्टेबल है, वो बोले तुम नहीं.
0: तो उस आत्मा ने अपनी प्रोग्रामिंग कर लिया है, ठीक है ना. उस आत्मा ने प्रोग्रामिंग कर लिया कि ये डांटेंगे तो इट्स फाइन विद मी, ये डांटेंगे तो आई विल गेट डिस्टर्ब्ड. हो गई प्रोग्रामिंग. कितनी क्लियर है, इसी से क्लियर हो जाता है कि सब कुछ मेरी चॉइस है और मेरे कंट्रोल में है. ये डांटेंगे इट्स ओके विद मी, ये डांटेंगे तो आई विल गेट डिस्टर्ब.
1: चीज वही, डांटना वही, शब्द वही,
0: प्रोग्रामिंग है.
1: तो इसका मतलब चीज हैज नथिंग टू डू,
0: इट हैज नेवर एनीथिंग टू डू.
1: यू मीन टू से, हाँ मैं खुद ही बोल आंसर दे दिया इसका.
0: इट हैज नथिंग टू डू. लेकिन जितनी बार हम डिस्टर्ब हुए, हमने उस चीज को अपने ऊपर हावी होने दिया. लेट से मैं कहूं आप डांटेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कुछ बोलेंगे तो मुझे बुरा लगता है. तो मैंने अपने अंदर प्रोग्रामिंग क्या कर ली कि आप कुछ बोलेंगे माई माइंड विल एक्सेप्ट एंड आई एम फाइन विद इट, लेकिन ये बोलेंगे तो आई एम टेलिंग माई सेल्फ यू आर अलाउड टू गेट डिस्टर्ब्ड. लेकिन नाउ आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, ये बोलेंगे फिर कोई और बोलेगा, फिर कुछ और बोलेगा, कोई और कुछ करेगा, हर बार डिस्टर्ब होते होते होते मेरी अपनी शक्ति. इट्स लाइक सेइंग गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती. तो ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है. विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है. तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ. अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही. उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट. एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस. क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी.
1: सिस्टर आपने जो कहा था अभी, ये हमारी वीकनेस है, हमारी शक्ति की कमी है कि दूसरे की बात को का मुझ पर इतना असर होता है. तो यहाँ पर भी ये भी तो थॉट एक डिप्रेसिंग ही है ना, कि मैं इतना कमजोर हूँ, मैं कब ठीक हो जाऊंगा. अभी कल उसने ये बोला फिर मैंने ऐसे कर दिया, परसों उसने बोला फिर मैंने ऐसे कर दिया, मैं कब सुधरूंगा. आई एम दूसरे आदमी देखो शक्तिवान है, मैं शक्ति नहीं हूँ. तो ये भी तो एंगल उधर ही लेके जा रहा है ना.
0: इस थॉट को अब चेंज करते हैं कि आज कोई कुछ बोलेगा मैं हूं नहीं, आज मुझे क्या करना है. आज कोई कुछ बोलेगा आई विल फेस इट इन अनदर वे.
1: अगर मेरा नेचर ऐसा बन चुका है तो कहाँ फेस करूं.
0: नेचर बना कैसे,
1: हो गई बात. चलो नेचर से आदत हो गई,
0: आदत बनी कैसे,
1: आदत हो जाती है.
0: आदत सिगरेट की हुई कैसे,
1: पीते पीते
0: सिंपल. फिर छूटती है किसी की या नहीं छूटती.
1: फिर मेहनत
0: नेवर माइंड. लेकिन आदत बनी कैसे, करते करते करते करते आदत बनी. अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी. जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्स

0: होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जेट से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
1: कई लोगों को आदत हो जाती है, सिस्टर चाय लाए, स्टाफ पूछते हैं कहाँ रखूं, बोले मेरे सर पर रख दे। तो मैंने अगर पूछो भी तो टेबल दिख रही है ना उसको।
0: हाँ।
1: तो क्या करूं? हाँ, तो बोलते बोलते बोलते फिर एक ताने मारने की और ये एक हैबिट हो ही जाती है। लेकिन
0: बट इट डजंट
1: अवेयर, इट इज नॉट इजी। जो आप बोल रहे हैं कि आप अभी आप बोल रहे थे कि जन्मों जन्मों से बच्चा लेके आ रहा है।
0: हाँ।
1: एक चीज।
0: हाँ।
1: तो
0: अच्छा सिंपल ये वाली लेते हैं कि कोई चाय लेकर आया और आपने कहा उसने
1: पूछा साहब कहाँ रखूं।
0: हाँ।
1: तो बोला सामने टेबल पे चाय रखना भाई तू।
0: हाँ। तो वो नहीं बोला ना, क्या बोला उसकी जगह?
1: मेरे सर पे रख।
0: मेरे सर पे रख। लेट्स से ये करते करते ये आदत बन चुकी है। ठीक है। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर लाइन, लेकिन कभी भी कोई भी ऐसी कोई बात पूछेगा या करेगा जो आपको लगता है कि इतनी ऑब्वियस आंसर है फिर ये पूछता है, तो आप उसको सीधा आंसर नहीं देते। ठीक है। आपने ये 13 आंसर दिया ना, अब अगर आज आप अपने आप को कहते हैं कि दिस इज नॉट अ रॉयल वे ऑफ आंसरिंग,
1: आई लाइक दैट,
0: नॉट अ रॉयल वे ऑफ आंसरिंग,
1: ये अच्छा है,
0: है ना? सी, खुद ही हमें रियलाइज,
1: हमको अच्छा लगा,
0: है ना? आपको
1: रॉयल वे, आई वुड लव टू बी।
0: तो अब आप ये बताइए कि रॉयल वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन क्या है? किसी ने आके पूछा ये चाय कहाँ रखो,
1: आप यहाँ रख दीजिए,
0: सिंपल है। डू यू फील दैट्स मोर कम्फर्टेबल?
1: आई जस्ट acted out and I felt nice.
0: You felt nice, but you feel this is a better response? 100%. Convinced?
1: 100%.
0: लेकिन उसकी बात फिर भी उतनी ही कहे बचकानी थी या सिली थी कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर भी what is the way, the best way to respond?
1: Maybe point of view, अगर आपसे बात करते करते की thought आया कि उसके तरफ वो भी right है, कहाँ रखो, यहाँ वहाँ हाथ में दो।
0: अब ये तो ये भी नहीं पता कि अगर वो बिना पूछे वहाँ रख देता
1: पूछ तो लेता,
0: दूसरे का नजरिया तो अभी सोचा ही नहीं,
1: बच्चे खेल रहे हैं, गरम हाथ डाल देंगे, ये करेंगे, इतना भी नहीं सोचा है, वो भी नहीं किया,
0: पूछना चाहिए था रखने से पहले।
1: हाँ।
0: वो तो एक अलग एस्पेक्ट है, वो तो दूसरे का नजर
1: चलते है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते तो चाय कोई टेबल पर रखते, मतलब देखो क्या कर दिया तुमने यार, बच्चा हाथ डाल देगा गरम गरम उबलती चाय, यहाँ रखने की जगह है।
0: अब इसको देखते हैं, एक बार सामने वाले ने बिना पूछे रख दिया, ठीक है, तो आपने उसको डांटा और कहा पूछ के रखना चाहिए था। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम कोई नहीं भी होगा रूम में, बच्चे भी नहीं होंगे, तो उसने तो क्या करना है,
1: पूछना है,
0: उसने तो पूछना है, तो इज ही राइट?
1: अपने तरफ से तो राइट है, बोला
0: वेदर ही इज राइट और ही इज नॉट राइट, अब हमने उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, अब हम क्या चेक कर रहे हैं, विच इज माई मोस्ट कम्फर्टेबल वे टू रिस्पॉन्ड, मेरा सही जवाब इस समय क्या होना चाहिए। तो आपने अभी कहा कि यहाँ रख दो, अब आदत पड़ गई है कहने की सिर पे रख दो, इधर नीचे रख दो, ये टेढ़े आंसर देने की आदत पड़ गई है। आज हमने डिसाइड किया अब वो आएगा पूछेगा, I will respond in a royal way. हो जाएगा आज?
1: आज जब तक अवेयर रहूंगा
0: हो जाएगा, नहीं होगा? इट्स अ सिंपल, अभी इसमें तो कोई संस्कार की बात नहीं, नेचर की बात नहीं,
1: as long as I'm aware, होगा।
0: आज डिसाइड किया है कि आज वो आएगा ही, इट्स अ रिपीटेड सिचुएशन। सी, कुछ सिचुएशन जीवन में बड़ी रिपीटेटिव होती है, रोज आती है, ऑलमोस्ट रोज आती है, एंड हम ऑलमोस्ट हर रोज उसी आउट ऑफ कंट्रोल वे से बिहेव करते हैं। जब हमने एक ऐसा जवाब दिया जो हमारे लिए सही नहीं था, तो विच मीन्स मेरे मन और मुख ने वो नहीं किया जो मुझे सही लगता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उस बात पे तो गुस्सा आ जाता है कि लोगों ने वो नहीं किया जो सही है, लेकिन व्हाट अबाउट जब मेरी ही ये इंद्रियां, मेरी इंद्रियां है ना ये सारी, माई सेंस ऑर्गन्स, व्हाट अबाउट जब ये वो चीजें नहीं कर रही जो मुझे सही लगती है? तो बीइंग शक्ति मतलब आई एम गोइंग टू टेक बैक कंट्रोल ओवर ऑल दिस, जो आज अपने आप चलती है, अपने आप।
1: ये थॉट आई बात सुन के, ये चीज भी तो वीकनेस हुई, जो बार बार मैंने जैसे सिगरेट की आदत पड़ी, ये भी बार बार बोलते बोलते ताना मारने की, छिड़के बात करने की।

0: हैबिट हो जाती है।
1: अगर हमें लगता है कि ये सही नहीं है, कंफर्टेबल नहीं
0: लग रहा है ना, रॉयल तो नहीं लग रहा
1: है, रॉयल नहीं है ना, रॉयल नहीं है, हेल्दी नहीं है, इट्स नॉट हेल्दी ऑल्सो,
0: इट्स ऑल्सो हर्टिंग द अदर चैप ना,
1: इट्स हर्टिंग द अदर पर्सन, वो तो है ही, लेकिन हर्टिंग उससे ज्यादा,
0: मैं कभी सोचा भी नहीं था,
1: उससे ज्यादा हर्ट किसका हो रहा है।
0: अभी डिस्कशन में सिर्फ मैं अपना ही सोच रहा हूँ, वॉट अबाउट दैट पर्सन,
1: उस आत्मा को तो तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि बार बार हो रहा है ना, थोड़े टाइम के बाद उस आत्मा को कोई असर नहीं होगा इस बात का,
0: हंसेगा वो बाहर जाके।
1: सी इफ आई सी यू नॉट बिहेविंग इन अ रॉयल वे, आफ्टर सम टाइम आई विल नॉट गेट अफेक्टेड, बट यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट इफेक्ट।
0: आई सी आई ट्राइड दिस थिंग, इवन आर्टिफिशियली अच्छा लगता है रॉयल
1: आर्टिफिशियल
0: बिगिनिंग में,
1: यस,
0: छोटा छोटा ऐसे हाथ यहाँ रख दो, हालांकि कंट्रोल करके, लेकिन फिर उसकी आदत पड़ सकती है, रॉयल में रहने की हमेशा जैसे इसकी पड़ी उसकी भी पड़ जाएगी।
1: जैसे ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है, अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है, अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना, अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा, होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए परमानेंट पाथ बन चुका है,
0: सही,
1: राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं, इट्स एज सिंपल एज दैट,
0: दिस इज शक्ति वी हैव,
1: दिस इज द पावर वी हैव। अगर हम नहीं चूज करें, हम उसी पैटर्न से जन्म जन्म वर्क कर सकते हैं, लेकिन आज चूज करें तो आज से ही उस ग्रूव में न जाने के बजाय हम कॉन्शियसली शुरू में थोड़ी सी मेहनत कि आज उस तरह से नहीं, एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह होगी, थोड़े दिन करने से एक नया पैटर्न बन जाएगा, एक नया ग्रूव बन जाएगा, और थोड़े दिन के बाद हमें कोई अटेंशन नहीं रखनी पड़ेगी, हमें कोई ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, अब कोई भी बात आए, अब कोई भी परिस्थिति आए,
0: राजा के बेटे को अटेंशन रखना थोड़ा ही पड़ता है कि आई एम रॉयल,
1: दैट्स इट,
0: आप खुद बन जाओगे, जब
1: खुद बन जाओगे, लेकिन राजा का बेटा अगर भूल जाए कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया, मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो अवेयरनेस ही नहीं है,
0: इंद्रियों के गुलाम,
1: लेकिन कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन बुद्धि संस्कार, लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स, इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी
0: कंट्रोल में,
1: मेरे हिसाब से चले, रिजल्ट क्या होगा, एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन।

0: ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है।
1: बाप रे।
0: ठीक है, एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां वो उनके कंट्रोल से चले।
1: क्योटिक सिचुएशन है, क्योस एकदम।
0: तो यही वो पांच लोग हैं जो एक फैमिली में एक घर में रहते हैं। सी, आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर?
1: ब्यूटीफुल।
0: हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना।
1: और कोई आ भी रहे तो खुद को स्लो डाउन कर ले,
0: सिंपल,
1: वो निकल गए आगे।
0: सो द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है लेकिन एक भी अपने करना शुरू करते हैं तो वो एक भी कितने सारे एक्सीडेंट बचा देगा सारा दिन के अंदर?
1: बाकी चार के साथ तो बचेंगे उसके,
0: तो जब बाकी
1: चारों के बच गए,
0: चारों के बच गए। सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टूडे। जितना मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, लेकिन मैं चाहती तो नहीं एक्सीडेंट हो, ठीक है? यहां से मैं आ रही हूं, वहां से आप आ रहे हैं, ठीक है? देखो, अगेन विजुअलाइज ऑन द रोड, सपोज मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए, ठीक है? लेकिन आई डोंट वांट टू मीट विद एन एक्सीडेंट, तो व्हाट डू आई ट्राई एंड डू ऑन द रोड? आई टेल अदर पीपल,
1: हट जाओ,
0: मीन्स यू मूव आउट ऑफ माई वे, आप मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मेरे अंदर पावर नहीं है ब्रेक लगाने की या अपना रास्ता चेंज करने की।
1: वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड।
0: मेरे अंदर पावर नहीं है तो मैं इशारा करती रहती हूँ कि तुम लोग हट जाओ रास्ते से। अगर आपने कहना मान लिया तो एक्सीडेंट बचेगा, लेकिन अगर आपने नहीं माना और आपने वहां से मुड़ के कहा मेरा भी ब्रेक नहीं चल रहा, या आपने मुड़ के कहा मैं क्यों हटू तुम हटो, तो फिर तो एक्सीडेंट होना ही है। आज क्योंकि सारा दिन में मेरा मन बुद्धि कर्म इंद्रिया मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हम हर सारे रास्ते में क्या करने की कोशिश,
1: तो कहीं भी जा सकते हैं। तुम गाड़ी चलाने से पहले ब्रेक टेस्ट नहीं किया था क्या? देखा नहीं था क्या? ब्रेक नहीं थी तो आए क्यों सड़क पे?
0: उतनी देर में तो हो गया ना एक्सीडेंट। नाउ अगेन गो बैक टू दैट लेडी यस्टरडे, वो एक अलग गाड़ी, उन्होंने आकर कुछ कहा, ठीक है? यहां से आप हैं अपनी गाड़ी में, मतलब ये माय माउथ, माय माइंड, एवरीथिंग, माय बिहेवियर, ये है मेरी गाड़ी। अगर कल आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में होती तो फिर वो कुछ कहते भी तो कह के निकल जाते, आपका एक्सीडेंट बच जाता।
1: यू मीन टू से कोई मुझे खाते खाते रोक दे और बोले जानना पहचानना, बोले आपको परहेज करनी चाहिए, तो आई शुड कीप क्वाइट, दैट मींस मेरा आउट ऑफ कंट्रोल था।
0: आपका जवाब,
1: जवाब नहीं दूं,
0: जवाब दे सकते हैं, लेकिन जवाब ऑफ माय चॉइस, जवाब विच इज कम्फर्टेबल फॉर मी, जवाब विच इज हेल्दी एंड हैप्पी फॉर मी।
1: बट एट दैट टाइम आई थॉट कि वो मेरे लिए कम्फर्टेबल था, लेटर ऑन आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल माई सेल्फ।
0: उस क्षण भी कम्फर्टेबल नहीं थे, क्योंकि बात आते ही फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ?
1: चिड़ गया,
0: मतलब गाड़ी गई। ब्रेक अगर लगनी थी उस टाइम, क्योंकि उस समय क्या हुआ, बात आई और माइंड बहुत फास्ट स्पीड पर चला। कितनी फास्ट स्पीड पर माइंड चला, ऐसे क्यों बोला, बोलना चाहिए था, कोई तरीका है, कोई रिश्तेदार है मेरी जो बोल दिया, मैं कोई बीमार हूं ऐसे बोल दिया। लुक एट दिस स्पीड, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स ऐसे चलेंगे, ब्रेक लगाओ। बोल दिया, उनका नजरिया उनको सही लगा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे परहेज नहीं करनी, और करनी भी होती तो मेरा मन नहीं है अभी परहेज करने का, आई फील लाइक इटिंग, फुल स्टॉप।

0: Who are you?
1: Dinesh, who are you is again कौन सी thought radiate की फिर हमें दूसरे जैसे आपने कहा ना वो कितना hurt हुआ होगा staff ऐसे कौन सा तीर हमने सामने वाले को भी मारा वो तीर भी प्यार वाला होना चाहिए कि ठीक है आपने बोला एक आपने अपने कंसर्न से बोला या दूसरा हो सकता है इट्स ओके आपको जो सही लगा आपने कहा फुल स्टॉप ब्रेक कल वो ब्रेक अगर लगती तो कम से कम 2 घंटे की शक्ति बच जाती 2 hours ऑफ थॉट पावर एंड 2 hours ऑफ द इफेक्ट दैट थॉट पावर हैज ऑन माई बॉडी ये सारा बच जाता अगर उस क्षण ब्रेक लग जाती तो अब मुझे क्या करना है सिर्फ मुझे वो ब्रेक लगाने की पावर गाड़ी को अपने कंट्रोल में चलाने की पावर उस चीज को वापस आई हैव टू गेट बैक इनटू कंट्रोल अब जैसे ही आज जो हमने डिसाइड किया कि कोई आके कुछ कहेगा भी तो हमारा जवाब देने का तरीका कैसा होगा आज
0: बीइंग शक्ति एंड रॉयल
1: रॉयल एंड आज जब हम वो करेंगे तो धीरे धीरे हम उस थॉट को उस ग्रूव में नहीं जाने देंगे हम धीरे धीरे एक नया ग्रूव पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं हो जाएगा ना आज
0: 100%
1: वेरी गुड
0: इस छोटा सा मेडिटेशन
1: सिट बैक एंड अपने आप को आज देखते हैं हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है आज एक नया तरीका A new way of responding. एक ऐसा response जो मुझे खुशी सेहत और सुंदर रिश्ते देगा एक ऐसा response जो मेरे लिए comfortable and royal होगा आज अपनी किसी एक आदत अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है This is the powerful being. Om Shanti.
0: Thank you so much, sister.
1: Om Shanti.
0: Om Shanti. Thank you very much.
2: When we allow an external stimulus to affect our state of being, our emotional health, physical health, relationships, and quality of sleep get affected. Our vibrations of anxiety radiate to all who are around us and influence them too. When we get disturbed in one particular situation, our emotional strength gets depleted. Now we are more vulnerable to get disturbed when the next stimulus comes. This is why anxiety, stress, irritability escalates during the day. And then during our journey of life, our mind should be convinced that situations, other people's sanskars, their behaviors will not be according to what is comfortable for us. We cannot afford to get disturbed each time. It is our energy loss. One particular way of responding to a situation repeatedly creates a groove in our brain. After a few days, this will become a habitual pattern. We can consciously respond in a different manner and create a new groove.
1: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in.

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ

आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है मानसिक बीमारियों का कारण और निवारण। आज जैसा कि देख रहे, संसार में बीमारियों की भरमार है। चिंताएं पहले भी थी, समस्याएं भी थी, जीवन काफी कठिन था। यातायात के साधन व दूसरे साधन भी इतने नहीं थे, परंतु आज इतने साधन होते हुए भी बीमारियां बढ़ती जा रही है। इन बीमारियों में मानसिक बीमारियां जो अन्य बीमारियों का भी कारण बनती है, जैसे रात को नींद न आना, किसी भी काम में मन न लगना, उदास रहना, परेशान रहना, ज्यादा सोचते रहना आदि शामिल है। इनको चिकित्सा विज्ञान ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। इन मानसिक बीमारियों से 50 साल की उम्र तक की युवा ज्यादा प्रभावित है। क्या है इसका कारण? वास्तव में सभी बीमारियों के मूल में मनुष्य की अज्ञानता है, जिस कारण वो अपने को आत्मा के बजाय शरीर समझ बैठा है। मनुष्य धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, ठाट बाट के पीछे ज्यादा व्यस्त है और आत्मिक उन्नति की ओर उसका ध्यान ही नहीं है। शरीर को चलाने वाली चेतन आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो शरीर जड़ बन जाता है, जिसे मृत्यु कहते हैं। आत्मा की तीन शक्तियां हैं। पहला है मन अर्थात संकल्प शक्ति, दूसरा है बुद्धि अर्थात विवेक या निर्णय लेने की शक्ति, और तीसरा है संस्कार, जो हम कर्म करते हैं, कर्म के प्रभाव से जो बनते हैं वो होता है संस्कार। तो इन तीनों के बारे में नहीं जानते हुए हम आगे के कार्य को करते रहते हैं और हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं होता है। इस कारण हमारी मानसिक बीमारियां जो है बढ़ती चली जाती है और हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं और हम खुद को पहचान भी नहीं पाते हैं कि हम कौन है। तो खुद को जानना बहुत जरूरी है। तो हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए ये सुनते हैं।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है मानसिक बीमारियों का कारण और निवारण। मन और मस्तिष्क, इसमें क्या भेद है हम इसके बारे में भी नहीं जानते। चिकित्सा विज्ञान वाले अभी तक मन और मस्तिष्क में भेद नहीं कर पाए हैं। मन आत्मा की शक्ति है जबकि मस्तिष्क शरीर का अंग है जो आत्मा के लिए जैसे कंप्यूटर का काम करता है। आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर को चलाती है जिससे पूरा शरीर चलता है। जैसे गाड़ी का इंजन चलने से पूरी गाड़ी चलती है और चलाने वाला है ड्राइवर। बच्चे को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने की कोशिश होती है ताकि वह बड़ा होकर अच्छा इंसान बने। अगर वह गलत संग पकड़ लेता है तो खुद को भी बर्बाद करता है और परिवार व समाज के लिए भी कई तरह की समस्याएं खड़ी कर देता है। मन भी बच्चे की तरह है, उसके संग की संभाल की भी आवश्यकता है। ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग से आत्मा की बुद्धि

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है मानसिक बीमारियों का कारण और निवारण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मन का इलाज होना चाहिए। द्वापर के बाद देह अभिमान में आने के कारण और आत्मा की बुद्धि रूपी दीपक को

ज्ञान जितना मिलने के कारण उसकी विवेक की रोशनी मंद हो गई है और उसका मन पर नियंत्रण कम होता चला गया है। मन मनमानी कर जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाने लगा है। मन कर्मेंद्रियों का गुलाम बन कभी आँख से अच्छा अच्छा देखने को, कानों द्वारा अच्छा अच्छा सुनने को, जीभ के द्वारा अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने को भटकने लगा है और थकावट के कारण कमजोर होने लगा है। उसको ये पता नहीं रहा कि बाहरी वस्तुएं जो कि नश्वर है सुख नहीं दे सकती। जो शांति सुख वो बाहर ढूंढ रहा है वो उसके अंदर ही है, परंतु उसे अंदर झांककर देखने की फुर्सत नहीं है। इसी कारण उसने गलत जीवन शैली अपना ली है और अपने को, अपने शरीर को रोगों का घर बना लिया है। इसलिए इलाज होना चाहिए मन का, परंतु चिकित्सा विज्ञान वाले भी मन और मस्तिष्क में भेद न कर पाने के कारण मस्तिष्क का इलाज करके इलाज की जो इतिश्री कर लेते हैं। जैसे मानसिक रोगियों को बिजली जैसे झटके मस्तिष्क में लगाते हैं। अब सर्व आत्माओं के परम पिता निराकार परमात्मा शिव अपने साकार माध्यम ब्रह्मा तन द्वारा अपना परिचय हम आत्माओं के स्वरूप का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे आत्मा की अज्ञानता और सर्व प्रकार के संशय मिट जाते हैं। आत्मा अपने निजी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा द्वारा सिखाए गए राजयोग की विधि द्वारा अपने मन बुद्धि की तार सर्वशक्तिमान ज्ञान सागर, शांति के सागर, दुखहर्ता सुखकर्ता परमात्मा से जुड़कर शक्तिशाली बन समस्याओं और बीमारियों पर जीत पा लेती है। ईश्वरीय ज्ञान से सद्बुद्धि जागृत होती है, जिससे व्यर्थ और समर्थ को परख कर निर्णय करने की क्षमता आत्मा में आ जाती है, जिससे ऐसे कर्म ही नहीं होते कि दुख बीमारी हो। अतः आज विश्व की सर्व आत्माओं से अनुरोध है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर पधारकर परमात्मा द्वारा दिए जाने वाले सत्य ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग को सीखकर अपने को मानसिक व शारीरिक बीमारियों से मुक्त बनाए। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई, तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हाथ की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर राइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको

0: हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुबह सुबह पार्क में आने का मजा हम छुट्टियों में ही ले सकते हैं।
1: बाद में तो मम्मी जाने नहीं देंगी, कहेंगी बड़ी धूप है।
0: चलो चलो, आज की योग कक्षा मैं शुरू करूँगा।
2: ओहो, अच्छा जी, तो आप करेंगे? गुरु जी, कुछ आता भी है?
0: सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम जोरों से हंसी, हा हा हा।
3: बात जरूर मजाक में कही है पर बिल्कुल सच है।
1: वो क्या दीदी?
3: अरे यही कि हंसी एक बहुत ही प्राकृतिक और महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इससे न केवल मन प्रसन्नचित रहता है बल्कि शरीर में प्रसन्नता के रसायन प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होकर शरीर को हल्का और चुस्त करते हैं।
2: मैं बताऊं, कई बार बहुत से लोग एक साथ आसपास खड़े या बैठे नजर आते हैं और बिना किसी बात के ठहाके लगाते दिखते हैं।
3: असल में हंसना तनाव भगाने का एक सबसे अच्छा तरीका है जिसे लाफ्टर थेरेपी कहा जाता है।
0: लेकिन जब हंसी के साथ योग को मिला दिया जाता है तो
3: ये बन जाता है लाफ्टर योग। लाफ्टर योग सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। लाफ्टर योग हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है जिससे हम न केवल बीमार होने से बचते हैं बल्कि यह उच्च रक्तचाप, हृदय योग, मधुमेह, डिप्रेशन, अर्थराइटिस, एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कमर दर्द, माइग्रेन से दर्द, मासिक धर्म संबंधी बीमारियां, कैंसर जैसी अनेक बीमारियों से आराम पाने में भी मदद करता है।
2: यह प्राचीन काल में भी था क्या?
3: अरे पहले इतना तनाव ही कहाँ था। लाफ्टर योग 1995 में भारत में डॉक्टर मदन कटारिया ने शुरू किया था।
4: हाँ, मैंने पढ़ा था इंटरनेट पर।
3: अपनी रिसर्च में डॉक्टर ने पाया कि ठहाके लगाने से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बेहतरी होती है।
4: यह इस बात पर आधारित है कि हमारा शरीर नकली और असली हंसी में कोई भेद नहीं करता।
1: तो हो जाए, समय का जोर से हंसते हैं।

0: वो देखो दीदी, वहाँ योग कक्षा हो रही है, कोई मंच पर आकर सूर्य नमस्कार कर रहा है।
1: मेरे पापा कहते हैं सूर्य नमस्कार योग का एक ऐसा अंग है कि जिससे पूरे शरीर के सभी अंगों पर प्रभाव पड़ता है।
2: दोनों आंतरिक और बाहरी, यही नहीं हृदय को, मस्तिष्क को, यकृत, अमाशय, किडनी, सभी मांसपेशियों वगैरह तक रक्त का संचार और अच्छी तरह से होता है। पर बात सुनो, ये यूं ही खड़े खड़े बातें करते रहोगे या कुछ करने का इरादा भी है?
3: मैं बताऊं, चलो सब मिलकर सूर्य नमस्कार करते हैं। वो देखो उधर, वहाँ कक्षा में चलते हैं। उन्होंने इन गर्मियों की छुट्टी में बच्चों के लिए एक खास कैंप लगाया है।
4: आओ आओ बच्चों, सब आ जाओ। ये लो, एक एक दरी ले लो और पीछे की तरफ एक एक के पीछे आसन लगा लो।
0: उधर होना
3: ठीक तो है,
5: सीधा तो करो दरी को।
0: मेरी तो सीधी है, तुम्हारी मेरे ऊपर आ रही है।
4: शांत हो जाओ बच्चों, देर मत करो और जल्दी से एक पंक्ति में बैठ जाओ। कुछ पल आंखें बंद करके धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य करो।
2: आप सबसे पहले तो कुछ बता दीजिए इन बच्चों को सूर्य नमस्कार के बारे में।
4: ठीक है बच्चों, आपको सबसे पहले सूर्य नमस्कार के बारे में कुछ बताती हूँ। सूर्य नमस्कार योगासनों में सबसे श्रेष्ठ है। यह अकेला अभ्यास ही पूरे योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से हमारा शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य नमस्कार स्त्री, पुरुष, बाल, युवा तथा वृद्धों के लिए भी उपयोगी है।
2: कहते हैं जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, बुद्धि, बल और तेज बढ़ता है, क्या यह सच है?
4: बिल्कुल सच। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां या चरण होते हैं, पर इसके बारे में बातें और न करके आओ इसको करने का प्रयास करते हैं। सब सीधे खड़े हो जाओ। सब करोगे सूर्य नमस्कार?
6: जी हाँ, हम सब करेंगे।
2: और मैं

0: की मदद करती हूँ सब बच्चों के पोस्टर ठीक कराने में।
1: बहुत अच्छा, ठीक है चलो शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहला चरण है प्राणायाम आसन। अपने आसन के किनारे पर खड़े हो जाएं, अपने दोनों पंजे एक साथ जोड़कर रखें और पूरा वजन दोनों पैरों पर समान रूप से डालें। अपनी छाती फुलाएं और कंधे ढीले रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथ बगल से ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को जोड़ते हुए छाती के सामने प्राणायाम मुद्रा में ले आएं। दूसरा चरण है हस्त उत्थान आसन। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे ले जाएं। बाजुओं को कानों के समीप रखें। इस आसन में पूरे शरीर को एड़ियों से लेकर हाथों की उंगलियां तक सभी अंगों को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें। तीसरा चरण है हस्तपाद आसन। श्वास छोड़ते हुए व रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए कमर से आगे झुकें। पूरी तरह श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पंजों के समीप जमीन पर रखें। चौथा चरण है अश्व संचालन आसन। श्वास लेते हुए जितना संभव हो दाहिना पैर पीछे ले जाएं। दाहिने घुटने को जमीन पर रख सकते हैं। दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाएं। पांचवा चरण है दंड आसन। श्वास लेते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं और संपूर्ण शरीर को सीधी रेखा में रखें। छठा चरण है अष्टांग नमस्कार। आराम से दोनों घुटने जमीन पर लाएं और श्वास छोड़ें। अपने कुलों को पीछे ऊपर की ओर उठाएं। पूरे शरीर को आगे की ओर खिसकाएं। अपनी छाती और ठुड्डी को जमीन से छुएं। अपने कुलों को थोड़ा उठाकर ही रखें। अब दो हाथ दो पैर दो घुटने छाती और ठुड्डी जमीन को छूते हुए होंगे। सातवां चरण है भुजंगासन। आगे की ओर सरकते हुए भुजंगासन में छाती को उठाएं। कुहनियां मुड़ी रह सकती है। कंधे कानों से दूर और दृष्टि ऊपर की ओर रखें। श्वास लेते हुए छाती को आगे की तरफ धकेलने का सौम्य प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नाभि को सहजता से नीचे की ओर दबाएं। पैरों की उंगलियों को भी नीचे की तरफ दबाएं। यह सुनिश्चित करें कि जितना कर सकते हैं उतना ही करें। अपने साथ जबरदस्ती ना करें। आठवां चरण है पर्वतासन। श्वास छोड़ते हुए कुल्हों और रीढ़ की हड्डी को निचले भाग को ऊपर उठाएं, छाती को नीचे झुकाकर एक उल्टे वी के आकार में आ जाएं। यदि संभव हो तो एड़ियों को जमीन पर ही रखें और रीढ़ के निचले भाग को ऊपर उठाने का प्रयास करें। खिंचाव को गहराता हुआ अनुभव करें। नौवां चरण अश्व संचालन आसन। श्वास लेते हुए दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच ले जाएं। बाएं घुटने को जमीन पर रख सकते हैं। दृष्टि ऊपर की ओर रखें। दसवां चरण हस्तपाद आसन। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे लाएं। हथेलियों को जमीन पर ही रहने दें। अगर जरूरत हो तो घुटने मोड़ सकते हैं पर कोशिश करें कि वे न मुड़े। ग्यारहवां चरण हस्त उत्थान आसन। श्वास लेते हुए रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे ऊपर लाएं। हाथों को ऊपर और पीछे की ओर ले जाएं।

0: कुल्हों को आगे की तरफ धकेलें। बारवां चरण ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए पहले शरीर सीधा करें, फिर हाथों को नीचे लाएं। इस अवस्था में विश्राम करें और शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति सजगता ले आएं।
1: वाह, कितनी अच्छी तरह से सबने सूर्य नमस्कार किया है। सच सच बताओ, कैसा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया।
1: तुमने देखा, सूर्य नमस्कार एक आसन नहीं बल्कि 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक जोड़ है,
0: जो एक उत्तम कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम भी है। इसे करने से शरीर में हाथों पैरों के दर्द दूर होकर उनमें सबलता आ जाती है। गर्दन, फेफड़े तथा पसलियों की मांसपेशियां सशक्त हो जाती है और शरीर की फालतू चर्बी कम होकर शरीर हल्का फुल्का हो जाता है,
3: यानी मोटापा कम हो जाता है।
0: बिल्कुल, यही नहीं, सूर्य नमस्कार के द्वारा त्वचा रोग समाप्त हो जाते हैं। इस अभ्यास से कब्ज जैसे पेट के रोग समाप्त हो जाते हैं और पाचन अच्छा हो जाता है। इस अभ्यास से हमारे शरीर की छोटी बड़ी सभी नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती है, इसलिए आलस्य, अति निद्रा, ये सब विकार दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसके कुछ भाग को करने से मनाही है।
1: अच्छा, वो कौन कौन सी है?
0: सूर्य नमस्कार की तीसरी व पांचवी स्थितियाँ सर्वाइकल और स्लीप डिस्क वाले रोगियों के लिए वर्जित है।
1: अच्छा, कौन बताएगा सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है?
4: सूर्य को नमस्कार,
5: सूर्य को अर्पण या नमस्कार करना है।
0: अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। यह योग आसन शरीर को सही आकार देने और मन को शांत व स्वस्थ रखने का बेस्ट तरीका है।
1: पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, सूर्य नमस्कार प्रातःकाल खाली पेट करना सही होता है।
0: बच्चों, तुमने ध्यान दिया, प्रत्येक सूर्य नमस्कार के चरण में 12 आसनों के दो क्रम होते हैं।
5: पहले एक तरफ से, फिर सब दूसरी तरफ से।
1: हाँ, वैसे भी अच्छे स्वास्थ्य के अलावा एक तरह से सूर्य नमस्कार करके हम सूर्य का शुक्रिया करते हैं धरती पर जीवन के संरक्षण के लिए।
0: अब मुझे ये बताओ कि कौन कौन इसका रोज अभ्यास करेगा?
5: मैं, हम सब।
6: हाँ।
0: पर ध्यान रहे, 12 सूर्य नमस्कार के पोज और दूसरे योग आसनों को करने के बाद योग निद्रा में पूर्ण विश्राम जरूर करें। देखना, आप सब पाएंगे कि योग के सब आसन आपके चुस्त, दुरुस्त, प्रसन्न और शांत रहने का मंत्र बन जाएंगे। एक ऐसा मंत्र जिसका प्रभाव दिन भर आपके साथ रहेगा।
2: थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते मैम।
0: अब से रोज आना यहाँ, ठीक है? अपने दोस्तों को भी लाना।
2: जी, मैं लाऊंगा अपने 10 दोस्त।
4: 10 कहाँ से, 4 तो हम ही हैं।

0: अगर रहे ना है तुम्हें हर दम फिट, get up, stand up, no, no, sit, sit, उठो चलो अपनी नींद भगाओ, जाओ जाके एक योगा मैट लेके आओ,
1: तो हो जाओ शुरू।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होकर बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गुफ्तगू का ये कोई तरीका नहीं
1: और तुमको भी कोई तरीका नहीं।
0: मेरी उल्फत की इंसल्ट यूं ना करो,
1: यू शट अप,
0: यू शट अप,
1: यू शट अप,
0: यू शट अप,
1: यू शट अप, अपना रास्ता चलो।
0: क्यों ना तड़पाओ आशिक को देखो, हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।

हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब

0: क्यों रे शैतान, तुम्हें क्यों पता है मैं गाना जानती हूँ?
1: जरा तारीफ करी थी वरना तुम गाती क्या हो?
2: रोती हो पियागन नहीं चैना, रोती हूँ दिन रहना, हाय हाय हाय।
0: मैं ऐसा गाती हूँ?
1: मैं तो ऐसा ही सुनता हूँ।
0: और तू?
1: मैं

अब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो

0: सोचो, कुछ तो समझो, कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो, रहने दो बेकार की बातें,
1: बेकार की बातें।
0: हाँ हाँ, सुन लेगा बेदर्द जमाना दिल में।

0: ना
1: बोलो ना।
0: अपने घर को छोड़ के जाऊँ इतनी मैं नादान नहीं हूँ।

0: पहले धीरज धर लो मोल किसके लूं अजी छोड़ किसके दूं अजी तुम्ही फैसला धर लो तुम्ही फैसला कर लो वेरी गुड
1: मेरे फूल है चांद सितारे
0: ब्यूटीफुल
1: अच्छा
0: जी
1: वाह बड़ी आई फूल वाली जो चुभरे दूंगी गाले
0: अरे क्या करती हो अरे क्यों लड़ती हो
1: तेरा
0: है, है, है?
1: तेरी नाक तोड़ दूंगी
0: अरे पुलिस

बताओ मोह जुल्मी पलम ओ पलम मान जाओ बिनती अबला की देखो देखो अब दूंग दोहाई कह चतुर बनत छोरी कर हर जाय फुल के दुबाना मन न मर न पपर दीता पम गम गम गर दुबाना मारो न मारो न मारो न मारो न मारो न मारो न मारो लगत कर जवान।

ये सादों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है।

सहमे सी गलियां ये मसली हुई अध खिली जल गलियां ये दिखती हुई खोखली रंग गलियां जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है कहां।

0: अरे मेरी प्यारी काली कोयल, कहाँ छुप गई तू? अरे जुलेखा,
1: या अल्लाह वो आ गया। देखो देखो, मेरे फेफड़े का टुकड़ा आ गया।

नाटीमिलें पहचाना मेरा नाम है हलीमा, प्यार से लोग मुझे कहते हैं हल्लो। तुम्हारा नाम क्या है? बाके हल्लो, बाके हल्वेले तंगिले।

सुखने के पहचाना मेरा नाम है हलीमा। प्यार से लोग मुझे कहते हैं हलो। जब मैं पैदा हूँ पूछो ना बात, ना दिन था ना रात, घड़ी के दो कांटे हुए तभी एक ही कांटा नजर आ, ना इधर ना उधर, किसे थी खबर बड़ी होकर मैं क्या बनूं। फिर जब मैं बड़ी हुई मेरी चाल बदलने लगी, हाय जब मेरी कंबल लटकने लगी, ऐसे ऐसे मैं गली गली भटकने लगी। फिर एक दिन वो मिला, क्या नाम था माटी मिले का, हाँ मैं मौज मिला। फिर तो हातिम हातिम कल्लू लल्लू टेबू नजीर फकीर आ।